नमस्कार, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की अष्टमी तिथि, तदनुसार 29 जून 2026। हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज ऑन एआईआर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में दिल्ली केंद्र से समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS ईक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस

0: हिरासत में भेज दिया है। दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में एफआईएच प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदन भार में पहले सुनिए आज का चिंतन। मधुर सुसंस्कृत और अच्छी तरह से बोली गई वाणी जीवन में हर पक्ष में कल्याणमय होती है। ये था आज का चिंतन। अब सुनिए भक्ति संगीत।

आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए झरोखा में आपको बता दें आज प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों का विवरण। अभी कुछ ही देर बाद यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस पाठ। आज सुनिए भाग 234। 6:45 पर संगीत सरिता में विविध भारती के खजाने से गायिका विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्रे से बातचीत सुनवाई जाएगी। संगीत सरिता का ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं आज शाम 6:45 पर। 7 बजे गुनगुनाइए भूले बिसरे गीत। 7:30 पर कार्यक्रम होगा हम है राही प्यार के। 8 बजे समाचार और 8:15 पर सुनिए त्रिवेणी। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे दिन में 2 बजे। 8:30 पर सुनिए चित्रलोक। आज के फनकार 9:30 पर आज सुबह ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर। इस कार्यक्रम को आप आज रात 9:30 पर पुनः सुन सकते हैं। दस बजे पिटारा में उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में सुनिए रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। 11 बजे रंग तरंग कार्यक्रम होगा। 12 बजे समाचार और 12:05 पर यादों की महफिल सजेगी। दिन में 1 बजे से सुनिए सुरीला सफर। 2:15 पर दोपहर समाचार सुनवाई जाएंगे और 2:30 पर सदाबहार नगमों का आनंद लीजिए। सखी सहेली कार्यक्रम का वक्त होगा 3 बजे से। 4 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग। 5:30 पर कार्यक्रम होगा तराने नए पुराने। 6:35 पर सुनिए संध्या रंजन। 7 बजे जयमाला कार्यक्रम पेश किया जाएगा और 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत एक ही फिल्म से कार्यक्रम में फिल्म उलझन के गाने सुनवाए जाएंगे। हवा महल में रात 8 बजे सुनिए झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। लेखक हैं महावीर सिंघल और निर्देशक हैं आनंद किशोर माथुर। 8:15 पर कार्यक्रम होगा चित्रलोक और 9 बजे से आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 8:45 पर समाचार संध्या सुनिएगा।

हम आपको एक बार फिर याद दिला दें, आज 4 बजे पिटारा में सेहतनामा के अंतर्गत डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा भाग सुनवाया जाएगा। ये था आज प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों का झरोखा। आप सुन रहे हैं विविध भारती। कुछ ही देर में कार्यक्रम श्री रामचरितमानस पाठ।

श्री राम ने भरत को कर्तव्य तथा धर्म पालन के लिए कई प्रकार से उपदेश देकर आश्वस्त किया। कहा, गुरु की कृपा सूर्य कुल की रक्षा करने में उनकी सहायक होगी। गुरु का अनुग्रह वन में स्वयं उनका भी रक्षक होगा। साधक को आज्ञा पालन रूपी साधना से ही सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। श्री राम की स्नेह सिक्त वाणी सुनकर भरत को परम संतोष हुआ। स्वामी के अनुकूल होते ही उनका दुख, दोष बोध, विषाद सभी मिट गए। वचन मात्र से उन्हें श्री राम के साथ वन प्रवास तथा जगत में जन्म लेने का लाभ प्राप्त हो गया। 14 वर्षों की लंबी अवधि बिताने के लिए कोई अवलंब तो चाहिए ही, और फिर श्री राम के राजतिलक के लिए सभी तीर्थों का जल ले आए थे, उसका क्या करना है? इस संबंध में भी स्वामी की आज्ञा अपेक्षित है। मन में ये भी अभिलाषा है कि चित्रकूट के सभी पवित्र स्थल, वन, पशु पक्षी, नदी, सरोवर, निर्झर और पर्वत समूह सबका दर्शन कर लें, विशेष रूप से उन स्थलों का जो श्री राम चरणों से अंकित हैं। मंगलमूल भरत तथा श्री राम का संवाद सुनकर देवगण धरती पर कल्पवृक्ष के फूलों की वर्षा करने लगे।

0: ッツサディタ。
1: मित्रों नमस्कार, आइए आज सुनते हैं सुविख्यात गायिका डॉक्टर प्रभा अत्री से राम सिंह पवार की ये बातचीत। संगीत सरिता में ये बातचीत वर्ष 1989 में पहली बार प्रसारित की गई।
2: संगीत सरिता के श्रोताओं, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं देश की सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर प्रभा अत्री, एक सृजनशील गायिका, आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण में परम्परा और शास्त्र को परखने वाली एकेडेमिशियन और शिक्षिका। संगीत के विविध क्षेत्रों में प्रभा जी ने महत्वपूर्ण काम किए हैं। संगीत के साथ साथ आपने उच्च शिक्षण भी पाया है। आप साइंस और लॉ के ग्रेजुएट हैं तथा संगीत में आपने डॉक्टरेट भी की है। प्रभा जी नमस्कार।
3: आपको और हमारे श्रोताओं को मेरा भी नमस्कार।
2: प्रभा जी, पढ़ाई लिखाई और संगीत दोनों एक नदी के दो किनारों के समान है, एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ संगीताभ्यास। जैसा कि आप बीएससी लॉ ग्रेजुएट हैं, आपने संगीत को ही अपने जीवन का माध्यम क्यों चुना? क्या आपके घर में संगीत का माहौल पहले से था?
3: जी नहीं, मेरे परिवार में संगीत किसी ने सुना तक नहीं था। मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही शिक्षण के क्षेत्र में थे
2: जी।
3: और उन्होंने उस क्षेत्र में बहुत बड़ा कार्य किया है। ये संजोग की बात है कि माँ की बीमारी के कारण संगीत ने मेरे जीवन में प्रवेश किया
2: जी।
3: लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा कलाकार बनना कुदरत ने पहले से ही तय किया था और यही कारण है कि मैंने अपने आप को संगीत के प्रति अर्पित किया है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं इसकी लायक बनी रहूँ।
2: प्रभा जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी गायन शैली एक स्वतंत्र है, तो इससे क्या मतलब है, अथवा एक परंपरा का जो निर्वाह करते हैं, इस विषय में कुछ कहेंगे?
3: जी, संगीत में परंपरा और शास्त्र का बहुत महत्व है, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन परंपरा का मतलब अंधश्रद्धा नहीं है, अनुकरण नहीं है। परंपरा स्वयं काल के अनुसार नित्य नवीन रूप लेती है
2: जी।
3: अगर वो कहीं रुक गई तो बड़ा अनर्थ हो जाता है। आज का निसर्ग बदला हुआ है, आज की जीवन पद्धति बदली है, तो फिर कला को भी कुछ बदलना जरूरी है। परंपरा के नाम से हम कितनी ही अनवांटेड और गलत बातें अपनाते हैं और उन्हें छोड़ते भी नहीं। हर कला को उस काल के कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। संगीत के बारे में जो भी विचार मैंने आज तक सामने रखे हैं, उनके पीछे एक लॉजिक है, एक रीजनिंग है। ये दृष्टिकोण मुझे साइंस और लॉ ने दिया है।
2: बहुत सुंदर आपने उत्तर दिया। प्रभा जी, कलाकार तो सदैव स्वतंत्र रहना पसंद करता है, यानी उसका संपूर्ण जीवन अथवा समय कला साधना को समर्पित होता है। लेकिन आप अपनी कला साधना के साथ साथ जैसे कुछ समय आकाशवाणी में प्रोड्यूसर रही और आजकल एसएनडीटी विद्यापीठ में प्रोफेसर और संगीत विभाग के प्रमुख हैं, और इसके अलावा भी स्वरश्री रिकॉर्डिंग कंपनी में एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं
3: जी।
2: तो ये सब कुछ करते हुए संगीत की साधना में कुछ बाधा नहीं आती?
3: जी नहीं।
2: कैसे निभा पाते हैं?
3: ये सब इस दृष्टि से कि संगीत से जुड़े हर माध्यम का अनुभव संगीत के विकास में सहायक है। कलाकार को जितना अधिक अनुभव होगा, उतनी ही उसकी कला परिपूर्ण होगी। सच पूछिए तो संगीत की साधना के लिए 24 घंटे भी पूरे नहीं, लेकिन ये साधना विविधांगी होना जरूरी है। प्रत्यक्ष गाना बजाना तो प्रमुख है ही, लेकिन साथ में अच्छा संगीत सुनना,

0: संगीत ग्रंथ पढ़ना, संगीत के बारे में बोलना, संगीत के ऊपर लिखना, चिंतन करना और पढ़ाना, ये सब बातें क्रिएटिविटी को ताजा रखने के लिए आवश्यक है। जब तक हमारे विचार स्पष्ट नहीं है
1: जी,
0: तब तक हम कुछ नया सोच ही नहीं सकते।
1: अच्छा प्रभा जी, अब आपकी गायन शैली के बारे में कुछ बात करें कि सरगम आपकी गायन शैली का एक सुंदर अंग है।
0: हाँ।
1: और आपके डॉक्टरेट के प्रबंध का विषय भी सरगम रहा है
0: जी,
1: तो सरगम के बारे में आप हमारे श्रोताओं से कुछ

0: भारतीय शास्त्रीय कंठ संगीत को साकार करने में आलाप, तान और बोल यानी शब्दों का प्रयोग होता है। हर एक की अपनी अपनी विशेषता है और कार्य अलग अलग है। आलापों का सौंदर्य तानों में नहीं और बोलों का कार्य आलाप नहीं कर पाते। इसी प्रकार सरगम का अपना अपना सौंदर्य है और अलग कार्य भी है जो आलाप, तान या बोल नहीं कर पाते। और इसीलिए ख्याल से लेकर डिस्को तक सभी संगीत प्रकारों ने आज सरगम को अपनाया है।
1: प्रभा जी, आप तो शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं।
0: जी,
1: क्या फिल्म संगीत और गजलें वगैरह भी सुनना या गुनगुनाना पसंद करती हैं?
0: अवश्य, संगीत का कोई भी प्रकार अपने आप में सुंदर ही होता है।
1: जी।
0: उसको खराब करता है कलाकार।
1: अच्छा।
0: फिल्म संगीत में देखिए, लता जी और आशा जी जैसे कलाकार हैं, उनके संगीत को खराब कहना या चीप कहना ये कहने वाले की नासमझ ही होगी।
1: बिल्कुल ठीक।
0: मैं खुद ख्याल, ठुमरी, दादरा तो गाती ही हूँ, लेकिन भजन और कभी कभी गजलें भी गाती हूँ। हर संगीत प्रकार की अलग अलग ट्रेनिंग है, साधना है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत सीख लिया तो सब कुछ आ गया।
1: प्रभा जी, शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा आम लोग फिल्म संगीत या गजलों को क्यों अधिक पसंद करते हैं?
0: पहली बात तो ये है कि फिल्म संगीत शब्द प्रधान संगीत है और फिर उसके साथ विजुअल यानी दृश्य भी है। शब्द और दृश्य दोनों अपना अपना योग संगीत को देते हैं।
1: जी।
0: और इसीलिए वो समझने में आसान हो जाता है। शास्त्रीय संगीत में शब्दों का होना ना होने के बराबर है, क्योंकि उसमें शब्द एक साधन है, साध्य नहीं।
1: जी।
0: और उसमें कोई दृश्य भी नहीं है, खाली सुर और लय की आकृति होती है। जो लोग सुर लय की भाषा नहीं समझते उनको शास्त्रीय संगीत कठिन लगना स्वाभाविक ही है, लेकिन संगीत में एक ऐसा गुण है जो मन की गहराइयों को छू लेता है। और इसीलिए संगीत के प्रति अगर प्रेम हो, लगन हो, तो सामान्य श्रोता भी शास्त्रीय संगीत से आनंद प्राप्त कर सकता है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा, अब एक प्रश्न और हम आपसे पूछेंगे कि वर्ल्ड म्यूजिक का अभ्यास करने के लिए, आप भारतीय संगीत सीखने के लिए आपको इंडो अमेरिकन और फुल ब्राइट फेलोशिप प्राप्त हुई थी।
0: जी।
1: तो ये वर्ल्ड म्यूजिक अभ्यास की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी?
0: विज्ञान ने सारे विश्व के मानव को नजदीक लाया है। आज जागतिक सभ्यता, जागतिक संस्कृति की बातें हम करते हैं, इसलिए एक दूसरे को जानना जरूरी हो गया है और उसके लिए थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता भी हमें महसूस होती है।
1: जी।
0: मैं एक संगीतकार हूँ, इसीलिए पूरे जगत के संगीत को जानना चाहती हूँ, उसका अभ्यास करना चाहती हूँ। प्रत्येक संस्कृति का अपना अपना संगीत है और उसके प्रभाव से अब हम वंचित नहीं हो सकते। जागतिक संगीत के संदर्भ में हमारा संगीत क्या है, इसकी पहचान जरूरी है। हमारे संगीत के प्रिजर्वेशन के लिए, प्रोपगेशन के लिए और प्रोग्रेस के लिए अन्य देशों के संगीत का अभ्यास आज जरूरी हो गया है। एक बात और है, एक कलाकार होने के नाते मेरे जीवन में श्रोता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। श्रोता चाहे भारतीय हो या भारत के बाहर का, कलाकार और श्रोता में अगर दूरी रही तो महफिल उखड़ जाती है।
1: जी।
0: अपना समय और पैसा दे के श्रोता महफिल में आता है, उसका आदर करना, उसे संतोष देना, ये मेरा धर्म है, कर्तव्य है, ऐसा मैं मानती हूँ।
1: तो प्रभा जी, थोड़े से समय में हमने काफी बातचीत कर ली। हम संगीत स्थिरता कार्यक्रम विविध भारती और श्रोताओं की ओर से आपका आभार प्रदर्शित करते हुए आपसे आगे चाहते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री से राम सिंह पवार की ये बातचीत। उस समय इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी छाया गांगुली। अब सुनते हैं विदुषी डॉक्टर प्रभा अत्री का गाया राग अहीर है।

डॉक्टर प्रभा अत्रे से राम सिंह पंवार की ये बातचीत अभी आपने सुनी और उन्हीं का गाया राग अहीर भैरव भी। आज का संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। नमस्कार।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राजुल का नमस्कार। आइए सुनते हैं बैजू बावरा फिल्म का गाना। उस्ताद आमिर खान के बोल हैं, माफ कीजिएगा, उस्ताद आमिर खान की आवाज में शकील बदायूनी के बोल हैं, नौशाद का संगीत।

0: शकील बदायूनी का लिखा और नौशाद का संगीतबद्ध किया हुआ ये गीत अभी आपने सुना फिल्म बैजू बावरा से, स्वर उस्ताद आमिर खान साहब का था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: भूले बिस्तर गीत कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं गीता दत्त का गाया हुआ फिल्म आर पार का ये गाना। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन बनाई है ओपी नैयर ने।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं आशा भोसले के स्वर में तुलसीदास फिल्म का ये गाना। गीत रचना जीएस नेपाली की है और संगीत से सवारा है

0: अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
1: जीवन का लक्ष्य है आत्म विकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
0: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
1: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
0: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। नेल्सन मंडेला।
1: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

0: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकेत अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसंरचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी ने कल प्रधानमंत्री मोदी को यह प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। यह पहली बार है कि जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को यह सम्मान प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की भी चर्चा की, जिसे 21 जून को दुनिया भर में मनाया गया।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था, कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें। लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की बनी मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। वहीं जल संरक्षण के संबंध में प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में जरा भी ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। प्रदेश भर में कल प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रियों, भाजपा पदाधिकारियों और नेताओं के साथ ही आम जनता ने सुना और सराहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री ने प्लास्टर ऑफ पेरिस के स्थान पर देश की मिट्टी से निर्मित भगवान श्री गणेश की मूर्तियों को अपनाने तथा स्थानीय कुम्हारों और शिल्पकारों द्वारा निर्मित प्रतिमाओं को प्राथमिकता देने की अपील करके आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जन जन से जोड़ने का कार्य किया है। कार्यक्रम को उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सुना। डुमरियागंज के सांसद जगदम्बिका पाल ने कल सिद्धार्थनगर में स्थानीय लोगों के साथ मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र के विकास में अपना योगदान देने

0: करने के लिए प्रेरित करता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक की अध्यक्षता करते हुए एक्सप्रेसवे, औद्योगिक अवसंरचना, ग्रामीण आजीविका, ऊर्जा और ईवी चार्जिंग सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक परियोजना निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी शासकीय और निजी मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सा संस्थानों, जिला स्तरीय महिला और पुरुष चिकित्सालयों तथा होटलों में फायर एनओसी की स्थिति का तत्काल सत्यापन कराने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने एक्सप्रेसवे सहित अन्य परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने नए एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए पर्याप्त भूमि की उपलब्धता समय रहते सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल हाथरस जिले में 548 करोड़ रुपए की लागत वाली 143 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लाभार्थियों को आवास की चाबी, स्मार्टफोन और चेक वितरित किए गए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हाथरस में जल्दी ही प्रोसेसिंग सेंटर बनकर तैयार हो जाएगा, जिसका लाभ वहां के आलू उत्पादक किसानों को मिलेगा।
1: अब हमारा हाथरस भी विकास से वंचित नहीं होगा, बल्कि विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ अब उद्यम यहां पर आ रहे हैं। यहां पे रोजगार के नई संभावनाओं को आगे बढ़ाना, प्रोसेसिंग सेंटर लगेंगे। हमारा नेतादा किसान जो आलू उत्पादन करता है उसके कई गुना दाम उन्हें प्राप्त होगा। कोल्ड स्टोरेज की उनकी समस्या का समाधान होगा, किसान को अच्छा दाम मिलेगा।
0: इसके बाद मुख्यमंत्री ने आगरा में जन प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की प्रगति तथा कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने सभी लंबित परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल अयोध्या दौरे के दूसरे दिन कल डॉ राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में आयोजित मातृशक्ति कॉन्क्लेव अयोध्या 2026 में शामिल हुईं। कार्यक्रम में मां बेटी संवाद के माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और बाल विकास जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अयोध्या के श्री राम मंदिर दान के मामले में कल पुलिस तथा प्रशासन की टीम ने गिरफ्तार सभी 8 आरोपितों के घरों पर छापेमारी करके तलाशी ली। इस दौरान आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की गई। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपियों के ठिकानों से साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई की। आज पुलिस सभी आरोपियों को कोर्ट में फिर से पेश करेगी। कल से प्रदेश भर में पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत हो गई। कल पहले दिन बूथ दिवस पर 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाई गई। वहीं आज से 3 जुलाई तक स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर ये दवा पिलाएंगी। अभियान के पहले दिन कल विभिन्न जिलों में जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने बच्चों को दवा पिलाकर पोलियो से बचाव का संदेश दिया। गोरखपुर के सदर सांसद रविकिशन शुक्ल ने जिला महिला अस्पताल से बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा पिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत में वर्षों पहले पोलियो का उन्मूलन हो चुका है, लेकिन पड़ोसी देशों पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इसके वायरस अभी भी मौजूद हैं। ऐसे में सभी अभिभावक अपने बच्चों को पोलियो से बचाव की दवा अवश्य पिलाएं। इस मौके पर सदर सांसद श्री शुक्ल ने गोरखपुर के नवाचार मैटरनल इमरजेंसी असिस्टेंस फॉर टाइमली रेफरल एंड इंटेंसिव सर्विसेज मातृ सेवा का भी शुभारंभ किया। इस नवाचार के जरिए मातृ मृत्यु दर को कम करने का लक्ष्य है। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण उमस भरी गर्मी के बीच आज सुबह प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया। सुबह सुबह हल्की हवाओं के साथ शुरू हुई बारिश से लोगों को फिलहाल उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के कई अन्य मंत्रियों और नेताओं ने प्रधानमंत्री को दी बधाई। प्रधानमंत्री ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के प्रति जताया आभार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की बैठक में एक्सप्रेसवे और औद्योगिक अवसर

रचना सहित कई अन्य परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कहा, निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरी होनी चाहिए प्रत्येक परियोजना। और प्रदेश भर में शुरू हुआ पल्स पोलियो अभियान, आज से घर घर जाकर दवा पिलाएंगी स्वास्थ्य विभाग की टीमें। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

आइए सुनते हैं कार्यक्रम हम है राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गीत किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में सुनवा रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत को संगीत से सवारा है राहुल देव बर्मन ने।

द ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना भी आपने सुना, किशोर कुमार और आशा भोसले का गाया हुआ। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन बनाई थी राहुल देव बर्मन ने। और अब सुनते हैं तराना फिल्म का ये गाना, शैलेंद्र सिंह और उषा मंगेशकर की आवाजें हैं। तिलक राज थापर का लिखा गीत है और राम लक्ष्मण का संगीत।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद

0: जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
1: उजाली उनकी यादों की। इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
0: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमें रही प्यार के कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब आपको सुनवाते हैं वारदात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाजों में। रमेश पंत का लिखा गीत है, बप्पी लहरी का संगीत।

0: सावन को आने दो इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे यसुदास और सुलक्षणा पंडित की आवाजों में। माया गोविंद की गीत रचना थी और राजकमल का संगीत था।
1: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
2: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लूं।
1: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
2: कमाल है।

0: इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
1: सखी सहेली।
2: हमारा ही प्यार के कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनाते हैं कुर्बानी फिल्म का गाना कंचन, मनहर और आनंद की आवाजों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहतनाज।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमरीका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगे। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ

0: बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरूआती 3 वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर 3 वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में 4वां वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार के कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्नपत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेनदेन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से 1 दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। ओडिशा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइकोल डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन में दक्षिण पश्चिम

0: मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नम्बर है 0112371 7 0112371 7 0116 और 0112334444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिन्दुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोक सत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फार्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, मां के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत की रखवाली भी हो, मां को चाय में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 देने का सुझाव, अपंगता की बीमारी से बच सकेंगे नवजात।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

चेक के सुबह के साथ एनर्जेटिक मंडे का गुड मॉर्निंग, रूटीन और ट्रैफिक के शोर के बीच सुकून की लहर, सुरीले संगीत के साथ कार्यक्रम चित्रलोक में बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आज इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा फिल्म के इस गाने से। डोमिनिक सर्जो, लॉय मेंडोसा और क्लिंटन सर्जो की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत है, शंकर एहसान लॉय का।

0: बावरे मन की मल्हार में भीगता ये गीत जॉली LLB 2 फिल्म से आपने सुना। जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की आवाजें थी, जुनैद वसी के बोल थे और चिरंतन भट्ट का संगीत था।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आइए अब सुनते हैं आयुष्मान खुराना और नीति मोहन का गाया हुआ नौटंकी साला फिल्म का गाना।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। इस अंतराल के पहले आपने सुना था फिल्म लुटेरा का गाना। मोनाली ठाकुर की आवाज में अमिताभ भट्टाचार्य के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजशेखर का लिखा और कृष्णा का संगीतबद्ध किया हुआ

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहाँ पर आ गए कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं अरिजीत सिंह का गाया हुआ सिटी लाइट्स फिल्म का गाना। रश्मि सिंह के बोलों को संगीत से संवारा है जीत गांगुली ने।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब सुनते हैं अनुपम रॉय और श्रेया घोषाल का गाया हुआ पीकू फिल्म का ये गाना।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह

0: और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: चित्रलोक कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं केदारनाथ फिल्म का गाना देव नेगी की आवाज में। गीत लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने और धुन बनाई है अमित त्रिवेदी ने।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
1: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
1: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए सुनते हैं ये गाना।

0: दादाजी कौन सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादाजी रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये ले तेरी समझदारी का फल।
3: आज ये कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं अजहर फिल्म का गाना अरमान मलिक की आवाज में। रश्मि विराग का लिखा गीत है और अमाल मलिक का संगीत।

डियर जिंदगी फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह का गाया हुआ। कौसर मुनीर के बोल थे और अमित त्रिवेदी का संगीत था। और लीजिए अब सुनिए लैला मजनू फिल्म का गाना। अरिजीत सिंह और जॉनिता गांधी की आवाजें हैं। इरशाद कामिल का लिखा गीत जिसे संगीत से सवारा है नीलाद्री कुमार ने।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा।

0: साथियों, आज हम जिस फनकार के फन का जिक्र कर रहे हैं वो वर्सिटाइल आर्टिस्ट है, इसलिए हमारे लिए ये मुश्किल है कि हम उनकी किस खूबी का जिक्र करें और किसका ना करें। हम सोचते हैं क्यों ना उनसे आपकी सीधी बात करा दें।
1: नमस्कार जी, मेरी तारीफ मैं अपने मुंह से क्या करूं।
0: सुदेश भोसले आज के हमारे फनकार हैं और अब आप समझ ही गए होंगे हमारी मुश्किल क्या है। बहरहाल, हम पहले सुनते हैं उनका गाया गाना, फिर सुनेंगे उनके बारे में उन्हीं की जबानी।

0: कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप बारी बारी मालूम हुआ। जो भी आज मैं दिखता हूँ या जो भी करता हूँ बिल्कुल उसके विरुद्ध था। बिल्कुल बचपन में मैं स्कूल भी जाता तो मालूम भी नहीं पड़ता था मैं स्कूल में क्लास में बैठा हूँ या नहीं। क्वाइट एकदम, किसी से बातचीत नहीं। फिर अब जो मैं आवाजें बनाता हूँ, जैसे खासतौर पे अमित जी की आवाज, मैं बचपन में लता जी के गाने बिना वॉइस चेंज किए गा सकता था। मतलब वॉइस में आवाज मेरी लड़की जैसी थी, तो लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी चिढ़ाते थे कि भाई बिल्कुल वॉइस आवाज तुम्हारी एकदम लड़की की तरह। लेकिन एक बात ये थी कि मम्मी जो थी गायिका थी सुमन भोसले, मेरी नानी क्लासिकल सिंगर थी दुर्गाबाई शिरोडकर, आगरा घराने की क्लास। तो म्यूजिक का माहौल तो बचपन से था, लेकिन कभी माता पिता ने ये नहीं सोचा था कि मैं भी गायक बनूंगा। लेकिन बचपन से बहुत सुना है और अच्छा गाना बहुत सुना है, और घर में ये लगा था कि मैं पेंटर बनूंगा क्योंकि मेरे पिताजी आर्टिस्ट थे और मैं खुद बहुत अच्छा पेंटर हूँ, पोर्ट्रेट्स और लैंडस्केप बनाता हूँ। फैमिली में म्यूजिक एंड पेंटिंग दोनों बचपन से हमने देखा है और उसके साथ हम बड़े हुए हैं। और मेरे पिताजी पेंटर थे और हम लोग फिल्मों की पब्लिसिटी करते थे, जिससे आप होर्डिंग्स और बैनर्स जो देखते हैं एनआर भोसले के नाम से हम लोग करते थे। और एट द एज ऑफ 1974 में मैंने पहले पोस्टर, मतलब पहला पोस्टर प्रिंट किया, वो था राजेश खन्ना हेमा मालिनी की फिल्म प्रेमनगर का। तो मुंबई में जितने भी बैनर्स लगे थे सारे मेरे हाथों से पेंटिंग हुए थे। उसके बाद मैंने कई साल 74 से 82 तक लगातार पेंटिंग किया पिताजी के साथ। उसके बाद मैंने जैसे प्रेमनगर के बाद जूली, स्वयंवर, स्वर्ग नर्क, श्रीमान श्रीमती, निशाना, काफी फिल्में मराठी हिंदी फिल्मों के बैनर्स पेंट किए। तो मेरा पेंटिंग भी इतना अच्छा था कि मेरे पिताजी को ये लगा कि मैं यही बिजनेस आगे बढ़ाऊंगा।
1: एक मिनट सुदेश जी, आगे बढ़ने से पहले हम एक गाना सुन लें, फिर बातें भी होंगी।

गाने का शौक था और एक बचपन से ये मुझे एक पर कुदरती एक देन थी कि आमतौर पे जब आदमी कोई अच्छा गाना सुनता है, उसकी इच्छा होती है गाने की, तो वो अपनी आवाज में गाता है। लेकिन बचपन से मुझे ये था कि अगर मैं हेमंत दा का गाना सुनूं तो हेमंत कुमार की जैसे ही गाने की अपने आप कोशिश होती, या सैगल साहब हो या सचिन दा हो या किशोर दा हो, तो ये फायदा मुझे कॉलेज में हुआ। तो हर कॉलेज में जैसे कल्चरल ग्रुप होता है तो वहां मैं ज्वाइन हुआ, तो जब जब भी मौका मिले मैं एक एक दो दो लाइनें सब सिंगर्स की गाता था। तो उधर लोगों को अच्छा लगा कि एक आदमी कई आवाजों में गाता है। अब ये करते करते हुआ कि मिमिक्री, तो मतलब जैसे इमिटेशन तो चल ही रहा था, उस वक्त मुझे कॉलेज में पहली बार मतलब लोगों के सामने गाने का, या ना पब्लिक परफॉर्मेंस का, मतलब कई साल मुझे एक कह सकते एक ट्रेनिंग जैसे मुझे मिल गई। गाना तो बचपन से शौक तो था लेकिन कभी किसी के सामने गाने की हिम्मत हुई नहीं। धीरे धीरे मतलब जैसे जैसे कॉलेज जाने लगा तो लोगों ने मतलब फ्रेंड्स ने थोड़ा इनकरेज किया, तो उनके साथ धीरे धीरे हंसी मजाक में पहले जैसे दोस्तों में बैठ के गाना सुनाना शुरू किया तो उन्होंने पसंद किया। फिर जैसे हमारे ग्रुप का जो कॉलेज का जो ग्रुप था ऑर्केस्ट्रा, उसमें कभी मौका मिला तो एक हाथ दूसरे गाने गा लेता था मैं। बहुत साल पहले हमारे जहाँ रहता हूँ मैं, हमारे कॉलोनी में एवरी ईयर हम लोग सेलिब्रेट करते थे 26 जनवरी। तो वहां लोगों को, तो अड़ोस पड़ोस वालों को पता था कि थोड़ा बहुत अच्छा गा लेता हूँ। तो उन्होंने एक दिन अचानक मुझे ऐसे बिना कहे मेरा नाम अनाउंस करके मुझे स्टेज पे खड़ा कर दिया मुझे, और बोले अभी सुदेश भोसले गाएंगे। और मुझे पता भी नहीं था, और जब मैंने देखा कि सामने इतने लोग थे तो मैं तो बिल्कुल घबरा गया था। लेकिन मैंने गाना शुरू कर दिया, वो गाना था दुश्मन का, किशोर दा का, वादा तेरा वादा। अरे सच

से तो ये शुरुआत तो मैंने की, और जब मैंने गाना खत्म किया तो वंस मोर हो गया, तो मैं भी हैरान हो गया वंस मोर। तो ये मेरा पहला पब्लिक परफॉर्मेंस था।

वेद भारती के हमारे सभी श्रोता सुदेश भोसले जी को बहुत करीब से जानते हैं, है ना? आज ही जानेंगे क्यों नहीं। अक्सर सुदेश जी अपने हिट प्रोग्राम्स के साथ विविध भारती पर मौजूद रहते हैं। उनके ऐसे ही एक आइटम

0: की छोटी सी झलक यहां भी।
1: इधर तुम्हारे घर में, तुम्हारे सामने किसी ने फादर को और तुम देखते रह गए। अगर इस दुनिया से किसी को उठाने का था तो अपन को उठाने का था। अपन का इस दुनिया में कोई जरूरत नहीं, लेकिन इसका जरूरत है। दुनिया में लाखों लोग ऐसा मासूम एंथनी को चर्च के बाहर मरने के लिए छोड़ देता है। कौन पालता सर और इस बच्चा लोग को? ये पालता ये। मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास इसका कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं।
2: तो ये सीन था और बिल्कुल वो बच्चे एकदम हैरान हो गए। बिल्कुल दोबारा मुझसे वो करवाया, तब मुझे कहते ना कॉन्फिडेंस आ गया कि यस। उसके बाद मैंने उनके जो उस वक्त की सारी फिल्में थी, जैसे लावारिस, दीवार, या उसके बाद अमर अकबर एंथनी, अंधा कानून वगैरह, उनको मैंने लाके डायलॉग्स को लिखा, उनको बाय हार्ट किया। फिर एक एक एक एक जैसे मौके मिलते गए, मैं एक एक सीन लोगों के सामने करता गया। और उस वक्त बहुत पसंद किया लोगों ने, क्योंकि अमित जी बिल्कुल एकदम टॉप पर थे, मोस्ट पॉपुलर उस वक्त थे उनके, जब डॉन वगैरह फिल्में आई थी। और कोई मिमिक्री आर्टिस्ट उस वक्त अमित जी की नकल नहीं करता था, तो दैट्स व्हाई लोगों ने बहुत पसंद किया। तो मेरी भी मतलब हिम्मत बढ़ गई।

शशि कपूर जी जो प्रोड्यूसर थे फिल्म अजूबा के, डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो मुझे ले गए अमित जी से मिलाने कि अमित जी ये सुदेश भोसले, इन्होंने गाया आपके जो दो गाने इन्होंने गाए हैं। तो अमित जी को मैं देख रहा था जैसे साक्षात, यकीन नहीं हो रहा था कि अमित जी सामने खड़े मेरे, तो मैं हाथ जोड़ के उनको नमस्ते करने लगा, तो सामने से वो हाथ जोड़ के बोले, भले अरे भैया हमारी आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है। ये उनका फर्स्ट रिएक्शन था। और जब जुम्मा चुम्मा मैंने गाया उसके बाद उन्होंने कहा अब मैं नहीं गाऊंगा, मेरे सारे गाने स्वदेश गाएगा। तो ये उनकी रिएक्शन थी। बहुत उन्होंने अप्रिशिएट किया मुझे और बहुत इनकरेज भी किया।

0: आज के फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था स्टेज की दुनिया के जाने माने कलाकार और पार्श्व गायक सुदेश भोसले पर।
1: आज के फनकार।

श्रोताओं नमस्कार, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। फिल्मी पर्दे पर अनगिनत किरदार नजर आते हैं। जैसे हम याद रखते हैं हीरो को, वैसे ही विलेन को भी नहीं भूल पाते हैं। एक ऐसे ही कलाकार सदाशिव अमरापुरकर, जिन्होंने पर्दे पर विलेन का किरदार निभाकर हमारे दिल में पैदा किया एक खौफ, और दूसरी ओर अपनी कॉमिक अंदाज से ठहाका लगाने पर किया मजबूर। पर फिल्मी पर्दे से दूर कैसा था उनका व्यक्तित्व? पर्दे पर विलेन बनते सदाशिव अमरापुरकर असल जिंदगी में थे कैसे? उनका ये व्यक्तित्व हमारे सामने लाई हैं

0: बेटी रीमा अमरापुरकर, उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में इन दिनों हम सुन रहे हैं जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की यादों के उजाले। बांट रही हैं हमारे साथ उनकी सुपुत्री रीमा अमरापुरकर। आपसे बातचीत की है यूनुस खान ने। पिछले सप्ताह हमने इस बातचीत की पहली कड़ी सुनी थी, आइए आज सुनते हैं दूसरा भाग।
1: हम बात कर रहे थे राज से स्वराज तक अमाला लाना का सीरियल, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की आजादी की कहानी और इतिहास अगर आपको देखना हो तो बहुत महत्वपूर्ण सीरीज। लेकिन इसके साथ साथ जो जिक्र निकला वो श्याम बाबू का निकला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल मिला था सदाशिव जी को भारत एक खोज में। उसके बारे में बताइए।
2: हाँ, वो रोल था महात्मा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, और वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल था जैसा मैंने कहा, क्योंकि महात्मा फुले ये पापा के जो ऐसे कुछ हमारे आइडियल्स होते हैं,
1: बिल्कुल,
2: जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, समझते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं, तो महात्मा फुले वैसे आइडियल्स में से एक थे। सो शाहू फुले अम्बेडकर, ये तीनों नाम महाराष्ट्र में काफी लिए जाते हैं। और ये एक विचारधारा है कि सब इंसान जो है, सब लोग इक्वल है, समान है। और इसकी पहल ज्योतिबा फुले ने की थी जब उन्होंने स्त्री शिक्षण के लिए काम किया, जब उन्होंने दलितों को काम देने के लिए काम शुरू किया। उनकी एक कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो शुरू किया जिसमें हर एक जाति धर्म के इंसान को काम दिया जाएगा, इस तरह से काम होता था। तो ये जो है वो पापा की जो जीवन के प्रति दृष्टि थी उससे बहुत मिलता जुलता ये सब था। तो इसलिए उनके दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ये एक रोल वॉज अ ड्रीम रोल फॉर हिम, क्योंकि देखने में तो वो बहुत ज्यादा महात्मा फुले जैसे थे ऐसा मैं नहीं कहूंगी, पर जो आइडियल्स और जिस तरह से श्याम बाबू ने वो भारत एक खोज की स्क्रिप्ट जिस तरह से लिखी गई थी, और श्याम बाबू ने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जाति व्यवस्था किस तरह से इन्हें फेस करना पड़ा, सब कुछ वो जिस तरह से आया था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था पापा के लिए और उन्होंने बहुत एंजॉय किया। बिकॉज श्याम बाबू के साथ काम करना यही एक बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस हर एक कलाकार जिसने श्याम बाबू के साथ काम किया है वो आपको बता सकते
1: हैं। अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया।
2: हाँ, वो
1: आप तो किसी भी विषय का जिक्र करें
2: करेक्ट
1: तो वो पेज खुल जाएगा।
2: करेक्ट,
1: वैसे जैसे आज हम क्लिक करते हैं ना।
2: हाँ हाँ, वैसे तो ही हिमसेल्फ वॉज अ सर्च इंजन, इस तरह से आप कह सकते हैं।
1: yes.
2: क्या होता है किसी भी कलाकार के लिए कि वो खुद की एक तैयारी करता है, राइट? तो महात्मा फुले के बारे में हम बचपन से स्कूल में पढ़ते आते हैं, स्पेशली महाराष्ट्र में तो बहुत ज्यादा पढ़ा जाता है। तो एक सोच होती है अपनी, एक विचार होता है, और फिर बड़े होते हो और स्कूल की किताबों के अलावा भी कुछ पढ़ते हो तब हमें और ज्ञान मिलता है कि और ये इंसान कैसा था, इसकी रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ कैसी थी, इसने जो स्त्री शिक्षण के लिए काम किया ये क्यों किया। पापा कहते थे कि मैं मेरी एक सोच लेकर गया था कि महात्मा फुले ऐसे थे, उन्हें ऐसे दिखाना जरूरी है, पर जब श्याम बाबू ने उनका पर्सपेक्टिव एक्सप्लेन किया तो एक बहुत अलग तरीके से महात्मा फुले उन्हें समझ में आए। तब तक के जो महात्मा फुले पापा को समझ में आए थे वो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के रेफरेंस से समझ में आए थे, और जब भारत एक खोज में पापा ने वो रोल किया और श्याम बाबू ने उन्हें एक्सप्लेन किया कि महात्मा फुले की जगह भारत के इतिहास में, पूरे इतिहास में क्या है, उस समय पापा को ये समझ में आया कि नहीं, ये महात्मा फुले, हम लोग भले ही उनको लिमिट करते हैं महाराष्ट्र तक, पर ही इज अ नेशनल हीरो।
1: एक व्यापक दृष्टिकोण,
2: व्यापक दृष्टिकोण है ऑफकोर्स। और उन्होंने जो मूवमेंट शुरू की है अछूत परंपरा के खिलाफ या स्त्री शिक्षण के लिए, ये आगे जाकर गांधी जी ने, अम्बेडकर साहब ने, इन सब ने वो आगे वो लेके गए हैं, पर उसका मुख्य स्रोत महात्मा फुले है। तो ये जब पापा को समझ में आया तब बहुत ही प्राइड वाला वो मोमेंट था कि मैं महात्मा फुले कर रहा हूं और श्याम बाबू के साथ कर रहा हूं। और उस वक्त भारत एक खोज एक ऐसी सीरियल थी जिन्हें याद होगा कि हर रविवार को लोग बैठे रहते थे कि अभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा, और पूरे देश के सबसे बेहतरीन कलाकार उस समय उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थे। और बिकॉज अगेन

श्याम बाबू थे, तो इसलिए श्याम बाबू ने एक एक चुन चुन कर कलाकार उसमें लिए हुए थे। तो इट वॉज अ वेरी एनरिचिंग एक्सपीरियंस ऐसा मैं कहूंगी। जैसे मैंने कहा कि लोकमान्य तिलक का तो वो उनका एक जुनून था कि अभी मैं करके दिखाऊंगा, पर महात्मा फुले का जब उन्होंने कैरेक्टर किया तब और थोड़ा आगे आ चुके थे जिंदगी में, थोड़ी मेच्योरिटी और आ गई थी, और श्याम बाबू के निर्देशन में वो करना बहुत ही सुंदर अनुभव था। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने लिटरेचर, दलित लिटरेचर जिसे हम कहते हैं मराठी में, वो पढ़ा, उसके बारे में उनकी सेंसिटिविटी है, उनकी जो समझ है वो जिस तरह से डेवलप होती गई, और फिर उसके बाद वो जब सामाजिक कामों में गए तब उन्हें उसका बहुत फायदा हुआ उस रोल का और उस समझ का।

0: बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाद की पीढ़ी के जिन्होंने अपने बड़ों से भारत एक कोच की कहानी सुनी है कि ऐसा सीरियल होता था और लोग रुक जाते थे और रविवार का इंतजार किया जाता था, तो बाद की पीढ़ी के लोग इसे ढूंढ कर देखते रहे हैं। बल्कि इस इंटरव्यू के लिए जब मैं वो एपिसोड देख रहा था तो मैंने देखा कि सदाशिव जी आंखों में एक इंटेंसिटी नजर आती है जब वो अपने संवाद बोल रहे हैं, अलग अलग दृश्यों में जहां उनको खेलने का मौका मिलता है तो खेल जाते हैं, उस रोल को वो एंजॉय करते हुए नजर आते हैं। क्या कभी कोई ऐसा जिक्र है जहां किसी ने उनसे कहा हो कि तुम्हारी आंखें बहुत बोलती हैं और तुम्हारे अभिनय की बड़ी जंग आंखों से जीतती हैं?
1: एक्चुअली ये इसके लिए हमें फिर से अर्ध सत्य की तरफ जाना पड़ेगा, बिकॉज मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। तब गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसका जिक्र है।
1: तो तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है और इसलिए वो कैरेक्टर के लिए तुम एकदम परफेक्ट हो। और आप अगर अर्धसत्य देखेंगे आज भी तो आप देखोगे, आई थिंक वेव्स पर ही है, वेव्स प्लेटफॉर्म पर, तब आप देखोगे कि जिस तरह से आंखों का अभिनय किया है पापा ने, उसके बाद जब भी उन्होंने कमर्शियल फिल्में की उसमें वो इंटेंसिटी नहीं आई है, पर वही इंटेंसिटी आपको राज से स्वराज तक में दिखेगी,
0: बिल्कुल
1: वही इंटेंसिटी आपको डिस्कवरी ऑफ इंडिया में दिखेगी, वही इंटेंसिटी आपको वास्तु पुरुष में दिखेगी। ऐसी कुछ चुनिंदा रोल्स हैं जिनमें वो इंटेंसिटी समझ में आती है और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत कम निर्देशक है जो वो एक्सप्लॉइट कर पाए हैं जो आंखों की उनकी इंटेंसिटी थी।
0: अर्धसत्य जब कामयाब हुई और अर्धसत्य में जब हम सदाशिव जी को देखते हैं तो जब उनके दृश्य आते तो एक सिहरन देखने वाले को दौड़ जाती है, मतलब एक ठंडा सा भय महसूस होता है, जबकि कितने कम दृश्य हैं
1: और वो पूरे
0: साढ़े तीन दृश्यों में जो उन्होंने कमाल किया। उसके बाद उनके पास बहुत ज्यादा ऑफर्स आने लगे और उसके बाद की जो कहानी है कि कैसे उनसे कहा गया सेक्रेटरी रख लो वो बताइए।
1: तो इसके लिए मुझे आपको बताना पड़ेगा कि जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब क्या हुआ था।
0: हाँ बिल्कुल, यहाँ से ही आगे चलिए। हाँ,
1: तो जब अर्धसत्य रिलीज हुई तब मेरे चाचा जी ने केमिस्ट की दुकान खोली थी अहमदनगर में। मेरे चाचा जी बहुत मेरे दादाजी की तरह ही बिजनेस माइंडेड और इस तरह से थे, कलाकार। मेरे पापा एक हमारी फैमिली में निकल गए कलाकार और पापा उनको मदद कर रहे थे क्योंकि नया नया दुकान शुरू हुआ था, प्रीमियर था बम्बई में अर्धसत्य का। तो पापा ने दादाजी से पूछा, बिकॉज उस वक्त तो ऐसे होता था ना कि पिताजी की परमिशन के बिना आप कहीं नहीं जा सकते। तो उन्होंने पूछा कि मैं जाऊं, वहां पर प्रीमियर है। तो क्योंकि उससे पहले 22 जून 1897 आई हुई थी और वो फिल्म कुछ खास चली नहीं थी, तो दादाजी ने पूछा, अच्छा कितना रोल है तुम्हारा? कुछ है, तीन साढ़े तीन सीन है। तीन साढ़े तीन सीन के लिए तुम अहमदनगर से उठ के बॉम्बे जाओगे? नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं जाना, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे लोग नहीं है, मदद करो। ऐसा माहौल था उस वक्त घर पर। तो पापा ने हाँ कहा। उस वक्त हमारे यहाँ पर फोन भी नहीं था और हमारे ही हवेली में बाहर की तरफ जो दुकानें थी वो रेंट पे दी हुई थी। हमारे बाजू में एक जो दुकान था, मेडिकल शॉप के बाजू में, वो एक स्पोर्ट्स का दुकान था, वहां पर एक फोन था। तो पूरा जो हमारा एरिया था वो उसी फोन पे फोन उसके लिए आते थे। फिल्म रिलीज हुई और प्रीमियर पे

0: रामा शेट्टी तो था नहीं, और सबको समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये है कौन, ये बंदा है कौन, ये रहता कहाँ है, क्या करता है, बिकॉज उनका ऐसे नेटवर्क भी नहीं था हिंदी थिएटर में जैसे पहले हुआ करता था लोगों का। तो फिर तेंदुलकर साहब से लोगों ने फोन नंबर लेकर, अहमदनगर में ट्रंक कॉल होते थे उस वक्त, तो वो नंबर लगाकर रुकना पड़ता था, जब कॉल लगेगा तब वो लगेगा, इस तरह से। और उस दिन जो वो फोन बजना शुरू हुआ, वो दिन भर वो फोन बंद ही नहीं हुआ। अल्टीमेटली शाम को वो शिंदे के जो मालिक थे, उन्होंने वो उठाया फोन और बाजू में रख दिया, निकाल के रख दिया, अनहुक कर दिया कि बस अभी नहीं बजना चाहिए फोन। और जब इस तरह से देखा, तब दादाजी ने कहा ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो अब तुम जाओ बम्बई और देखो क्या हुआ है। उसके बाद फिर हम बम्बई आए, बिकॉज उस समय दिवाली के दिन चल रहे थे, तो वो छुट्टियों का मौसम और वो सब करके 83 की बात है ये, हम लोग बम्बई आए। और जैसे ही हम तो उस वक्त लाल डिब्बे से ट्रैवल करते थे, स्टेट बस से हम लोग उतरे, बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन था वहां पर उतरे, क्योंकि उस वक्त अहमदनगर में फिल्म भी इमीडिएटली रिलीज नहीं होती थी,
1: देर से आती थी,
0: एक डेढ़ साल के बाद वहां फिल्म आती थी। तो हमें तो पता ही नहीं था बॉम्बे में क्या हुआ है। तो हम लोग उतरे और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: वाह वाह।
0: फिर एक सरदार जी ने पापा को कहा कि अरे भाई तुम टेंशन मत लो, चलो चलो चलो चलो, और उन्होंने हमारा सामान उठाया, टैक्सी में डाला हम सबको, वरना हम लोग
1: गिर जाते,
0: हम लोग ट्रेन से घर जाने वाले लोग थे कि अभी बस से उतरे हैं, ट्रेन पकड़ेंगे घर जाएंगे। इस तरह से नहीं नहीं बैठो तुम टैक्सी में, ये वो करके फिर वो हम लोग गए अंधेरी में, किराए का घर जो था वहां पर तारा, पापा पैसे देने लगे टैक्सी के, तो नहीं नहीं नहीं नहीं रामा शेट्टी से पैसे नहीं दे सकता मैं। और हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो क्या रहा है।
1: बिल्कुल, सोचिए कि हम किस जमाने में ये बात कर रहे हैं, जबकि फिल्म के प्रीमियर के बाद रीलें चल पड़ती हैं।
0: हाँ,
1: और रातों रात बंदा स्टार
0: बन जाता है।
1: और कोने कोने में खबर फैल जाती है, और यहाँ अहमदनगर में पता ही नहीं है कि बम्बई में क्या धमाका हो चुका है।
0: वाह। उस वक्त फिर ऐसा हुआ था कि हमारे घर पे जब हम पहुंचे, तो वहां पर किराए का घर था, पर लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर ये रहते हैं। अगेन हमारे जो नेबर थे उनके पास फोन था, तो उनका फोन बजता था। हमारे घर पे फोन ही नहीं था, हमारे घर पे उस वक्त टीवी भी नहीं था एक्चुअली। इसलिए फिर उन्होंने अल्टीमेटली हमें कहा, पवार साहब करके थे, कि भाई अभी तुम एक फोन ले लो।
1: इतने फोन आने लगे।
0: मेरे ख्याल से उस समय जो टेलीफोन कंपनी थी उसमें नंबर लगाना पड़ता था, 6-6, 7-7 महीना, 1-1 साल फोन आने में लग जाता था, पर बिकॉज रामा शेट्टी के लिए वो था, इसलिए रातों रात हमारे घर पे उस वक्त फोन आ गया था। मुझे याद है कि अल्टीमेटली तेंदुलकर साहब ने ही पापा से कहा था कि देखो सदाशिव, अभी तुम इतने ये हो चुके हो कि तुम अभी खुद बात नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स से, यू नीड अ मैनेजर। और फिर उन्होंने एक सेक्रेटरी उनको रिकमेंड किया था, और फिर पापा ने वो सेक्रेटरी रखा था। और मुझे याद है एक हफ्ते में उस समय पापा ने 200 फिल्में साइन की थी।
1: अरे बाप रे, इतना आदमी एक जीवन काल में करता है
0: एक्चुअली। तो एक हफ्ते में 200 फिल्में उन्होंने साइन करी थी, जो आगे 8-10 साल तक उनका काम उसी में चल रहा था।
1: गजब। मैंने ये भी बात पढ़ी है कि चूंकि थिएटर की दुनिया से आए थे और एक सीधे साधे व्यक्ति थे, तो उन्हें मुंबई के फिल्म जगत की तिकड़म नहीं पता थी कि कैसे अपना रेट तय करना है, कितने पैसे मांगने हैं। और वो शुरुआती जो दौर था वो इसी तरह का दौर था जब उन्हें खुद अपना ही मोल नहीं पता था।
0: मैं तो कहती हूँ पापा को अंत तक खुद का मोल नहीं पता था। मैं ये इसलिए कहती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल अंदर बाहर से एक कलाकार थे। जैसा मैंने पहले कहा था कि भोला सांब, जो मराठी में कहा जाता है कि जिसे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं होता, वैसे ही उनकी ये थी। उस वक्त भी ही यूज टू डिपेंड ऑन हिज सेक्रेटरी कि भाई तू डिसाइड कर कितना लेना है, किससे कितना लेना है।
1: एग्जैक्टली।
0: पर उसमें भी उनका ये होता था कि भाई ये रोल के लिए एक पैसा भी नहीं मिला फिर भी मैं ये करूंगा। हालांकि ही वॉज अ बिग स्टार उस वक्त, लेकिन वो आखिर तक उनका था। कुछ लोगों के लिए, कुछ प्रोग्राम्स के लिए वो कहते थे कि मैं अवेलेबल हूँ, तुम बताओ तुम्हें कब की डेट चाहिए, फिर

0: वहां पर काम अगर मेरा छूटता है दूसरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो बिल्कुल कलाकार थे और एंड तक उन्होंने कभी पैसों के मामले में और इसमें ध्यान ही नहीं दिया। जो पैसा आना शुरू हुआ तो लकीली मम्मी को उसका सेंस था कि इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है पैसों की, इसलिए उन्होंने वो किया, इसलिए आज तक हम लोग सही सलामत है। वरना पापा को उनका खुद का भी मोल पता नहीं था। मुझे नहीं लगता टिल द एंड उन्होंने खुद की जो वैल्यूएशन की थी, बहुत ज्यादा मांग सकते थे पर उन्होंने मांगा नहीं कभी, बिकॉज पैसा ये उनके लिए प्रायोरिटी ही नहीं थी। उनके लिए प्रायोरिटी थी कि मैं काम करता रहूं, मैं एक्टिंग करता रहूं, मैं लोगों से मिलता रहूं, मैं लोगों के लिए कुछ करता रहूं। तो टेक्निकली क्या था, बिकॉज पापा ने फिल्म इंडस्ट्री को घर से बाहर रखा हुआ था, हमारे घर पे बहुत ज्यादा फिल्मी लोग नहीं आते थे, तो इसलिए उनकी उस वक्त क्या प्रोसेस थी, वो रेट किस तरह से डिसाइड होता था, फिल्म की फीस क्या डिसाइड होती थी, ये प्रोसेस के बारे में मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करने लगी तब मुझे समझ में आया कि पापा ने तो खुद को बहुत अंडर वैल्यू कर रखा है।
1: अरे सत्य की बात, जब वो बिजी हो रहे थे लगातार तो जाहिर है कि वो एक थिएटर की धारा पीछे छूटती चली जा रही थी। जाहिर है कि इस बात की एक एक तकलीफ, एक एक खालीपन उनके मन में रहा होगा। उसका कभी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे थिएटर का हाथ छूटता जा रहा है?
0: हाँ, पर उनका थिएटर का हाथ भले ही दूर गया हो उनसे पर छूटा कभी नहीं था। ये मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि उनके दोस्त, जिन लोगों के साथ उनकी उठन बैठन होती थी, वो सारे या तो थिएटर के होते थे या तो समाज सेवक होते थे। तो उनका जो स्ट्रक्चर था, जिस तरह से वो बने हुए थे, उसमें ही थिएटर था। तो उनके जो कॉलेज के दौरान जिन लोगों के साथ वो थिएटर करते थे, जिन लोगों के साथ रिहर्सल्स करते थे, उनका जो ग्रुप था वो उनका ग्रुप आखिर तक था। तो इसलिए थिएटर कभी उनसे छूटा नहीं था एक्चुअली। और उन्होंने थिएटर किया नहीं किया ऐसी भी बात नहीं है, उन्होंने एक प्ले किया था अकस्मात मीना कुलकर्णी के साथ जो सुपर हिट था, और ये मैं बात कर रही हूँ 91-92 की,
1: जब वो बहुत बड़े स्टार,
0: बहुत बड़े स्टार थे, सड़क से थोड़ा सा ही पहले, तो या आफ्टर सड़क आई थिंक। तो उस वक्त भी उन्होंने वो प्ले किया हुआ था, बिकॉज वो कैरेक्टर ऐसा था कि इट नीडेड अ परफॉर्मेंस एंड इट वॉज चैलेंजिंग। तो अगर चैलेंजिंग है तो वो करने के लिए तैयार थे, क्योंकि क्या होता है, एक बार आप स्टार बन जाते हो तो थिएटर वाले हो या फिल्म वाले हो, ये आपका स्टारडम एनकैश करने के लिए ही ज्यादा आपके पास आते हैं।
1: बिल्कुल।
0: और वैसे ही रोल आपको ऑफर किए जाते हैं। काफी सारे कलाकारों के साथ ये ट्रेजेडी हुई है, पापा भी उससे छूटे नहीं हैं। पर उन्होंने वो प्ले किया था क्योंकि उनके जो दोस्त थे सुरेश चिखले, उन्होंने वो लिखा हुआ प्ले था, और वो प्ले बहुत ज्यादा चला। उसके लगभग आई थिंक 1.5 साल उन्होंने उसके शोज किए, पर उस वक्त थिएटर का परफॉर्मेंस या फिल्म के शूटिंग्स इतने इराटिक हुआ करते थे कि एक डेट देना और वो स्टिक करना, जैसे अभी होता है कि जो मराठी कलाकार थिएटर करते हैं वो वीकेंड्स रख देते हैं कि वीकेंड्स पे मेरे शोज होंगे और मंडे टू फ्राइडे मैं काम करूंगा, राइट? सो वैसे उस समय एक्टर्स के पास ये सहूलियत नहीं,
1: तब उतनी सिस्टमैटिक इंडस्ट्री नहीं,
0: बिल्कुल ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। तो इसलिए उनका वो छूटा। पर बाद में जब उन्होंने धीरे धीरे काम कम करते गए, वो तब उन्होंने एक प्ले किया था जैसा तैसा विठोबा, विच वॉज अ वन मैन शो।
1: ओके, सोलो था।
0: सोलो था और पूरा 2 घंटे पापा अकेले स्टेज पर।
1: क्या बात है, क्या बात
0: ये
1: है?
0: 2003-04 की बात कह रही।
1: खुद ही डायरेक्ट किया था या किसी
0: नहीं,
1: और
0: नहीं,
1: को दिया?
0: चंद्रकांत कुलकर्णी करके हमारे मराठी के बहुत बड़े दिग्दर्शक हैं, उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था ये प्ले। और लिखा था आनंद विनायक जातेगांवकर करके बहुत बड़े फिलोसॉफिकल राइटर होकर गए हैं, उन्होंने लिखा हुआ था ये प्ले। सो तुकाराम महाराज जो संत है उनके अभंगों के ऊपर बेस्ड ये प्ले है। ये इसका ऑडियो ट्रैक है, बिकॉज ये सुनने वाला ही प्ले है।
1: बिल्कुल, ये भी एक माइलस्टोन है कि वो करते चले गए जहां तक उनका बस था।
0: अगर कुछ नया करने के लिए मिल रहा है तो उन्हें वो करना होता था। तो इसलिए आई थिंक जैसा तैसा विठोबा वाज अ ब्रिलियंट अटेम्प्ट दैट ही डिड। उसके बाद वो थिएटर फिर से शुरू करना चाहते थे, हालांकि जब उनकी तबीयत बिगड़ गई उस वक्त भी वो एक प्ले निर्देशित और एक्ट करने के प्रोसेस में थे। और तब वो उनका रिहर्सल्स और ये शुरू हो ही रहे थे पर उनकी तबीयत उनकी साथ नहीं दी इसलिए वो नहीं हो पाया।
1: जी, जिस समय वो व्यस्त होते चले जा रहे थे उस समय जाहिर है कि उनका एक रूटीन होता होगा और घर पर थोड़ा कम समय देते होंगे, तो बच्चों ने कितना मिस किया उनको?
0: बहुत। मैं तो खैर बहुत ही छोटी थी
1: जी,
0: लेकिन मेरी

0: बहनों ने काफी मिस किया।
1: वो बड़ी थी और
0: हाँ वो बड़ी थी, समझदार थी, क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मुझे ऐसे कुछ अलग लगता नहीं था, बिकॉज पापा बिजी ही थे। तो आप कहते हो कि रूटीन है, तो ये फिल्म एक्टर्स का ना रूटीन ही नहीं होता है।
1: बिल्कुल
0: हाँ, क्योंकि जो शिफ्ट लगती है, शूटिंग की जो शिफ्ट होती है, उस हिसाब से उन्हें जाना पड़ता है। और जैसा मैंने कहा कि अभी कलाकारों के पास ये सहूलियत है कि एक टाइम पे वो एक ही फिल्म करेंगे एक समय पे, वैसे उस वक्त नहीं था कि दो तीन दिन एक हफ्ता किसी एक फिल्म का शूटिंग कर लिया, फिर बाद में दूसरी किसी फिल्म का शूटिंग कर लिया। तो जैसे शूटिंग लगते थे, जैसे डेट्स दी जाती थी वैसे देते थे, क्योंकि पापा हो लिए, गोविंदा हो लिए, ये जो सब सारे कलाकार थे, इनकी डेट्स तीन तीन चार चार साल तक बुक्ड रहती थी।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए उनका कोई रूटीन नहीं था एक्चुअली। लेकिन एक ही रूटीन था कि पापा होंगे तो पापा है, घर पर है, हमसे बात करेंगे, हम सब बैठ के साथ में खाना खाएंगे, उनके दोस्त आएंगे, उनके साथ टाइम पास होगा, ये रूटीन एक डेफिनेटली होता था। और जब वो अनिल शर्मा जी की फिल्में कर रहे थे तब तो राजस्थान और कश्मीर में महीना महीना शेड्यूल लगते थे, तो जब पापा आने वाले हो तो हम बच्चों को कैसे पता चलता था, बिकॉज उनकी जो फेवरेट मिठाइयां होती थी ना वो मम्मी बनाती थी।
1: अच्छा, तो उससे अंदर
0: था शायद पापा आजकल में आने वाले।
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और हमारा रूटीन लगभग मम्मी के साथ ही रहता था, मम्मी ही डिसाइड करती थी हम कैसे पढ़ेंगे, हम कहाँ ट्यूशन के लिए जाएंगे, हम क्या कपड़े पहनेंगे, हम क्या करेंगे, बिकॉज वो ही पूरा वक्त होती थी हमारे साथ। पापा तो बाहर का होते थे और इतने बिजी होते थे कि ही वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ आवर डिसीजन मेकिंग, हमने जो निर्णय लिए उसमें वो कभी नहीं थे। पर मैं इस बारे में बहुत लकी समझती हूँ खुद को कि जैसे मैं कॉलेज गई 2001 के आसपास, तब पापा ने काम बहुत कम कर दिया था, बिकॉज उन्हें ही हैड बिकम बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग्स, कि एक विलन है या एक कॉमेडियन है, वही वही काम करके उन्हें ऐसा हो गया था यार अभी नहीं करना है बस। और जैसा मैंने कहा कि पैसा और बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इसमें उनका कभी ध्यान नहीं था, तो उन्होंने एक दिन ये डिसीजन ले लिया और मम्मी को बोल दिया कि देख जितना मैंने कमाया है उसमें तुम और मैं मरने तक तो खा पी के सुखी रह सकते हैं, अभी और कमाने की जरूरत है क्या। क्योंकि मेरी माँ ऐसी है कि उन्होंने उनको पूजा ही था प्रैक्टिकली। तो उन्होंने कहा अगर आपको नहीं करना है तो आप मत कीजिए, आपको जो दिल में आता है वो कीजिए। और उस तरह से उन्होंने काम छोड़ दिया था, प्रैक्टिकली छोड़ दिया था कि अब अगर मुझे इस तरह के रोल्स आते हैं तो मैं नहीं करूंगा। और उन्होंने फिर उनकी किताबें पढ़ना, फिर अहमदनगर जाना, पूना जाना, दोस्तों के साथ मिलना बैठना, उस समय सैटेलाइट टेलीविजन आ गया था तो इंटरनेशनल फिल्में घर पर बैठकर देख सकते थे, तो फिल्में देखना, नेशनल फिल्म आर्काइव में जाकर वो एक एक हफ्ते के लिए, उनका एक छोटा स्क्रीनिंग रूम है पूना में, वो बुक करके रखते थे कि मुझे अच्छा। ये फिल्में देखनी है और वो फिल्में वो देखते थे वहां बैठकर।
1: ये ड्राइंग और फोटोग्राफी का क्या मामला था?
0: जैसा मैंने कहा कि पापा एक निर्देशक भी थे, तो उनकी नजर हमेशा कुछ अलग अगर दिखता है तो उसके ऊपर टिकी रहती थी।
1: ओके।
0: और हमेशा ढूंढती थी कि कोई नया कुछ अगर दिखाई दे। तो लकीली और उनके काम की वजह से उन्हें पूरा भारत वो घूमे, हालांकि आधे से ज्यादा दुनिया वो घूमे। उस वक्त तो बड़े बड़े कैमराज होते थे, लेंस और फिल्म्स होती थी उसमें, रोल वाले कैमराज होते थे, वो लेकर वो चलते थे साथ
1: वाह वाह।
0: जहां पर भी वो जाते थे, राजस्थान हो, वेस्ट बंगाल हो, साउथ इंडिया हो, कोडाईकनाल, जहां पर भी वो शूटिंग के लिए जाते थे वहां पर उनके साथ उनका कैमरा होता था। तो अगर अहमदनगर में जो हमारा घर है जो पापा ने बनाया हुआ है उसमें अगर आप कभी आओगे, किसी को अगर चांस मिलता है वहां जाने का और देखने का, उस घर का पूरा हमारा इंटीरियर सिर्फ फोटोग्राफ्स है जो पापा ने पूरे इंडिया में जाकर खींची हुई तस्वीरें हैं। उसमें फैमिली फोटोग्राफ्स भी है ऑफ कोर्स। तो वो जो टेक्निक है फोटो की, उन्हें मैनुअल कैमरा अच्छा लगता था, डिजिटल कैमरा उन्हें बिल्कुल, उन्हें लगा ये क्या बचकाना है ना। तो वो लेंस एडजस्ट करो, फोकस करो, इत्मीनान से शूट करो, इस तरह से उनकी वो स्टाइल थी। तो या तो उन्हें फोटोग्राफी का बहुत शौक था। और उनके जो दोस्त थे, सबसे करीबी दोस्त हम जिन्हें कह सकते हैं, डॉक्टर अनिल अवसठ है, फिर डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर है जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति जिन्होंने शुरू की थी, तो इन सब लोगों को भी ये सब शौक

0: थे, तो इसलिए इनके साथ तो किताबें, फोटोग्राफी और पेंटिंग, ये तीन चीजें थी जो इनको बहुत ज्यादा पसंद थी, ये सब लोगों को और पापा को विशेषता, क्योंकि उनके काम की वजह से वो जाते थे। और इसमें एक बात बताने वाली ये है कि ये जब भी जाते थे ना, जैसे उन्होंने मिथुनदा के साथ काफी सारे फिल्में की थी, तो उस वक्त ऊटी में शूटिंग होता था, 90s की बात कर रही हूं मैं, तो जब भी वो जाते थे तो उनके साथ उनके ये जो दोस्त थे, नरेंद्र दाभोलकर हो गया, डॉक्टर अनिल अवचट हो गए या राइटर्स थे, वो लोग साथ में होते थे
1: बाबा,
0: कि वहां पर शांति से मैं शूटिंग करूंगा, तुम बैठ के रूम में अपना लिखने का काम करना। तो ये सब लेखक थे, लेखक वैचारिक इसमें शामिल होने वाले, इस तरह के सारे लोग थे, तो हमेशा उनके साथ उनके दोस्त रहते थे, फैमिली मेंबर्स को वो कभी लेकर नहीं बिल्कुल बिल्कुल डे वन से, जैसे याद है जो लोग मम्मी की किताब पढ़ेंगे, अभी उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आएगा, मेरी बहन ही कर रही है, तो जब पढ़ेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि बचपन से लेकर आज तक, मतलब अभी भी टिल हिज लास्ट, उनके आजू बाजू हमेशा उनके दोस्त हुआ करते थे। जब वो छोटे, बिल्कुल छोटे थे, तब मेरे दादाजी की ईट बनाने का जो कारखाना होता है वो था, और वहीं पर एक साइड में छोटा सा घर बनाकर दादाजी, दादी और पापा सब लोग रहते थे, और वहां पर जो कामगार होते थे उनके रहने के लिए भी वहां पर रूम्स बनाए हुए थे, तो उन सारे कामगारों के बच्चों को लेकर पापा घर पर आते थे और दादी से कहते थे कि इन सबको भी दो,
1: वाह वाह,
0: मैं इनके साथ बैठ के खाऊंगा, तो दादी कहती थी कि चलो ठीक है, इसी बहाने खा लेगा सबको खिलाते थे। और मुझे जब से याद है बचपन से, तब से हमारे घर पे एक भी दिन ऐसा नहीं, मतलब पापा भले ही शूटिंग के लिए गए हो, पर उनके दोस्त बॉम्बई में किसी आते थे, तो वो अहमदनगर का कोई भी आदमी अगर बॉम्बे आता था तो हमारा घर उनका खुद का घर होता था।
1: वाह वाह वाह,
0: तो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मैं, मेरी माँ, मेरी बहनें और पिताजी इतने ही घर पर है, ऐसा एक भी दिन आज तक मुझे याद नहीं है।
1: हमेशा कोई ना कोई,
0: हमेशा कोई ना कोई होता था, या तो वो कोई लेखक होता था, कोई नया कलाकार होता था, या उनका कॉलेज का दोस्त होता था या कोई समाज सेवक होता था, या कोई ऐसा होता था जिसका कोई काम है, जिसे कोई परमिशन चाहिए, कोई है जो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, नया काम, जिसे भी बंबई में आकर कुछ मदद की जरूरत चाहिए होती थी, हमारा घर उन सब के लिए खुला होता था।
1: क्या बात है, इतनी शिद्दत से हम उन दिनों को याद करें जब वो बिजी थे, तो मुझे लगता है यहाँ बख्शी साहब का एक गाना आना चाहिए, तकदीर फिल्म का, पापा जल्दी आ जाना, सात समुंदर पार से।
0: श्योर,
1: ये गाना सुनते हैं।

0: बहुत सारी बातों के सिरे यहाँ पर खुले रीमा जी, लेकिन जो जिक्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से आया वो नरेंद्र दाभोलकर जी का है, अंधविश्वास निर्मूलन समिति का। उनके साथ उनके बहुत गहरे रिश्ते रहे, उसका जिक्र कीजिए कि किस तरह से वो इस समिति के साथ भी काम करते रहे।
1: करेक्ट, नरेंद्र काका जो थे वो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जो भारत में जो अंधश्रद्धा के खिलाफ बहुत बड़ी मूवमेंट हुई उसके प्रेरक तो थे ही, पर वो एक बहुत अच्छे इंसान, बहुत उम्दा इंसान थे। उनकी जो पहचान थी वो पहले डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर श्रीराम लागू, निरू फुले, इनके जरिए पापा की और उनकी पहचान बनी और आगे जाके फिर वो दोस्ती और आगे बढ़ी।
0: तस्वीरों में भी ये लोग साथ नजर आते हैं, बहुत सारी तस्वीरें,
1: काफी सारी तस्वीरें,
0: डॉक्टर लागू हैं, नीलू फुले हैं, ये सब साथ में दिख रहे हैं।
1: हाँ, एकदम, क्योंकि इन्होंने एक मूवमेंट करी थी जिसका नाम था सामाजिक कृतज्ञता निधि। सो सामाजिक कृतज्ञता निधि ये एक मूवमेंट थी जिसमें इन्होंने फंड रेजिंग की थी। लग्नाची बेड़ी करके एक प्ले था जिसमें पापा निणू फुले, डॉक्टर लागू, तनुजा जो एक्ट्रेस, तनुजा, सुहास जोशी, रोहिणी हट्टंगड़ी, ऐसे सब बड़े बड़े बड़े बड़े कलाकार, और इन्होंने पूरे महाराष्ट्र में घूमकर निधि जमा किया हुआ था।
0: नाटक करके, जो नाटक जिसका जिक्र आता है कि बड़ा तूफानी दौरा किया।
1: एग्जैक्टली, और ये मैं 84-85 की बात कर रही हूँ, और उस समय उन्होंने लगभग 60 लाख रूपये 84-85 में जमा किए हुए थे, जिसका हेतु ये था कि ये पैसे हम फिक्स करेंगे और इसका जो इंटरेस्ट इनकम आएगा उसमें से हर साल हम जो समाज के लिए काम करते हैं, जिनके घर चलने का और कोई जरिया नहीं है, उन्हें हम ये पैसे हर महीना देंगे 2 साल तक।
0: क्या बात।

0: एक तो ये कि ये रकम जो 80 के दशक में थी वो आज की तुलना में मुझे लगता है शायद 10 गुना और ज्यादा होगी।
1: ज्यादा ही। तो इस तरह से वो कंसेप्ट थी, ये कंसेप्ट निकली थी नरेंद्र काका के दिमाग से। और डॉक्टर लागू और नीलू फुले ये बहुत करीब से काम कर रहे थे ऑलरेडी डॉक्टर दाभोलकर के, और उन्होंने क्योंकि पापा के साथ उन्होंने काम किया हुआ था कन्यादान में, जैसे मैंने कहा डॉक्टर लागू से बहुत ही करीबी रिश्ता पापा का हो चुका था तब।
0: आगे चलकर उसकी अलग से बात करते
1: हैं। हाँ डेफिनेटली, हालांकि बहुत ही करीबी रिश्ता तब तक हो चुका था, इसलिए फिर डॉक्टर लागू ने कहा कि सदाशिव हम लोग ऐसा कुछ कर रहे हैं, आर यू इंटरेस्टेड? तो पापा ने कहा जरूर, क्यों नहीं, और इस तरह से पापा उसमें शामिल हुए। और ये सब लोग राष्ट्र के जितने भी थिएटर्स हैं, जितने भी छोटे बड़े गांव हैं, वहां जाकर आप इमेजिन कीजिए उस वक्त के नेशनल स्टार्स, डॉक्टर लागू, निलू फुले, पापा, तनुजा,
0: कमर्शियल सिनेमा की कमर्शियल, एग्जैक्टली,
1: हाँ हाँ, ये सब लोग वहां पर प्ले करते थे, परफॉर्मेंस तो लोग देखने आते ही थे इनका। और उसके बाद ये सब लोग जहां ऑडियंस एग्जिट होती है वहां पर झोला लेके खड़े रहते थे, झोला लेके खड़े रहते थे और लोग पैसे देते थे। सो जो शो के टिकटों में से पैसे आते थे वो तो आते ही थे, और लोग जिन्हें लगता है कि हमें और मदद करनी चाहिए वो उस झोली में 5 रुपया हो, 1 रुपया हो, 100 रुपया हो, जिसे जो अच्छा लगे वो उस झोली में डालता था, और ये सब पैसे मिलकर सामाजिक कृतज्ञता निधि के लिए जाते थे।
0: ये कितना बड़ा मुहिम, मतलब
1: बहुत ही
0: ये अद्भुत काम रहा उस जमाने
1: तो,
0: के हिसाब से।
1: और पापा ने मुझे कई बार बता भी चुके हैं, जिसका मेरे ऊपर भी काफी परिणाम रहा है, कि मेरी कला जो है वो सिर्फ मेरी नहीं है, मैं इस समाज का एक घटक हूँ, इसलिए इस समाज के प्रति मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और इसलिए मैं ये हमेशा पहली जिम्मेदारी ये समझूंगा कि मेरा देश और मेरा समाज, इसके लिए मुझे जो करना है वो मुझे करना है। और फिर मेरा कुटुंब आता है, फिर मेरी फैमिली आती है, फिर मैं आता हूँ। इस तरह से वो जिए भी इसी तरह से, और उन्होंने उनकी करियर भी इसी तरह से की। इसलिए जब वो टॉप पर भी थे तब उनके साथ कभी कोई फिल्मी लोग नहीं होते थे, उनके साथ ये सब समाज सेवक हुआ करते थे। हालांकि ये हमारी फैमिली की परंपरा रही है, मेरे दादाजी भी अहमदनगर के सामाजिक सर्कल्स में बहुत कार्यरत रहे थे टिल द एंड। और उस वक्त भी कॉलेज में भी जब पापा थे तो कोई बाढ़ आई है तो बाढ़ग्रस्तों के लिए कोई शो कर लिया, उनको फंड रेजिंग करके दे दिया, तो ऐसा फंड रेजिंग पापा करते रहे हैं। तो मुझे याद है 97 की बात है, तब हमारे अहमदनगर इज अ हिस्टोरिकल सिटी, और वहां पर एक म्यूजियम था जो एक सुरेश जोशी करके एक थे, जो बहुत भागदौड़ करके वहां पर वो म्यूजियम उन्होंने तैयार किया था, जमा किया था, पर फंड्स नहीं थे, इसलिए वो म्यूजियम जो था वो अभी बंद शायद करना पड़े इस कगार पर आ चुका था। और गिरीश कुलकर्णी जो है अहमदनगर के स्नेहालय के, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा हुआ था जो महाराष्ट्र टाइम्स में आया था, बॉम्बे में पापा ने पढ़ा, और उन्हें याद आया कि ये सुरेश जोशी जब वो छोटे थे तो अगर कुछ मिला, उस वक्त मोड़ी लिपि में सारे खत लिखे जाते थे, उसमें मिला तो आकर दादाजी के साथ बैठते थे, डिस्कस करते थे, बातें करते थे, तो पापा से रहा नहीं गया, वो उन्होंने गाड़ी निकाली, वो अहमदनगर पहुंच गया।
0: गजब।
1: क्योंकि सुरेश जी के पास ये नहीं था, फोन नहीं था, तो बात कैसे हो, तो वो अहमदनगर पहुंच गए, वो गए वहां पर उनके घर पर, उनसे मिले और कहा क्या कर सकते हैं हम, उन्होंने कहा कुछ फंड्स तो चाहिए जो हमें रेस करने ही पड़ेंगे। तो पापा ने कहा ठीक है, उस वक्त स्टार नाइट का ट्रेंड काफी चल रहा था, तो उन्होंने अहमदनगर में, बिकॉज पापा का कहना था कि ये हमारे शहर की धरोहर है और इसके लिए हमारे शहर ने ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए।
0: क्या बात है।
1: तो इसलिए उन्होंने उस वक्त गोविंदा असरानी जी, जॉनी लीवर, ये सारे जो बड़े बड़े कलाकार थे उनको लेकर एक स्टार नाइट अरेंज की अहमदनगर में, जहां पर रिलीज की डेट पे फिल्में भी रिलीज नहीं होती थी उस समय, लेट रिलीज होती थी, उन्होंने एक स्टार नाइट अरेंज की, जिस एक रात में, ये मैं 97 की बात कर रही हूं, एक रात में 26 लाख रुपया खड़ा किया गया फॉर द म्यूजियम, और ये बहुत बड़ी बात है, और आज भी वो म्यूजियम खड़ा है और बहुत अच्छे से चल रहा है।

0: बिकॉज लोगों को अभी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आया है। तो कई बार ऐसे होता है, पापा भी ये कहते थे कि लोग भूल जाते हैं कि इम्पोर्टेंट क्या है, महत्व किस चीज को देना चाहिए। तो हम अपनी जिंदगी तो जीते हैं, लेकिन जो ये अपना हमारा इतिहास है जिसमें से हम आगे आए हैं, हमारे जो पूर्वज हैं जिनके कंधों पर हम खड़े हैं आज, उनका रिस्पेक्ट रखना, उनकी यादें ताजी रखना, ये भी हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है।
1: क्या बात है।
0: तो इस तरह से वो करते रहे हैं और हमेशा, मैंने ये मेरे किसी आर्टिकल में भी लिखा हुआ है, मुझे याद है कि जब भी कोई आता था, जैसे मैंने कहा कि हमारा घर तो खुला ही था सबके लिए, तो जब भी कोई आता था तो अच्छा क्या हुआ, क्या चाहिए, अच्छा आप ये संस्था चलाते हो ठीक है, क्या आपको मदद की जरूरत है, तो कुछ परमिशन चाहिए, तो सीएम साहब को फोन लगा लिया, दिल्ली में फोन लगा लिया, कुछ फाइनेंशियल चाहिए, अच्छा चलो, तो मम्मी को बोल दिया अच्छा नंदा चेकबुक लेके आ जाओ, चेक निकाल के दे दिया। और इसमें मुझे मजे की बात ये लगती है कि मम्मी ने भी कभी उन्हें पूछा नहीं कि आप अभी इन्हें क्यों दे रहे हो, 10,000 रुपए इन्हें किस लिए दिए। इट वॉज वेरी क्लियर कि उन्हें देना है, उन्होंने दे दिए, खत्म बात।
1: वाह वाह।
0: तो ये जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये बहुत जबरदस्त थी, और उन दोनों की वैल्यू सिस्टम सेम थी। जैसा मैंने कहा कि वो एक ही स्कूल में बड़े हुए, एक ही गांव में, उनके पिताजी आपस में अच्छे दोस्त थे, तो उनकी जो मूल्य जिसे हम कहते हैं मूल स्वभाव में जो वैल्यूज थी वो बिल्कुल एक जैसी थी, और आई थिंक इसी की वजह से वो एक दूसरे को इतने अच्छे से साथ भी दे पाए। इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। और ऐसे घर में बड़ा होना ये नसीब वालों का ही काम है, तो आई एम वेरी लकी दैट कि इस घर में
1: बिल्कुल। चूंकि उनके सामाजिक सरोकारों की बात चल रही है, तो यहाँ मुझे होली वाली एक घटना का जिक्र जरूरी लगता है।
0: करेक्ट करेक्ट।
1: वो बताएं।
0: उस समय मैं पूना में थी, मेरी शादी रिसेंटली हुई थी, और मुझे वहां पर फोन आया, प्रसन्न जोशी करके कॉरेस्पॉन्डेंट है मराठी में बहुत बड़े, उनका फोन आया और उन्होंने पूछा रीमा ये सच है जो हम सुन रहे हैं? मैंने कहा क्या? मुझे कोई आइडिया नहीं था क्या हो रहा है। तो आपके पापा पर किसी ने हमला किया है? ऐसे क्या, मुझे पता ही नहीं था। और बात यह हुई थी कि उस समय नरेंद्र दाभोलकर, डॉक्टर अनिल अवसट, डॉक्टर लागू, इन सबके लिए काफी सारी धमकियां आने लगी थी, राइट? सो मुझे ऐसा लगा कि शायद वैसा ही कुछ हुआ हो, वी डोंट नो। मैंने कॉल किया मम्मी को कि क्या हुआ है ये वो। मम्मी का अभी नहीं, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। तो फिर मैंने मेरी बहन को कॉल किया, मेरी बहन बॉम्बे में ही, पास ही में उसका घर है, तो वो वहीं पर थी। तो उसने कहा इतना कुछ नहीं हुआ है, तुम आराम से बम्बई आ जाओ, फिर हम बात करते हैं। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो फिर मैं बॉम्बे पहुंची, तब पता चला कि हमारी जो सोसाइटी है उस समय 2012-13 की ये बात है, बहुत बुरी तरह से सूखा पड़ा हुआ था महाराष्ट्र में। दो दो साल तक बारिश नहीं हुई थी, तो जो किसान थे वो अनाज नहीं उगा पा रहे थे, और पानी हफ्ते में एक बार 2 घंटे के लिए पानी आ रहा था, इतना कम पानी लोगों को मिल रहा था छोटे गांव में, छोटे शहरों में। और यहाँ पर बम्बई में, बिकॉज हम बम्बई है, तो यहाँ पर किसी भी चीज की कमी नहीं होती, पानी 24 घंटे होता है, बिजली होती है 24 घंटे। तो हमारे सामने ही जो एक बिल्डिंग है उसके आंगन में उन्होंने उस वक्त होली के लिए रेन डांस का माहौल तैयार किया था। तो 8-10 ऐसे शावर कंटिन्यूअसली 3-4 घंटे चल रहे थे वहां पर। और उस समय ऐसा था कि उस समय मैंने भी एक डॉक्यूमेंट्री करी थी सातारा डिस्ट्रिक्ट में, जो कैटल कैंप्स लगे हुए थे कि किसानों के पास पानी नहीं है, इसलिए वो उनके जानवरों को पानी नहीं पिला पा रहे हैं, इसलिए वो कैटल कैंप्स में रह रहे हैं। पापा ने भी वो कैंप विजिट किया हुआ था। तो इस तरह से हम लोग बहुत ज्यादा उस समय उस चीज के बारे में अवेयर थे। और मीडिया से कॉल आया, बिकॉज सारे कलाकारों ने उस वक्त, और महाराष्ट्र सरकार ने भी कहा था कि सूखी होली खेलनी है ये साल, पानी नहीं जाया करना है, बिकॉज अलग अलग चैनल्स के रिएक्शंस के लिए फोन आते थे। वैसा फोन आया पापा को कि आपका क्या कहना है सूखी होली? तो पापा ने कैसी सूखी होली, मैं अभी देख रहा हूं मेरे सामने 3 घंटे से 10 शावर चालू है जिसके नीचे लड़के लड़कियां नाच रहे हैं, सब लोग होली खेल रहे हैं, मजे चल रहे हैं यहां पर। तो यहां पर किसी को कुछ पड़ी नहीं है महाराष्ट्र के किसानों का क्या होने वाला है। और ये पापा ने कहने के बाद इमीडिएटली ओबी वैन्स वहां पहुंची और उन्होंने वो कवर किया। तो पापा बिल्डिंग में से नीचे उतरे और एक रिपोर्टर उनके साथ था जो वो बातें रिकॉर्ड कर रहा था, और पापा दिखा रहे थे देखो किस तरह से ये चल रहा है। वो बिल्डिंग के जो लोग थे उन्हें

ये समझ में आया कि अरे ये कवर कर रहे हैं, न्यूज कवर हो रही है। तो उस वक्त वो सब दौड़ के हमारी बिल्डिंग में घुसे और उन्होंने वो कैमरा खींचा वो कॉरेस्पॉन्डेंट से। उस धक्का मुक्की में पापा को थोड़ा सा लग गया धक्का, उसका न्यूज में ऐसा हुआ कि उन पर हमला हुआ है। पर खैर वो बहुत दिनों तक वो बात चली, आगे उसकी कोर्ट केस हुई, सब हुआ, पर उनसे वो रहा नहीं गया। और पापा वैसे ही थे, वो

0: के मेरे दादी जो थी वो खुद एक किसान की बेटी थी। पापा के जो मामा वगैरह थे, मामा नाना, वो सब बहुत ही गरीब किसान थे। इसलिए जब भी छुट्टी होती थी तो ये छोटे गांव में जाते थे, क्योंकि उस समय तो ऐसा था ना, नानी के घर जाना है, तो तब ये खेतों में घूमते थे, तब ये रहते थे। तो किसान की जिंदगी क्या होती है
1: वो उनको पता था,
0: बहुत करीब से देखी हुई थी। तो इसलिए उनकी वो जो तड़प थी कि हमारे किसान किस तरह से सफर कर रहे हैं, किस तरह से उनकी जिंदगी पानी की कमी की वजह से खराब हो रही है, ये बहुत स्ट्रांगली उन्हें लगता था।
1: बिल्कुल, यहाँ एक गाना सुनते हैं,
0: sure.
1: दो आंखें बारह हाथ का,
0: हाँ।
1: ए मालिक तेरे बंदे हम।
0: ऑफ कोर्स।

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की सुपुत्री रीमा अमरापुरकर से यूनुस खान की बातचीत की दूसरी कड़ी। ये बातचीत जारी रहेगी अगले सप्ताह भी। इस कार्यक्रम में संपादन नेहा शर्मा का, विविध भारती की ओर से कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 30 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर कार्यक्रम रंग तरंग के साथ हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।

शंकर महादेवन की आवाज में ये पारंपरिक रचना आप सुन रहे थे। विरुद्ध फिल्म के इस रचना को अजय अतुल ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम रंग तरंग

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

0: पद्मश्री पद्मजा पिहानी जोगलेकर की आवाज में जिंदगी की जुबान इस एल्बम से ये गजल आपने सुनी, जिसे लिखा संदीप गुप्ता ने और महेश खानोलकर का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहाँ से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
3: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रंग तरंग। आपको याद दिला दें, शाम 4 बजे पिटारा के अंतर्गत सेहतनामा कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत की दूसरी कड़ी। और अगर छाया गीत कल रात आप सुन नहीं पाए हैं तो आज शाम 5 बजे पुनः प्रसारण सुन सकते हैं। फिलहाल रंग तरंग कार्यक्रम में यह अगला गीत।

हम साथ साथ हैं फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। हरिहरन, उदित नारायण, अनुराधा पौडवाल, कुमार सानू, अलका याग्निक की आवाजें, आर किरण के बोल, संगीत राम लक्ष्मण का। कार्यक्रम रंग तरंग विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

नीता फाजली के बोल आप सुन रहे थे। सुर फिल्म के इस गीत में महालक्ष्मी अय्यर और साथियों की आवाजें, एमएम क्रीम का संगीत। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत। और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं रंग तरंग। तो रंग तरंग में ये अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, नुसरत।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने वाले वे पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। समारोह में आयोजित परेड में भारतीय नौसेना और थलसेना की टुकड़ियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS तरकश और INS वीक्षक विक्टोरिया में तैनात थे। प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की जनता को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। समारोह में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में सेशल्स भारत के विजन महासागर का एक अहम साझेदार है और इस यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग को नई गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉ नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और प्रगति को विशेष महत्व देता है। प्रधानमंत्री को सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू हॉराइजन दिया गया है। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी ने उन्हें यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास और ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी को इससे पहले भी सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिल चुके हैं। इनमें संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य तथा कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा।

0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नागू की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली है। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तीर्थ यात्रा के आधिकारिक प्रारंभ से पहले सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही और समग्र तैयारियों की समीक्षा की गई। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह से अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बड़े भूस्खलन से गाय नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है। अमेरिका और ईरान ने जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमति जताई है। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर उत्पन्न हुए विवाद का समाधान करना है। पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर संघर्ष विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमरीकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 152 अंक गिरकर 76,948 पर और निफ्टी 26 अंक कम होकर 24,030 पर आ गया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमरीका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन यूस्टाकियो ने एकमात्र गोल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आरोप फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, माया गोविंद के बोल, भूपेन हजारिका का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए अब सुनते हैं इंदिवर के बोल सपन जगमोहन के संगीत के साथ, अभी तो जी लें। इस फिल्म से गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजें।

0: किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में अभी तो जीले फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। इंदिवर के बोल, सपन जगमोहन का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है। फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीजें अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रो एंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। आपको याद दिला दें कि शाम 7:45 पर रोजाना होते हैं नए नए कार्यक्रम। इंद्रधनुष के अंतर्गत आज आप सुन सकते हैं एक ही फिल्म से। इस कार्यक्रम में आज की फिल्म है उलझन और कार्यक्रम यादों की महफिल में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।

0: लता मंगेशकर की आवाज में आनंद फिल्म का गीत आपने सुना, गुलजार के बोल सलील चौधरी का संगीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं यादों की महफिल विविध भारती पर।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
1: गुजरे दौर की आवाजें धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

लता मंगेशकर की आवाज में अभिमान फिल्म से एक गीत आप सुन रहे थे, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं।

0: अखियों के झरोखे से, इस फिल्म से आप ये गीत सुन रहे थे। अखियों के झरोखों से, इस फिल्म से गीत आपने सुना। हेमलता और शैलेंद्र सिंह की आवाजें, रविंद्र जैन के बोल और इन्हीं का संगीत।
1: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
2: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
1: सखी सहेली?
2: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
1: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली।
0: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

मोहम्मद रफी की आवाज में आप सुन रहे थे अब्दुल्ला फिल्म से ये गीत, आनंद बख्शी की शब्द रचना, राहुल देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं। आइए सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत, एन इवनिंग इन पेरिस फिल्म से, और इसे संगीत से सजाया शंकर जयकिशन ने। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

देखो तब पूछो क्या है फिर न मिलना, अरे क्या है फिर न मिलना, दीवाने का नाम तो पूछो प्यार से देखो।

हैरत की शाम सुहानी, प्यार की नगरी रूप की रानी, बन के रहेगा कोई अफसाना, बन के रहेगा कोई अफसाना।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

0: आए जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: रियली?
0: राइट राइट।

0: कोतवाली तो जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्विस।
2: ओह माय,
0: राइट, मैं दुनिया में अकेला हूँ।
1: यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ द लीनिया is juxtapositioned by the hemoglobin of the atmospheric pressure in the country.
0: Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, zoo.

0: जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज,
0: माय नेम इज एंथनी गोंसाल्वेस।
2: हाउ क्यूट।

0: कोई किस्मत वाली, हर जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए, रूप महल प्रेम गली खोली नंबर 420।
1: एक्सक्यूज मी प्लीज, माय नेम इज फ्रैंकी।
2: नो
1: नो, सेबेस्टियन।
2: नो,
1: गोल्डी, सोल्डी।
2: नो, एंथनी गोंसाल्विस।
0: ओह यस, एंथनी गोंसाल्विस।
3: अमर अकबर एंथनी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें किशोर कुमार और अमिताभ बच्चन की। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम का अगला गीत आपकी कसम फिल्म से।

आपकी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संकेत। कार्यक्रम यादों की महफिल विविध भारती पर आप सुन रहे हैं और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत। आनंद बख्शी ने इसे लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, आवाजें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म आन मिलो सजना। सुनिए ये गीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस कार्यक्रम में हम करते हैं, इस कार्यक्रम में रोजाना एक इबारत या टेक्स्ट पोस्ट की जाती है जिसमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे संबंधित गीत इस कार्यक्रम में सुनाए जाते हैं और आपको इस टेक्स्ट को पढ़कर अंदाजा लगाना होता है कि कौन से ऐसे शब्द हो सकते हैं जिनसे गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वो टेक्स्ट तो आपने हमारे फेसबुक पेज पर पढ़ ही लिया है, लेकिन जो इससे नहीं पढ़ पाए हैं उनके लिए हम एक बार कार्यक्रम की शुरुआत में टेक्स्ट और या कहें इस इबारत को बता देते हैं। तो आज की इबारत है, ए दिल सुनो मेरी एक बात मानो तुम, तय जो किया तुमने वो सच करने की ठानो तुम, कभी गर राह हो मुश्किल तो खुद को आजमाना तुम, देखा कि ये दिन रात जो वो सपने सजाना तुम, किसी को देखकर धड़को तो फिर मुस्कुराना तुम, तुम्हारा भी तो दिल होगा उसे अपना बनाना तुम, कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। तो ये है आज की इबारत जिस पर संबंधित जो भी गीत हैं इनसे इनके अंदर जो भी शब्द हैं उन शब्दों में से कुछ शब्द ऐसे होंगे जिन पर आज गीत सुनवाए जाएंगे। हमारे साथियों ने तो बहुत सी बातें लिखकर भेजनी शुरू कर दी हैं और हमारे जो भी साथी जो अब तक हमारे फेसबुक पेज तक नहीं पहुंचे हैं उनके लिए बता दें कि www.facebook.com/vbsmumbai इस पते पर जाकर आप हमारे फेसबुक पेज तक पहुंच सकते हैं, या अगर आपका फेसबुक अकाउंट है तो आप फेसबुक अकाउंट के जरिए वहां अगर आप सर्च करेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा तो देवनागरी यानी हिंदी में लिखा हुआ आपको मिल जाएगा ये पेज, और इसमें एक ब्लू टिक भी मिल

आपको साथ में। यहाँ आपको सुरीला सफर की पोस्ट मिलेगी और भी विविध भारती के जो कार्यक्रम होते हैं उनकी पोस्ट भी आपको यहाँ नजर आएंगी। और इस सुरीला सफर की पोस्ट पर कमेंट के जरिए आप शामिल हो सकते हैं हमारे इस कार्यक्रम में रोजाना। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथियों ने जो बहुत सी बातें लिख भेजी है वो क्या है वो तो हम बताएंगे ही, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं आपसे कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा दिल कुछ और करना चाहता है, ऐसा लगता है कि हम क्यों ना अपने मन की कुछ काम करें, अपने दिल का कुछ काम करें, कहीं घूमने चले जाएं या बहुत सारी जो मुश्किलें हैं उनसे छुटकारा पा ले किसी तरह से, लेकिन हमारा दिमाग हमें जिम्मेदारियों की याद दिलाता है और बहुत सा ऐसा काम करने के लिए कहता है जिसे करने का हमारा दिल नहीं करता। तो आप अपने दिल की सुनते हैं या दिमाग की, और किस तरह से समझाते हैं अपने दिल को, ये सारी बातें आप हम तक भेज सकते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि क्या कभी दिल की बात मानकर आपने कोई ऐसा काम किया है जिसे करने के लिए आपके दिमाग ने साफ साफ मना किया हो। तो ये बातें हम तक पहुंचाइए कमेंट के जरिए। तब तक हम कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं। आपको बताना है कि किस फिल्म का ये गीत है और किसने इसे लिखा।

दुलारी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, लता मंगेशकर की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और हमारे सवाल का जवाब भी हमें मिल गया, फिल्म का नाम और गीतकार का नाम आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे एक साथी ने कहा कि मैंने भी एक समय अपने दिल की आवाज को अनसुना कर दिमाग की बात मान ली, उस वक्त लगा कि यही सही है, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं तो महसूस होता है कि कुछ सपने, कुछ खुशियां, कुछ अधूरी ख्वाहिशें वहीं पीछे छूट गईं। दिमाग ने मुझे सुरक्षित रास्ता तो दिखाया, लेकिन दिल जिस राह पर चलना चाहता था उसका अफसोस आज भी कहीं ना कहीं बाकी है। वहीं मारिक साथी ने कहा

सच्चे दिल की आवाज बिल्कुल सुनाई देती है अच्छी तरह से। इस इबारत की दिल छू लेने वाली लाइन हमारे एक साथी कह रहे हैं कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम। ये इस पूरी नज्म की सबसे प्यारी लाइन है। जब इंसान खुद से रूठ कर खुद से ही मान जाता है तो उससे बड़ा कोई सुकून नहीं होता। वहीं मालिक साथी ने कहा कि किसी ने मुझको अपना बना के मुस्कुराना सिखा दिया। ये गाना उन्होंने बताया और आगे लिखा कि किसी की जिंदगी में एक शख्स के आने से पूरी दुनिया बदल जाती है। गीत सच्चे प्यार की उस मासूमियत और शक्ति को दर्शाता है। वहीं मालिक साथी ने कहा कि भाई आज गुजरात में वट सावित्री का व्रत मनाया जा रहा है और 15 दिन के बाद ये मनाया जाता है, बाकी राज्यों की अपेक्षा ये कह रहे हैं। और हम बताना चाहेंगे कि महाराष्ट्र में भी ये त्योहार आज मनाया जा रहा है। सभी को शुभकामनाएं। हमारे और साथी बता रहे हैं कि इबारत की आखिरी लाइनें जैसे कि कभी जो रूठ जाओ तो मुझसे मान जाना तुम ने ये साफ कर दिया कि आज दिल धड़कने के साथ मान मनवल भी होगा। कभी ये दिन अपनी जिंदगी में आए बहुत बार रूठ जाने पर मनाना पड़ा, इसका आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ा, लेकिन रूठा कोई अपना था, पैसा खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता है। तो भाई क्या है ये पूरा किस्सा हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर आप लिखकर भेजना चाहें तो कमेंट में जरूर भेजें। हमारे एक साथी ने एक नज्म ही लिखी, ऐ दिल सुनो एक वादा कर लो, जो बोया है उसे फूलों सा सच कर लो, राहों में कांटे आए तो संभल कर चलो, हिम्मत से अपनी हर अंधेरी को रोशन कर लो, किसी की आंखों में जब तुम्हारा अक्स दिखे एक मीठी मुस्कान से उसे अपना कर लो, तुम्हारा भी तो है एक छोटा सा दिल, प्यार की खुशबू से उसे एक घर कर लो, झुंझलाकर अगर कभी दूर हो जाओ मायूस न करो फिर से मान जाओ। वहीं मालिक और साथी ने इबारत के अनुरूप कुछ गाने सुझाए हैं, देखते हैं उनकी और हमारी लिस्ट कितनी मिलती है, क्योंकि बहुत से हमारे साथियों ने लिस्ट में जो इबारत है उसमें से कुछ शब्द चुने हैं और कहा है कि कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं। हालांकि हमें कुछ गीत तो नजर आ गए हैं जो हमारी लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं। वहीं हमारे साथी कह रहे हैं कि भाई आज का ये कार्यक्रम तो दिल से होकर गुजरेगा तो कुछ दिल की बातें हो जाए, दिल से बहुत उम्मीदें होती हैं इंसान को, कभी किसी को अपना बनाएगा, कभी किसी का हो जाएगा, कभी किसी की कमजोरी बनेगा, कभी किसी की चाहत बनेगा, एक बेचारा दिल ही है, कभी टूटता है कभी संभलता है और इस दिल के आगे मजबूर है इंसान। आज भी कितने नादान है दिल समझता ही नहीं, बाद बरसों के उन्हें देखा है तो दुआएं मांग बैठा है। वहीं हमारे एक और साथी ने कहा कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुनना चाहिए, धड़कता हुआ दिल हो या रूठा हुआ या फिर हो टूटा हुआ, दिल तो आखिर दिल ही है। वाकई बहुत ही खूबसूरत बातें आप लिख भेज रहे हैं, तो हमें ये भी बताइए कि क्या आप जो ठानते हैं वो काम करके ही रहते हैं और किस तरह से करते हैं। साथ ही ये भी बता सकते हैं कि आपको सबसे मुश्किल काम कौन सा लगता है और आपका दिल कौन सा काम करने के लिए नहीं करता, ये सब बातें आप बताइए। तब तक हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसने लिखा है ये गीत।

धुनी चार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, किशोर कुमार की आवाज, गुलजार के बोल और हेमंत कुमार का संगीत। तो बिल्कुल सही नाम आपने बताया फिल्म का भी, और इसे गीत को लिखा था गुलजार ने, ये भी आपने बिल्कुल सही बताया। हमारे साथी बात कर रहे हैं और अपनी दिल की बातें बता रहे हैं। बहुत से साथियों ने तो कह दिया है कि भाई दिल के नहीं सुनते, दिमाग के सुनते हैं। और हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सुने मेरे दिल, एक बात सुनो तुम, सफर जो चुना तुमने उसे पूरा करके दिखाना तुम, कभी जो आए अंधेरे तो हौसला बढ़ाना तुम, बुने हैं जो हसरतों के ताने बाने उन्हें हकीकत बनाना तुम, किसी की चाहत में धड़को तो वफा निभाना तुम, कोई अपना सा लगे दुनिया में उसे गले लगाना तुम, कभी जो उदास हो जाओ तो मेरी बाहों में सिमट जाना तुम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि ए दिल तेरी हर बात को दिल से अपनाऊंगा मैं, जो ठान लिया है उसे मंजिल तक ले जाऊंगा मैं, राहें चाहे मुश्किल हो हिम्मत न हारूंगा मैं, सपनों की उस दुनिया को सच कर दिखाऊंगा मैं, मोहब्बत अगर सच्ची मिली मुस्कुरा कर निभाऊंगा मैं, दिल जिसे अपना कहे उसे दिल में बसाऊंगा मैं, और अगर कभी रूठ भी गया तो तेरी पुकार सुनने पर तेरी पुकार पर मुस्कुराते हुए लौट आऊंगा मैं। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपकी कविताएं निकल रही हैं आपकी कलम से और हम तक पहुंच रही हैं। और हमारे एक साथी कह रहे कि ओह एक बार फिर उबाऊ इबारत। तो देखिए इन्होंने ये कहा और कहा कि पढ़कर गीतों का कोई अनुमान भी नहीं लगा सकते, मतलब आज अपनी भागीदारी शून्य है। तो हम ये समझ चुके हैं कि इन्होंने दिल से नहीं बल्कि दिमाग से जवाब दिया है, क्योंकि हमारे बहुत से साथियों ने तो उस शब्द भी निकाल लिए इबारत से और ढेर सारे गीतों के नाम भी दे दिए हैं, जितने तो आज के इस कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हो सकते। तो हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विविध भारती से उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम को एक थीम पर लगाए गाना रहने चाहिए, क्योंकि एक थीम रहे या एक शब्द दे दिया जाए ऐसा वो कह रहे हैं, लेकिन हर प्रोग्राम की अपनी एक तरीका होता है, अपना एक माहौल होता है कह सकते हैं हम। तो इस कार्यक्रम को कुछ इसी तरह से चलाया जाता है जिसमें बहुत सारे शब्दों वाला एक इबारत आप तक पहुंचा दी जाती है और आपको उनमें से शब्द चुनने होते हैं जिनमें गीत आते हैं। तो कभी कभी कुछ अलग अलग चीजें भी होती रहनी चाहिए। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि प्रेमी दिलों को प्रोत्साहित करती ऊर्जा स्रोत रूपी इबारत में प्रेम रस उड़ेलती सलाह भी है और सांत्वना भी। प्रेम प्रसंगों में रूठने मनाने के सुंदर संक्षिप्त चित्रण व सुलभ समाधान वाकई आशिक और माशुकाओं को मार्गदर्शन प्रदान करेगा। प्रेम गाथा के प्रवाह के संगीत में सुरीला सफर के हमराही बनने का हम श्रोतागण बेकरार है, ऐसा इनका कहना है। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि बहुत सुंदर छोटी सी आज की इबारत, कह रही है कि दिल की आवाज सुनकर अपने सपनों को साकार करने का हौसला रखना, चुनौतियों का डटकर सामना करना और प्रेम व रिश्तों को स्नेह विश्वास तथा मुस्कान के साथ संजोकर जीवन को खूबसूरत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज गद्यांश काव्यात्मक रूप में है जो सीधे दिल को छू रहा है, दिल की बातें दिल ही जाने, या दिल धड़कने का सबब याद आया जो दिल को छूकर निकला, दिल की महफिल सजी तो रूह की रौनक भर गई, वो आए मेहमान इस दिल के तो दिल की रंगत और बढ़ गई। तो इस तरह से इन्होंने भी काव्यात्मक रूप में दिया है अपना जवाब। लेकिन आप हमें ये बताइए, क्या कभी जैसा कि इस गीत में हो रहा था कि दिल की वजह से कभी कभी पिटने की नौबत भी आ सकती है, तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ? अगर ऐसा हुआ तो वो किस्सा हमसे साझा कीजिए अगर आप करना चाहें तो। और तब तक हम आपको सुन

काला बाजार फिल्म का ये गीत आपने सुना आशा भोसले की आवाज, सचिन देव बर्मन का संगीत, शैलेंद्र के बोल। संगीतकार का नाम और फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिमाग से दुनिया जीती जाती है, दिल से दुनिया बनाई जाती है। मनुष्य वही बड़ा है भाई जिसका दिल उसकी आंखों में दिखाई दे। और हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा दिल सुनो मेरी पुकार, मेरे इन सपनों को अब करो तुम साकार। मन में है ठाना जो अपने लिए, आज उस संकल्प को पूरा कर सजाऊं जीवन का साज। दिल तुम सपनों की डगर हो और उम्मीदों का संसार, जहां रोज बनेंगे नए इतिहास। मेरी आंखों में जो पलते हैं कुछ अनकहे अरमान, उन्हीं सपनों को देना है अब मुझे अब एक नया मुकाम। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आज की भारत दिल को मजबूत बनने, सपने पूरे करने, विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत न हारने और जीवन में प्यार और सकारात्मकता बनाए रखने की प्रेरणा देती है। हमारे एक और साथी ने भारत के लिए एक कविता लिख भेजी कि दिल के धड़कनों में सपने बसाए हैं, मानो तुम ही मेरी हर दुआ में समाये हैं। राह चाहे कठिन हो साथ अपना बना रहे, प्यार के सिलसिले यूं ही सदा चलते रहें। किसी बात पर कभी रूठ न जाना, अगर रूठ भी जाओ तो जल्दी मानना। दिन रात तेरी यादों का उजाला रहे, हर पल मुस्कुराना ही हमारा हवाला रहे। सपनों की डोर कभी टूटने ना पाए, दिल से दिल का रिश्ता सदा महकता जाए। ये जीवन तभी सच में सुंदर कहलाए जब हर राह पर अपना साथ मुस्कुराए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप अपनी बातें हम तक भेज रहे हैं, लेकिन कुछ किस्से भी तो भेजिए।

ताकि कुछ आनंद आए। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि भाई किसी आप वो कह रहे कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए, बेशक जवाब देर से मिलेंगे लेकिन बेहतरीन मिलेंगे। और हमारे एक और साथी हैं वो कह रहे हैं कि आज टीम तो अच्छी है लेकिन हमने कभी दिल की नहीं, अपने आप पर कभी भरोसा नहीं किया, बस भाग्य के भरोसे चल रहे हैं। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, इस टोली के आदमी हैं हम। तो भाई इस टोली के लोग भी होने ही चाहिए क्योंकि सभी व्यक्ति एक ही तरह के होंगे तो कैसे होगा। हमारे एक और साथी ने लिखा कि दिल की सुनने से खुशी नहीं मिलती, दिमाग नहीं, उन्होंने लिखा है कि दिल के सुनने से खुशी मिलती है, दिमाग के सुनने से नहीं मिलती। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं कि दिल में सजी यादें तो बहुत सारी हैं, हम जिक्र नहीं करते मगर बातें तो बहुत सारी हैं। तो भाई चलिए इन सारी बातों को लेते हुए क्यों ना कार्यक्रम का अगला गीत सुनवा दें, और ये गीत तो हम अनुपमा फिल्म से सुनवा रहे हैं, बताइए किसने लिखा है।

0: अनुपमा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, कैफी आजमी के बोल, हेमंत कुमार का संगीत। तो गीतकार का नाम हमने आपसे पूछा था, सही जवाब हमें आपने दिया। और सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर विविध भारती पर। हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिमाग सदैव दिल के ऊपर होता है, दिल तो बहुत कुछ चाहेगा मगर दिमाग इन द्वंद्वों से सही राह दिखाता है, अतः दिमाग की ही मैं सुनता हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपने ये सोचा। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि रूठना मनाना तो जिंदगी का हिस्सा है, जहाँ अपना रिश्ता होता है वहाँ ये किस्सा है, वहीं ये किस्सा है। नाराजगी पल भर की हो सकती है लेकिन अपनापन उम्र भर का होना चाहिए, क्योंकि जो दिल से अपने होते हैं वो रूठ कर भी दूर नहीं जाते, बस मनाए जाने का इंतजार करते हैं। तो बहुत ही सही बात आपने कही कि वाकई बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रूठ जाते हैं और वो सोचते हैं कि उन्हें मनाया जाए, और एक बार भी मनाने की कोशिश की जाए तो तुरंत मान जाते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप किसी से रूठे हैं और अब तक माने ना हो, उनके मनाए जाने का इंतजार कर रहे हो, और कौन सी ऐसी बात है जिस पर आप रूठ जाते हैं आसानी से, और किसी को मनाना हो तो क्या करते हैं आप? ये बातें हम तक भेजिए। तब तक हमारे और साथी कह रहे हैं कि मैं हमेशा दिल की बात सुनती हूँ। वहीं हमारी एक और साथी कह रही है कि कभी कभी दिल उस बात को मनवा लेता है और हम मान भी लेते हैं, बाद में दिल की उस नादानी पर बेहद अफसोस होता है उन्हें। वहीं हमारे एक और साथी है, वो कह रहे हैं कि उनका एक गीत शामिल हो गया उनकी लिस्ट में, जो गाना था वो शामिल हो गया। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे गीत शामिल होते रहें तो कितना ही अच्छा लगे। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि हमारा जो दिल कहता है वही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी दिमाग कहता है और वो काम करने से नुकसान हो सकता है, ऐसा कहते हैं, तो हम वो काम नहीं करते। यानी दिल और दिमाग के बीच में बड़ा ही अच्छा सामंजस्य आपने बिठा रखा है, तभी तो जो करना चाहते हैं वो करते हैं, कभी दिल के सुनते हैं कभी दिमाग के सुनते हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में दिल की बातें होने वाली हैं, कैसी भी परिस्थिति हो हमें अपने दिल की ही सुननी चाहिए, पर कैसे? दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है, और इन सब की कश्मकश में कभी कभी हम उलझ के रह जाते हैं। चले दिल की दुनिया को बर्बाद करके भूले से मोहब्बत कर, इस तरह से उन्होंने गानों के लाइंस बताई हैं, अपने पसंदीदा गानों के बारे में बताया है। देखते हैं उनके गीत आज के इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं या नहीं। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि कभी कभी इंसान दिल और दिमाग के बीच इस तरह से उलझ जाता है कि क्या करें और क्या ना करें, लेकिन इंसान को किसी को नुकसान पहुंचाकर कोई काम नहीं करना चाहिए, उस समय दिल की आवाज ही सुननी चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही, और हमारा दिल कह रहा है कि क्यों ना आपको एक संदेश सुना दें।
1: सुनिए
2: कहिए,
3: सुनिए एक खुशखबरी,
2: कहिए ना,
3: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
4: शुक्रिया, शुक्रिया।
3: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
0: तो अपने दिल की सुनिए और कल ही लगाइए फोन हेलो सहेली में। लेकिन फिलहाल आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुरीला सफर, तो आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। इस गीत को हमने बहुत से लोगों की लिस्ट में देखा और हमारी लिस्ट में भी पहले से शामिल था, तो हमें ये बताइए कि कौन सी फिल्म का ये गीत है और इसमें आवाज किसकी है।

0: बॉम्बे ये है बॉम्बे मेरी जान।
1: ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा हट के जरा बच के ये है बॉम्बे मेरी जान।
0: ऐ दिल

जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव होते रहते हैं, धैर्य की बहुत जरूरत होती है। वैसे भी पुरानी कहावत है कि समय से पहले और जरूरत से ज्यादा नहीं मिलता किसी को भी, किस्मत या भाग्य का भी बहुत बड़ा रोल होता है। होता तो है। हमारे एक और साथी कह रहे कि दिल कब किसी पे आ जाए पता नहीं, कब किससे रूठ जाए पता नहीं, दिल के करीब किसी को आने मत देना, क्या होगा पता नहीं, दिल को रहने दो पंछी की तरह मस्त, खुले आसमान में उड़ने के लिए, दिल को लगी चोट कभी भरती नहीं, संभल जाओ वरना पछताओगे। और हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि उन्हें अपने पेड़ पौधों के साथ रहना और अपनी छोटी सी वाटिका में काम करना बहुत अच्छा लगता है, यानी कि उनका दिल खुश होता है इस काम से। और हमारा दिल खुश हो सकता है जब हम सुनवा दें कार्यक्रम का अगला गीत। हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।

सवाल का सही जवाब हमने किसकी आवाज में गीत सुन रही है पूछा था आपसे। और ये हमारे साथी लिख रहे हैं कि दिल तो पागल है, बहुत ऊंची उड़ान भरना चाहता है पर दिमाग उसे कंट्रोल में रखता है और इसी तरह से काम चलता है, ऐसा उनका कहना है। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल के बारे में उन्होंने कहा कि दिल की सुनिए लेकिन फैसला दिमाग से कीजिए, क्योंकि दिल मंजिल चुनता है और दिमाग वहां तक पहुंचने का रास्ता बताता है, सही रास्ता चुनता है। हमारी एक और साथी कह रही है कि मैं ना तो रूठती हूँ और किसी को मनाना भी नहीं आता। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात हो गई, ना इस चीज से मतलब ना उस चीज से मतलब, अपना जीवन आसानी से जीजिए। हमारे एक और साथी कह रही है कि आज की इबारत पर दिल की मानने का किस्सा बताना चाहूंगा। बात 2023 की है, छोटे बेटे ने MBBS का टफेस्ट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त की। काउंसलिंग सेकंड राउंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उन्होंने सीट हो गई थी, फुल हो गई थी। अन्य मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था, घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के टीचर्स भी राजी थे। सिर्फ मैंने अपने दिल की मानी और अगले काउंसलिंग राउंड तक इंतजार किया और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया और बेटा MBBS यही कर रहा है, तो जूठाना वो सच हो गया। बिल्कुल सही बात आपने कही। और जब कुछ ऐसा होता है तो हमारा दिल भी मुस्कुरा उठता है, हम कह सकते हैं। और आपके और हमारे दिल के लिए ये गीत सुनवाते हैं, बताइए किस फिल्म का गीत, किसकी आवाज।

जिंदगी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे मन्ना डे की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि बचपन में पापा से बहुत रूठते थे और वो मनाते थे, आज पापा उम्र के उस दौर में है वो हमसे रूठ जाते हैं और हम भी उन्हें मना लेते हैं। बहुत ही प्यारी सी बात आपने ये लिख भेजी। वहीं हमारे एक साथी कह रहे हैं कि दिल है कि मानता ही नहीं, कभी कभी मेरा दिल मेरी सुनता ही नहीं, उसे जो चाहिए वही करना होता है, मैं भी मजबूर हो जाता हूँ अपने दिल के हाथों। वहीं हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि क्या बातें हैं, इन्हें तो कुछ पता नहीं,

जैसे ही सुना तो रूठने की बातें ही सुनी। वैसे रूठने तो हम भी हैं, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर नहीं रह सकते। पर एक बात तो है, हम रूठे और कोई प्यार से मनाए उसका भी अलग एहसास होता है। कभी बच्चे रूठ जाते हैं तो उनकी पसंद का कुछ बनाकर उन्हें मना लेते हैं, और कभी डांट कर और कभी प्यार से। वहीं हमारे एक और साथी का कहना है कि दिल की हालत पर तो कई गीत, गजल और कहानियां लिखी गई हैं। निर्मल वर्मा का एक उपन्यास ये दिन भी पात्र के दिली हालत और मनोवेग को शानदार चित्रण पेश करता है। मैं एक अध्यापक हूं, मैं बच्चों को दिल लगाकर पढ़ाता हूं। ये भी बहुत अच्छी बात आपने लिखी। हमारे और साथी कहते हैं कि हम दिल से सुनते ही कार्यक्रम गीतों की लिस्ट भी भेजते हैं। दिमाग से ज्यादा दिल से गीत चुनते हैं, क्योंकि दिमाग कहेगा कि तुम्हारी लिस्ट से गीत नहीं मैच हुए तो, पर दिल कहता है कि सब अपने ही तो हैं, कार्यक्रम भी अपना, उद्घोषक भी अपना। इसलिए जहां भावनाएं जुड़ी हों वहां दिल की चलती है, और दिमाग तो होता ही व्यवहारिक है। तो ये जब आपने कहा तो हमें मन में ये सवाल हुआ कि आपके लिस्ट में से कितने गीत शामिल हुए। आप सभी ने बताया ही नहीं कौन कौन से गीत शामिल हो गए आपके लिस्ट में से, ये तो बताइए। हमारे और साथी कह रहे हैं कि दिल किसी से लगाना यानी दिल को कमजोर करना। हमारे और साथी कहते हैं कि दिल वो अनमोल एहसास है जहां प्रेम जन्म लेता है, विश्वास पनपता है, रिश्तों की खुशबू बसती है। वो केवल धड़कनों का घर नहीं बल्कि यादों, सपनों और भावनाओं का सबसे सुंदर संसार है। जब दिल में अपनापन, करुणा और सच्चाई बसती है तो जीवन का हर रास्ता रोशन हो उठता है। एक साफ दिल नफरत को नहीं बल्कि प्रेम और क्षमा को जगह देता है। यही दिल हमें दूसरों की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढना सिखाता है, और कठिन समय में भी उम्मीद की लौ जलाए रखता है। इसलिए जीवन की सबसे बड़ी दौलत धन नहीं बल्कि एक सुंदर, संवेदनशील और प्रेम से भरा दिल भी है, जो हर धड़कन के साथ इंसानियत का गीत गुनगुनाता रहता है। तो चलिए एक गीत की ओर आगे बढ़ते हैं। बताइए किसने लिखा ये गीत।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कहने की जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए न केवल दिमाग की।

जाली नोट फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। जाजा मेहंदी अली खां के बोल ओपी नैहर का संगीत, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजें। हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जिंदगी के सबसे बेहतरीन फैसले तब जन्म लेते हैं जब दिल की सच्चाई और दिमाग की समझ एक दूसरे का साथ निभाते हैं। दिल हमें सपने देखने की हिम्मत देता है और दिमाग उन सपनों को हकीकत में बदलने का सही रास्ता दिखाता है। इसलिए न सिर्फ दिल की सुनिए, न केवल दिमाग की, दोनों का संतुलन ही जिंदगी की सबसे बड़ी समझ है। वहीं हमारे एक साथी ने कहा कि जब कोई अपना बिना सोचे समझे बहुत ज्यादा आलोचनाएं कर देता है तब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक और साथी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक शख्स से ही रूठती हूँ, वो भी तब जब कहीं जाने की प्लानिंग करके देर से घर आते हैं, फिर 10 बार ना नुकुर करके फिर तैयार हो ही जाती हूँ। तो भाई इन रूठने मनाने पर एक गीत आपको सुनवा देते हैं, कार्यक्रम का अंतिम गीत सुनिए और हमें बताइए कि किस फिल्म का ये गीत है।

एडमिशन के दिन आते हैं तो माता पिता का बच्चों पर दबाव बढ़ जाता है। अक्सर माता पिता ये चाहते हैं कि जो विषय वो तय करें बच्चे वही विषय चुनें और आगे की पढ़ाई करें। एक छात्र के जीवन में सबसे मुश्किल समय तब होता है जब उसे अपने आगे के रास्ते का चुनाव करना पड़ता है, जब उसे अपने लिए खास विषयों का चुनाव करके पढ़ाई की दिशा निर्धारित करनी पड़ती है। और तब अगर माँ बाप के दबाव में फैसला किया तो बच्चों की प्रतिभा इस दबाव और अनचाहे विषय के तले घुटती चली जाती है। हम अपने बच्चों को अपनी मर्जी से अपने करियर के चुनाव के अवसर आखिर कब देंगे?

हर बच्चे में एक नैसर्गिक प्रतिभा होती है, किसी न किसी विषय में उसकी दिलचस्पी होती है। हो सकता है कोई बच्चा बहुत अच्छा कलाकार हो, बहुत अच्छा अभिनय करता हो, कोई बहुत अच्छी पेंटिंग करता हो, कोई बहुत अच्छा लिखता हो, कोई तकनीक में बहुत अच्छा हो। जाहिर है कि हर बच्चे के भीतर छिपे प्रतिभा के इन बीजों को सही तरीके से पोषित करना अनिवार्य होता है, लेकिन हमारे यहाँ जीवन में ज्यादा पैसे कमाने और ज्यादा प्रभाव और रसूख कमाने पर जोर दिया जाता है। एक जमाना था जब डॉक्टर इंजीनियर के सिवा तीसरा करियर नजर ही नहीं आता था। आज भी माँ बाप या परिवार के बुजुर्गों का बच्चों पर दबाव रहता है कि वो कोई ऐसा करियर चुने जिसमें ज्यादा पैसे कमाने के अवसर हों और जिंदगी ज्यादा सुख सुविधाओं में बीते। ये नहीं देखा जाता है कि बच्चे का मन और उसके सपनों की उड़ान क्या है। अगर बच्चों को आजादी दी जाए अपना करियर खुद चुनने की, तो हो सकता है कि वो आगे चलकर बहुत ज्यादा तरक्की करें।

बहुत ज्यादा दबावों में प्रतिभा का विकास नहीं होता है, बहुत ज्यादा उम्मीदों का बोझ होता है, तब भी कहीं न कहीं बच्चों की प्रतिभा और उनके मन पर असर पड़ता है। ये ठीक है कि माँ बाप बच्चों की भलाई चाहते हैं, वो चाहते हैं कि एक सुविधाजनक जिंदगी बच्चे जिएं, जिसमें किसी तरह का कोई अभाव न हो, कोई परेशानियां न हो, लेकिन

बच्चों को ये आजादी तो होनी ही चाहिए कि वो अपने मन से तय करें कि वो अपनी जिंदगी की राहों को किस दिशा में ले जाना पसंद करते हैं। बस माँ बाप को चाहिए कि वो इस दिशा को निर्धारित करने में बच्चों का थोड़ा बहुत मार्गदर्शन कर दें और उन्हें एक सही नजरिया प्रदान करें, बच्चों को सही हालात दें आगे बढ़ने के, और फिर देखिए कि वो किस तरह से अपने सपनों की उड़ान भरते हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्वकप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है। इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की। बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही। इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई। साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया। यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल

0: रहे सहयोग की समीक्षा की। साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मॉनसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा दसवीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा सातवीं, आठवीं और नवीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा दसवीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शिलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जन विश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के एम नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से एनसीपी नेता राजेंद्र हीरा लाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से एआईएडीएमके विधायक एमआर विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले एआईएडीएमके विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में

0: संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी बीएलओ कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
1: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें बीएलओज एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं, वो सभी पे बीएलओज अपॉइंटेड हैं, तो सभी बीएलओज को उनके इनुमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
0: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्र सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
2: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं, ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि कानूनी मामलों, मौत की सजा और आवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध के बावजूद वे इस वर्ष के अंत तक बांग्लादेश लौटेंगी। एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में शेख हसीना ने अपने खिलाफ जारी मामलों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार न्यायपालिका के बल पर आवामी लीग को देश की राजनीति से बाहर करने का प्रयास कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
3: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्थान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नव जौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्ट्राक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर

परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
1: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
1: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में CIET NCERT के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
1: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
1: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
1: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया
2: जी।
1: अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
2: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
1: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपका धन्यवाद। अगला

0: मेरे समय मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षाप्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निगहत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अबासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास। धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा पहला कार्यक्रम है बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधना?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा।
2: अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता, रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
2: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
2: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े बकत के लिए, कुछ समझता तो है ना। हाँ
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। न लकड़ी की कमी, न फल गंध की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात, तो बुधनी ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूँ सारे गहना गरिया मात।
2: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से, कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो। हाँ,
0: अरे अरे रोने लगी। अरे सुन तो, अच्छा अच्छा सर, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़।

0: पुरखों की भी यही रीत है, मगर तू कल मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
1: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं है? कोई बहाना बना देंगे। ठीक,
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुप्पा।
2: क्या भूल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
2: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी। हाँ।
0: नहीं नहीं नहीं,
2: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। हाँ? अपने सामने कटवाऊंगी पेड़। अब तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
1: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं।
2: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ। अच्छा।

0: चुप्पा चुप्पा, क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे, कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे? अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा, मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया, काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुपा चुपा,
1: सजा सजा बेटे सजा, डर मत, वो तो सपना था। सजा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ है। सोचा बेटा सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा है ना, चुपा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सोचा, अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ के हाथों से काटोगे।
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी
1: चलो
2: चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: गहना गरिया लूंगी मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा वगैरह होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ

0: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
0: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी। तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है। ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
0: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर। तो
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे। अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
0: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, चलो। आगे चलकर देखते हैं। अब चलो
0: देखो, ये पेड़
1: देख लो।
0: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़। और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, चलो। इधर से निकल कर आओ।
0: अच्छा
1: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
0: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा दो
0: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
0: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और तार।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़ी मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
0: क्यों? देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
0: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल,
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है। बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
0: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा। चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो ढूंढो ना।
2: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
2: और क्या।
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
2: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
0: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
1: अरे चुप।
2: क्या हुआ?
1: अरे चुप्पा, पेड़ अब नहीं कटेगा, तो यही बात थी ना।

0: तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे है।
1: समझ गई है।
2: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
1: रहने दे,
0: तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझे को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
1: होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
0: फिर कैसे?
1: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
0: चल। बता।
1: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली, फल, सब्जी, महुआ, कटहल बेचेंगे, हाँ, पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी? तब भी झगड़ेगी क्या?
2: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
1: बोलना।
0: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील

0: रहना चाहिए।
1: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के

0: पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी, फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
1: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
0: किसी ने कहा,
2: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
0: किसी ने कहा,
3: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
0: किसी ने कहा,
4: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
0: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
0: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
1: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
5: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम के तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार। उमंग।

0: यहाँ भी दिल है यू हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यू हमसे न कतराओ यारो सूरत हमारी।
1: इसके साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सखी सहेली, बस कुछ ही पलों के बाद।

0: सहेली सहेली सुनने वाली सभी सखियों को और सखा भाइयों को मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हमारे साथ है नेहा शर्मा। तो नेहा, तुम्हें भी बहुत प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है कि हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना।
1: मंजरी जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और सभी सुनने वालों को भी नेहा शर्मा का नमस्कार। बहुत दिनों के बाद तो मिल ही रहे, जैसे बारिश बहुत दिनों के बाद हमसे मिल रही है।
0: बिल्कुल। और देखो, कहीं कहीं पे देखो बारिश अभी भी नहीं हुई है, तो वो लोग गर्मी से परेशान है। तो बस लगता है कि यही प्रार्थना रहती है कि सब जगह पे बारिश हो, जिससे सबको आराम मिले
1: जी,
0: है ना। और जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो भी पानी उन्हें मिले, वो स्वस्थ रहे, खुशहाल हाँ। रहे, हरे भरे रहे। और आज तुमने देखा नेहा कि सुबह सुबह हमारी कितनी सारी, हमने देखा कितनी सारी लेडीज जो थी वो एकदम तैयार होके जा रही थी और हाथ में पूजा की थाल भी थी
1: जी।
0: तो तुम समझ गई होगी कि आज हाँ। क्या विशेष खास दिन था उन लोग के लिए।
1: बिल्कुल, आज वट सावित्री का व्रत है जिसमें बड़ के पेड़ की पूजा की जाती है, बरगद के वृक्ष की। और कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ सकते हैं हम इस तरह, जैसे बरगद के जो पेड़ हैं वो सालों साल रहते हैं, उनकी जड़ें इतनी ज्यादा धरती पे के साथ समाई होती हैं कि सालों साल रहते हैं। तो एक तरह से प्रकृति को पूजकर अपने पति की लंबी आयु के लिए ये पूजा की जाती है आमतौर पर। और गुजरात में भी ये पूजा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये पूजा पूर्णिमा के दिन में की जाती है, बाकी जगह अमावस्या मतलब 15 दिन पहले हो चुकी है।
0: हाँ, उस साइड में अमावस्या में होती है, यहाँ पर आज के दिन होती है। तो पेड़ों का जो महत्व है वो तो देखो, बरगद की जो जटाएं होती हैं उनसे भी कई सारे वृक्ष उनके निकलते हैं, पनपते हैं पौधों में, और ऑक्सीजन देता है ये पेड़। तो पहले के कहा जाता कि घर से निकल के औरतें जाएंगी तो वहां पूजा करेंगी, तो जब हम किसी पेड़ की पूजा करते तो उसको काटा नहीं जाता है, तो इस तरह से पेड़ की रक्षा भी होती है। तो कहना चाहिए कि आज के दिन हम अपनी सभी बहनों को इस पर्व की बहुत बहुत बधाइयां देते हैं, है ना नहीं?
1: जी बिल्कुल, बधाइयां हमारी ओर से। और क्या क्या विषय हम लेकर आए हैं आज, ये भी बता दें।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो प्रादेशिक व्यंजन में जो हम आज लेके आए हैं, प्रयाग उत्तर प्रदेश की दाल की कचौड़ी और आलू की रसेदार पतली पतली सब्जी जो होती है वो, और समोसा छोले चाट।
1: देखिए, तो तुरंत बधाई देने के बाद, व्रत की बधाई देने के बाद जब व्यंजन की बात कर दी गई है तो सखियां थोड़ा हमें माफ कर देंगी। और इसके साथ साथ विषय है विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझें, इस विषय पर भी हम बात करने वाले हैं। और एक गंभीर मुद्दे पर भी बात करने वाले हैं, वो है व्यसन, जो कि एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है।
0: और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम सुनेंगे एक आज की कसर, ये कहानी सुनेंगे। लेकिन जैसे कि मौसम ने करवट ली है, यहाँ पर ले ली है और जहां पे अभी नहीं ली वहां पर भी लेगी, तो

0: तो मंजरी जी, ये बात तो हमने कर ली कि बरसे फुहार हर जगह, और अब क्या किया जाए?
1: अब हम सबको कथा सुधा में कहानी जो है हमारी वो सुनाएंगे, एक आज की कसर
0: जी।
1: तो लीजिए सब लोग कहानी सुनिए।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
0: कथा सुधा में आज सुनिए मुंशी प्रेमचंद की कहानी एक आज की कसर।
3: सारे नगर में महाशय यशोदा नंद का बखान हो रहा था। नगर ही में नहीं, समस्त प्रांत में उनकी कीर्ति की जाती थी। समाचार पत्रों में टिप्पणियां हो रही थी, मित्रों से प्रशंसा पूर्ण पत्रों का तांता लगा हुआ था। समाज सेवा इसे कहते हैं, उन्नत विचार के लोग ऐसा ही करते हैं। महाशय जी ने शिक्षित समुदाय का मुख उज्जवल कर दिया। अब कौन ये कहने का साहस कर सकता है कि हमारे नेता केवल बात के धनी है, काम के धनी नहीं है। महाशय जी चाहते तो अपने पुत्र के लिए उन्हें कम से कम 20,000 रुपए दहेज में मिलते, उस पर खुशामद घाते में। मगर लाला साहब ने सिद्धांत के सामने धन की रत्ती बराबर परवाह न की और अपने पुत्र का विवाह बिना एक पाई दहेज लिए स्वीकार किया। वाह वाह, हिम्मत हो तो ऐसी हो, सिद्धांत प्रेम हो तो ऐसा हो, आदर्श पालन हो तो ऐसा हो। वाह रे सच्चे वीर, अपनी माता के सच्चे सपूत, तूने वो कर दिखाया जो कभी किसी ने न किया था। आज हम बड़े गर्व से तेरे सामने मस्तक नवाते हैं। महाशय यशोदा नंद के दो पुत्र थे। बड़ा लड़का पढ़ लिखकर फाजिल हो चुका था, उसी का विवाह तय हो रहा था और आप सब समझ चुके कि बिना कुछ दहेज लिए। आज तिलक था, शाहजहांपुर से स्वामी दयाल तिलक लेकर आने वाले थे। शहर के गणमान्य सज्जनों को निमंत्रण दे दिए गए थे, लोग जमा हो गए थे, महफिल सजी हुई थी। एक प्रवीण सितारिया अपना कौशल दिखाकर लोगों को मुग्ध कर रहा था। दावत का सामान भी तैयार था। मित्रगण यशोदा नंद को बधाइयां दे रहे थे।
4: वाह भाई यशोदा नंद, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: अरे जनाब, ये कहिए कि झंडे गाड़ दिए?
4: हाँ,
5: अब तक जिसे देखा मंच पर व्याख्यान झाड़ते ही देखा। जब काम करने का अवसर आता था तो लोग दुम लगा लेते थे।
4: हाँ, और कैसे कैसे बहाने गाड़े जाते हैं। साहब, हमें तो दहेज से सख्त नफरत है, ये मेरे सिद्धांत के विरुद्ध है, पर क्या करूं, बच्चे की माँ नहीं मानती। कोई अपने बाप पर फेंकता है तो कोई और किसी खर्राट पर।
5: अजी, कितने तो ऐसे बेहया हैं जो साफ साफ कह देते हैं कि हमने लड़के को शिक्षा दीक्षा में जितना खर्च किया है वह हमें मिलना चाहिए, मानो उन्होंने ये रुपए किसी बैंक में जमा किए थे।
4: खूब समझ रहा हूँ, आप लोग मुझ पर छींटे उड़ा रहे हैं। इसमें लड़के वालों का ही सारा दोष है या लड़की वालों का भी कुछ है?
5: अरे भाई साहब, लड़की वालों का क्या दोष है सिवाय इसके कि वह लड़की का बाप है।
4: सारा दोष ईश्वर का, जिसने लड़कियां पैदा की। क्यों?
5: मैं ये नहीं कहता न सारा दोष

0: लड़की वालों का है, न सारा दोष लड़कों वालों का, दोनों ही दोषी हैं। अगर लड़की वाला कुछ न दे तो उसे यह शिकायत करने का कोई अधिकार नहीं कि डाल क्यों नहीं लाए, सुंदर जोड़े क्यों नहीं लाए, बाजे गाजे पर धूमधाम के साथ क्यों नहीं आए, बताइए।
1: हाँ, आपका ये प्रश्न गौर करने लायक है। मेरी समझ में तो ऐसी दशा में लड़के के पिता से ये शिकायत नहीं होनी चाहिए।
0: तो यूं कहिए कि दहेज की प्रथा के साथ ही डाल, गहने और जोड़ों की प्रथा भी त्याज्य है। केवल दहेज को मिटाने का प्रयत्न करना व्यर्थ है।
1: हाँ हाँ, सही है।
2: ये भी लेम एक्सक्यूज है, मैंने दहेज नहीं लिया है। लेकिन क्या डाल गहने न ले जाऊंगा?
1: महाशय, आपकी बात निराली है। आप अपनी गिनती हम दुनिया वालों के साथ क्यों करते हैं? आपका स्थान तो देवताओं के साथ है।
3: 20,000 की रकम छोड़ दी, क्या बात है।
2: हाँ, मेरा तो ये निश्चय है कि हमें सदैव प्रिंसिपल पर स्थिर रहना चाहिए। प्रिंसिपल के सामने मनी की कोई वैल्यू नहीं है। दहेज की कुप्रथा पर मैंने खुद कोई व्याख्यान नहीं दिया, शायद कोई नोट तक भी नहीं लिखा। हाँ, कॉन्फ्रेंस में इस प्रस्ताव को सेकंड कर चुका हूँ। मैं उसे तोड़ना चाहूँ भी तो आत्मा तोड़ने न देगी। मैं सत्य कहता हूँ, ये रुपये लूँ तो मुझे इतनी मानसिक वेदना होगी कि शायद मैं इस आघात से बच भी न सकूं।
1: अब के कॉन्फ्रेंस आपको सभापति न बनाए तो उसका घोर अन्याय है।
2: हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी कर दी, उसका रिकॉग्निशन हो या ना हो मुझे इसकी परवाह नहीं।
4: इतने में खबर हुई कि महाशय स्वामी दयाल आ पहुंचे। लोग उनका अभिवादन करने के लिए तैयार हुए। उन्हें मसनद पर ला बिठाया और तिलक का संस्कार आरंभ हो गया। स्वामी दयाल ने एक ढाक के पत्तल पर नारियल, सुपारी, चावल, पान आदि वस्तुएं वर के सामने रखी। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े, हवन हुआ और वर के माथे पर तिलक लगा दिया गया। तुरंत घर की स्त्रियों ने मंगलाचरण गाना शुरू किया। यहाँ महफिल में महाशय यशोदा नंद ने एक चौकी पर खड़े होकर दहेज की कुप्रथा पर व्याख्यान देना शुरू किया। व्याख्यान पहले से लिखकर तैयार कर लिया गया था। उन्होंने दहेज की ऐतिहासिक व्याख्या की।
2: पूर्व काल में दहेज का नाम भी न था महाशयों, कोई जानता ही न था कि दहेज या ठहरोनी किस चिड़िया का नाम है। सत्य मानिए, कोई जानता ही न था कि ठहरोनी क्या चीज है, पशु या पक्षी, आसमान में या जमीन में, खाने में या पीने में। बादशाही जमाने में इस प्रथा की बुनियाद पड़ी। हमारे युवक सेनाओं में सम्मिलित होने लगे। ये वीर लोग थे, सेनाओं में जाना गर्व समझते थे। माताएं अपने दुलारों को अपने हाथ से शस्त्रों से सजाकर रण क्षेत्र भेजती थीं। इस भांति युवकों की संख्या कम होने लगी और लड़कों का मोल तोल शुरू हुआ। आज ये नौबत आ गई है कि मेरी इस तुच्छ महातुच्छ सेवा पर पत्रों में टिप्पणियां हो रही हैं, मानो मैंने कोई असाधारण काम किया है। मैं कहता हूं, अगर आप संसार में जीवित रहना चाहते हो तो इस प्रथा का तुरंत अंत कीजिए।
0: मेरे मन में एक शंका है, क्या इसका अंत किए बिना हम सब मर जाएंगे?
2: अगर ऐसा होता तो क्या पूछना था, लोगों को दंड मिल जाता। और वास्तव में ऐसा होना चाहिए। ये ईश्वर का अत्याचार है कि ऐसे लोभी, धन पर गिरने वाले, बुर्दा फरोश, अपनी संतान का विक्रय करने वाले नराधम जीवित हैं और समाज उनका तिरस्कार नहीं करता, मगर ये सब बुर्द फरोश हैं।
4: व्याख्यान बहुत लंबा और हास्य भरा हुआ था। लोगों ने खूब वाह वाह की। अपना वक्तव्य समाप्त करने के बाद उन्होंने अपने लड़के परमानंद को मंच पर खड़ा किया।

0: उसे उन्होंने एक छोटा सा व्याख्यान लिखकर दे रखा था। मुस्कुराता हुआ मंच पर आया और एक जेब से कागज निकालकर बड़े गर्व के साथ उच्च स्वर में पढ़ने लगा।
1: प्रिय बंधुवर नमस्कार, आपके पत्र से विदित होता है कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं है। मैं ईश्वर को साक्षी करके धन आपकी सेवा में इतनी गुप्त रीति से पहुंचेगा कि किसी को लेश मात्र भी संदेह न होगा। हाँ, केवल एक जिज्ञासा करने की धृष्टता करता हूँ। इस व्यापार को गुप्त रखने से आपको जो सम्मान और प्रतिष्ठा लाभ होगा और मेरे निकटवर्ती में मेरी जो निंदा की जाएगी उसके उपलक्ष्य में मेरे साथ क्या रियायत होगी। मेरा विनित अनुरोध है कि 25 में से 5 निकाल कर मेरे साथ न्याय किया जाए।
0: महाशय यशोदा नंद घर में मेहमानों के लिए भोजन परसने का आदेश करने गए थे। निकले तो ये वाक्य उनके कानों में पड़ा, चेहरा फक हो गया। झपट कर लड़के के पास गए, कागज उसके हाथ से छीन लिया और बोले,
2: नालायक, ये क्या पढ़ रहा है? ये तो किसी वकील का खत है जो उसने अपने मुकदमे के बारे में लिखा था। ये तू कहां से उठा लाया? शैतान, जा वो कागज ला जो मैंने तुझे लिख कर दिया था।
3: पढ़ने दीजिए, इस तहरीर में जो लुत्फ है वो किसी दूसरी तकरीर में ना होगा।
4: सही बात है, जादू वो जो सिर चढ़ के बोले।
3: भाई अब जलसा बर्खास्त कीजिए, मैं तो चला।
4: वाह वाह वाह वाह, यहाँ भी चलते हुए।
2: अरे बैठिए बैठिए, पत्तल लगाए जा रहे हैं। अरे बैठिए ना आप लोग, बैठिए बैठिए।
4: बेटा परमानंद, जरा यहाँ तो आना। सुनो, तुमने यह कागज कहाँ पाया?
1: बाबूजी ही तो लिखकर अपने मेज के अंदर रख गए थे, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ना। अब बेकार मुझसे खफा हो रहे हैं।
2: वो ये कागज था, मैंने तो मेज के ऊपर ही रख दिया था। तूने ड्रॉर में से क्यों निकाला इस कागज को?
1: मुझे मेज पर नहीं मिला।
2: तो मुझसे क्यों नहीं कहा? ड्रॉर क्यों खोला? देखो आज मैं तुम्हारी कैसे खबर लेता हूँ, तुम भी याद करोगे।
3: अरे भाई, ये और क्या है, इसी को तो लीडरी कहते हैं कि अपना उल्लू सीधा करो और नेक नाम भी बनो।
4: शर्म आनी चाहिए, यह त्याग से मिलता है, समझे? धोखाधड़ी से नहीं।
3: मिल तो गया था पर बस एक आंच की कसर रह गई।
4: सच बताऊं, ईश्वर पाखंडियों को यूं ही दंड देता है।
0: ये कहते हुए लोग उठ खड़े हुए। यशोदा नंद समझ गए कि भंडा फूट गया, अब रंग न जमेगा। बार बार परमानंद को कुपित नेत्रों से देखते और डंडा तौलकर रह जाते थे। इस शैतान ने आज जीती जिताई बाजी जो खो दी थी। मुंह में कालिख लग गई, सिर नीचा हो गया, गोली मार देने का काम किया है। उधर रास्ते में मित्र वर्ग यूं टिप्पणियां करते जा रहे थे,
3: ईश्वर ने मुंह में कैसी काली मां लगाई कि हयादार होगा तो अब सूरत ना दिखाएगा।
5: ऐसे ऐसे धनी मानी विद्वान लोग ऐसे पतित हो सकते हैं, मुझे यही आश्चर्य है। लेना है तो खुले खजाने लो, कौन तुम्हारा हाथ पकड़ता है? ये क्या कि माल चुपके चुपके उड़ाओ और यश भी कमाओ?
4: मक्कार का मुंह काला।
3: हाँ, यशोदानंद पर बड़ी दया आ रही है, बेचारे ने इतनी धूर्तता की, उस पर भी कलाई खुल ही गई, बस एक आंच की कसर रह गई।
6: एक आज की कसर, मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी आपने सुनी कथा सुधा में। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकार रेणु चतुर्वेदी, जी श्याम, जयंत पात्रिकर, यूनुस खान और दीपक केसावलेकर। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: तो मंजरी जी, क्या संदेश प्रद कहानी थी?
1: बहुत अच्छी लग रही थी सुनकर, बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमारे सभी साथियों को भी बहुत पसंद आई होगी, है ना? तो अब सुनते हैं गीत, उसके बाद हम अपने विषयों पर चर्चा करेंगे
0: जी।

0: तो मंजरी जी, सब गीत सुन लिए, कहानी सुन ली, लेकिन बातें कब होंगी ये बताइए
1: भाई। बातें तो हमारा जो विषय है व्यसन एक गंभीर समस्या है नेहा, और आज के समय में जो ये नशा है केवल एक बुरी आदत नहीं बल्कि समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुका है
0: जी।
1: और विशेष रूप से युवाओं युवतियों में कुछ लोग इस आदत को जो है वो आधुनिकता स्टाइल और फैशन का प्रतीक मानने लगे हैं, और नई पीढ़ी जिसे जेनजी का नाम दिया गया है वो इन आदतों को हाई सोसाइटी के संग स्टेटस सिंबल मान रही है। उसे लगता है कि ये जो आदत है इसको करने में कोई बुराई नहीं है, ये तो मॉडर्न समाज का फैशन है। देर रात तक पार्टी, क्लब, रिसॉर्ट्स में दोस्तों संग मादक पदार्थों का, नशीले पदार्थों का सेवन करना, डांस करना, जश्न मनाना, उनको लगता है कि बस एक तो ये तो एक जस्ट एक एंजॉयमेंट है, फन है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस आदत को कभी फैशन नहीं माना जा सकता है, ना ही ये हो सकता है, और ये एक ऐसा व्यसन है जो धीरे धीरे व्यक्ति के स्वास्थ्य, परिवार, करियर और पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है।
0: बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत में तो कई लोग दोस्त के दबाव में आके या फिर दिखावा होता है या कोई कभी कभी जिज्ञासा होती है या तनाव हो जाता है तो उससे बचने के लिए मद्यपान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तम्बाकू या अन्य नशीले पदार्थों का वो सेवन करते हैं, और लगता है कि उनका व्यक्तित्व अधिक आकर्षक इससे दिखाई देगा और स्वीकार किए जाएंगे लोगों के बीच, जैसे लोगों के बीच वो रह रहे हैं। लेकिन तथाकथित ये जो फैशन है धीरे धीरे आदत और फिर

में बदल जाता है। और ये जो लत है वो बड़ी नुकसान करती है, जैसे कि आपने कहा स्वास्थ्य पर नुकसान है, शरीर के साथ साथ मानसिक संतुलन भी इससे प्रभावित होता है। निर्णय लेने में बहुत ही परेशानियां आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, आर्थिक समस्याएं भी पड़ती हैं, परिवार हो तो तनाव पैदा हो जाते हैं, कई बार इसकी वजह से अपराध, सड़क दुर्घटना और हिंसा जैसी घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। इससे संबंधित और बातें करेंगे, लेकिन एक अंतराल ले लें।

0: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है विविध भारती पर। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम
1: सखी सहेली और बातें चल रही थी कि हम ये जो गंभीर समस्या है व्यसन की, हाँ। तो नेहा इसमें क्या होता है कि जब ऐसी लत को आप लेकर के चलते हैं, ड्राइव करते हैं, तो उसके साथ साथ आप रील बनाने लग जाते हैं, वीडियो बनाकर, हाँ। ब्लैकमेल करना भी एक आदत शुमार हो जाती है लोगों की, और शोषण करना जैसी बातें कितनी आए दिन होती रहती है, हम खबरों में भी देखते हैं, और इससे वो लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लेकिन हमारे जो युवा युवतियां हैं वो इतनी न्यूज सुनने के बाद भी, समाचार सुनने के बाद भी वो लोग जागते नहीं, जागरूक नहीं होते, सतर्क नहीं होते कि उन्हें इन चीजों से दूर रहना चाहिए, हाँ। और सोचो उन माता पिता पर क्या बीतती होगी जब इस स्थिति में उनका बेटा या बेटी फंस जाते हैं, तो बहुत ही शर्मिंदगी की बात होती है, उनके अच्छा नहीं लगता है कि परिवार की इस तरह से सब जगह वैसी बातें हो रही हैं उनके बारे में। तो बच्चों को ये चीज सोचना चाहिए, और इसके लिए क्या है कि आप इसको फैशन, मतलब अगर मानते हैं तो बहुत ही गलत बात है, ये फैशन नहीं है, फैशन आप और चीजों का कीजिए, लेकिन ये चीज, इन चीजों से आप दूर रहिए, और अपनी अपनी जो अच्छी शिक्षा है, जो आपको पिता माता चाहते हैं कि आपका बच्चा, मेरा बच्चा अच्छा पढ़े लिखे, तो उस तरफ ध्यान दीजिए, आप अच्छी शिक्षा लीजिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, खेल संगीत साहित्य और रचनात्मक कार्य कीजिए जिससे कि आपका नाम रोशन है, ना कि आप इस वजह से आपके नाम को कहा जाए कि ये बच्चा गलत लत का शिकार है, ऐसा ना करें।
0: और कई बार इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि परिवार में, विद्यालय में, समाज में, सब हम मिलकर अगर युवाओं को इसके दुष्प्रभावों के बारे में अगर हम बताएं, या मित्रों का सही चुनाव कैसे करना चाहिए, या उनका जो तनाव है, तनाव तो सभी को होता है, तो तनाव का सकारात्मक रूप से कैसे समाधान कर सकते हैं, कैसे खुद को आत्मसंयमित हो सकते हैं कि नहीं, जो अगर हमारे साथी नशा कर रहे हैं या ऐसे लोगों के आसपास हम हैं या ऐसी चीजें हमें आकर्षित करनी है, तो कैसे खुद को हम ये बताएं कि नहीं, ये चीज सही नहीं है, तो हमें इससे बचना है। तो इसके लिए आत्मसंयम बहुत जरूरी है। और जब हम देखते हैं कि क्या आजकल अगर हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो ये व्यसन है, नशा है, वो एक नई पहचान की तरह आते जा रहा है, कि मान लीजिए सिगरेट है या नशीले पदार्थ हैं, तो उनका सेवन करना आधुनिकता मानी जाती है, ऐसा लगता है कि वह कितनी अच्छी तरह से, कितने अच्छे लग रहे हैं, ऐसा युवाओं का जो नजरिया बदल रहा है उसके लिए ही वो उस तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। फिर अगर ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसके तो पैकेट्स में ही सारी लिखे होते हैं क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उसके, और अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम ही हैं जो आसपास भी दिख जाएंगे अगर वो देखते हैं, तो बहुत सी गंभीर समस्याएं होती हैं, कभी कभी लोग कहते हैं कि स्टेटस है या कूल दिखते हैं हम इससे, तो ये जो चीजें हैं वो सोशल मीडिया के जरिए या फिल्मों के जरिए कई बार, क्योंकि फिल्मों में भी बताया जाता है कि किसी खास किरदार को दिखाने के लिए उस तरह की चीजें करना लगता है उन्हें जरूरी, तो इस वजह से वो पूरा जो एक शुरुआत में बताया जाता है, स्पष्टीकरण दिया जाता है कि इस तरह का कोई भी काम वो व्यक्ति नहीं कर रहा, एक किरदार को दिखाया जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: तो इस किरदार में आपको क्यों ढलना है,
1: क्यों ढलना है? और नेहा, जब कोई इस तरह की चीजों को लेता है तो उसका जो धुआं है वो सामने वाला अगर नहीं लेता है तो उसके, वो सांस तो ले रहा है ना, तो उसके लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके फेफड़ों को भी नुकसान हो रहा है। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, लेकिन आपके साथ दूसरे को भी नुकसान हो रहा है। अब घर में आप अगर आप ले रहे हैं तो बच्चे भी देख रहे हैं, बच्चों को भी लंग्स में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं

0: पूरे परिवार को इससे क्षति होती है। तो हमारे जो युवा बच्चे युवतियां हैं उनको कहना चाहिए कि वो सतर्क रहें, इस तरह की आदतों से दूर रहें। और हमारे साथी भी देखो लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन गंभीर मानसिक बीमारी है जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली को बाधित करता है। किसी को धूम्रपान, तम्बाकू सेवन या कैफी पदार्थ पीने का व्यसन हो जाता है जो शरीर और दिमाग को काफी नुकसानदायी होता है। आजकल एक नया व्यसन चल रहा है मोबाइल का, जिसका ज्यादा उपयोग करने से आंखों के साथ गर्दन के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। व्यसन कोई भी हो, उनके अधीन होने में खुद का नुकसान ही होता है, इसीलिए इससे दूरी बनाने में ही समझदारी है। अगर आपको व्यसन रखना है तो रेडियो का रखिए, विद भारती पर मनभावन गीत संगीत सुनना सबसे बड़ा फायदेमंद होगा। तो बहुत अच्छी सी बात आपने अंत में लिख दी है, तो बच्चों को सोचना चाहिए।
1: बिल्कुल, तो कुछ अच्छी चीजों का हम, क्योंकि किसी भी चीज की अगर लत लगती है तो वो ऐसे, हालांकि लत को बुरी चीजों बुरी आदतों के साथ ज्यादा जोड़ा जाता है, फिर भी अगर हम जोड़ रहे हैं हमारे साथी कि संगीत के साथ आप कर सकते हैं या पढ़ने के साथ अलग अलग किताबों का आप शौक पाल सकते हैं, उसके प्रति आप उतने ज्यादा दीवानगी पाल सकते हैं कि बस उसको आप, उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हैं, तो फिर भी आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, कुछ न कुछ आपके लिए फायदेमंद ही होगा। हमारे साथ लिखते हैं कि व्यसन एक दीर्घकालीन समस्या है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है, जिनमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते और करियर शामिल है, और इसमें मादक पदार्थों के सेवन से संबंधित विकार, ये दो मुख्य प्रकार उन्होंने बताया व्यसन के, व्यवहार संबंधी व्यसन, तो इसका इलाज लेकिन संभव है, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी इलाज कर लेना चाहिए। यानी कि व्यसन मुक्ति के भी बहुत से केंद्र हैं, वहां अगर आप जाकर, क्योंकि अगर आपको आदत हो गई तो उसे छुड़ाना भी आवश्यक है, तो एक अच्छी तरह से अगर आप छुड़ाते हैं तो आसानी से आप उससे बच सकते हैं। वहीं वो कह रहे हैं कि मस्तिष्क का एक दीर्घकालिक रोग है जो सीखने और बार बार होने वाले व्यवहारों को प्रभावित करता है। इसे आमतौर पर किसी विशेष पदार्थ पर निर्भरता के रूप में पहचाना जाता है जो आदतन उपयोग को प्रेरित करता है, लेकिन अन्य बाहरी कारकों जैसे घटनाओं से भी संबंधित ये हो सकता है। जैसे इसके लक्षण उन्होंने बताते हुए लिखा है कि तीव्र लालसा होती है, आत्मनियंत्रण खो सकते हैं, वापसी के लक्षण होते हैं, यानी कि अगर एक बार आपने छोड़ दिया, उनका जो भी मूल तत्व जो कहना चाह रहे हैं, तो एक बार अगर आपने छोड़ दिया तो खुद को उसी स्थिति में बनाए रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता है, क्योंकि आपके मन में फिर से वो लालसा हो सकती है कि एक बार फिर से क्यों ना उसे चखा जाए या फिर से क्यों ना उसे और बढ़ा जाए। तो वहां आत्मसंयम रखना बहुत जरूरी है। छोड़ना फिर भी आसान है, लेकिन छोड़े रहना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल, और अगर आप मन में ठान लेंगे तो आप कर भी सकते हैं, उसे दूरी बना भी सकते हैं। हमारे साथी और लिखते हैं कि व्यसन एक गंभीर समस्या है, स्मार्टफोन का व्यसन एक बड़ी चुनौती है, स्वयं शिस्त और सेल्फ कंट्रोल एक ही उपाय है। जिन्होंने ये फोन बनाया था उनको भी ये बात पता थी, उन्होंने एक राक्षस बना दिया है। 3-4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन देखता हूं तो दुख होता है, चर्चा के इंतजार में इन्होंने लिखा है। कथा सुधा एक आज की कसर सुनेंगे इन्होंने, तो वो तो हमने सुनाई ही दी है,
1: ये सब तो हमने सुन लिया, लेकिन एक गीत भी तो सुने।

0: तो देखो
1: जीवन की बात बताता है ये गीत कितना अच्छा मंजे जी।
0: बिल्कुल, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना ये बहुत बड़ी बात है, इस गीत से भी संदेश मिलता है। और देखा जब विवाह जो है वो बंधन नहीं रिश्तों को समझने का सबसे सुंदर एक सफर है। अक्सर लोग विवाह को बंधन कह देते हैं नेहा, लेकिन सच तो ये है कि विवाह किसी को बांधने का नहीं बल्कि दो अलग अलग व्यक्तियों को समझने और स्वीकार करने का नाम है। ये ऐसा रिश्ता है जहां केवल दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृतियां, दो आत्य और दो सोच एक साथ चलना सीखती हैं। और विवाह का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं बल्कि एक दूसरे की पहचान का सम्मान करना है। जहां प्रेम हो, भरोसा हो, विश्वास हो और संवाद हो, वहां विवाह कभी बंधन नहीं लगता है। बंधन तो तब महसूस होता है जब रिश्ते में अधिकार अधिक और अपनापन कम हो जाए।
1: वाकई मंजरी जी, और एक सफल वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करें तो उसकी नींव ही इस बात पर है कि जो पति पत्नी हैं वो एक दूसरे को बदलने की कोशिश ना करें बल्कि एक दूसरे को समझने की और स्वीकार करने का प्रयास करें। हर व्यक्ति अपनी परवरिश, अपनी सोच और अनुभवों के साथ ही आता है और इसलिए मतभेद होना तो स्वाभाविक है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। कहीं हो सकता है वो कुछ अलग काम करते हो, आप कुछ अलग तरह से जीवन जी रहे हो, तो ये समझिए कि उनकी वो आदतें हैं। एक खास उम्र तक आप पहुंच चुके हैं और वो भी, तो एक जो आदतें हैं वो नहीं बदलती हैं, तो उन्हें स्वीकार जितनी जल्दी किया जाए
0: वो ही अच्छा है। और दोनों को पहल करनी पड़ती है रिश्ते में। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब छोटी छोटी बातों पर संवाद होता है, जब गलती होने पर अहंकार नहीं बल्कि क्षमा आगे आती है, और जब वो खुशी के साथ साथ कठिन समय भी नेहा एक दूसरे का हाथ थामे रहते हैं, कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएं, झूठ नहीं बोले, हमेशा सच बोले। यदि कोई अपनी लाइफ में तीसरा दखल देने की सोच रहा है तो उसके बारे में पति को बताएं, जिससे मुसीबतों से बचा जा सकता है। यानी कि विवाह को कोई जो है वो कैद नहीं है बल्कि एक ऐसी साझेदारी है जहां दोनों का समान होता है, समान अधिकार है और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर मिलता है। इसमें मैं से अधिक हम का भाव होता है, लेकिन हम बनाते हुए किसी को मैं खोना भी नहीं चाहिए। यानी जब शादी के लिए वो समय आए तो जब शादी कर रहे हैं तो उसको निभाने के बारे में सोचना चाहिए, ये नहीं कि आज किया और कल हम अलग हो रहे हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, है ना?
1: जहां तक संभव हो आपको ये देखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि छोटी सी बात पर आपने इसे बहुत बड़ा बना लिया। आपको हर पहलू का, हर नजरिए को देखना जरूरी है और उसे उस सोच के साथ ही आगे बढ़ने की कोशिश करें। और हमारे साथी लिख रहे हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा हुआ जर्दारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है, उसे तहे दिल से निभाना पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य है। दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। और उन्होंने तो वो भी कहा, वट पूर्णिमा की पूजा भी आज है जो प्रेम, समर्पण, त्याग और आत्मविश्वास की पवित्र सीख देती है।
0: क्या बात,
1: और वैवाहिक बंधन से जुड़ी हुई ये बहुत ही अच्छी परंपरा है।
0: बिल्कुल, और हमारे साथी एक लिखते हैं कि विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं बल्कि दो दिलों, दो परिवारों और दो जीवन यात्राओं का सुंदर मिलन है। इसे बंधन कहना उचित नहीं क्योंकि सच्चा विवाह प्रेम, विश्वास, सम्मान और आपसी समझ पर टिका होता है। जब पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं, सपनों और परिस्थितियों को समझते हैं तभी उनका रिश्ता मजबूत बनता है। जीवन में मतभेद आ सकते हैं लेकिन संवाद, धैर्य और

0: और सहयोग हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। विवाह का वास्तविक अर्थ एक दूसरे को बदलना नहीं बल्कि एक दूसरे को स्वीकार करना और हर परिस्थिति में साथ निभाना। इसलिए विवाह बंधन नहीं बल्कि रिश्तों को समझने, संजोने और प्रेम से निभाने की एक खूबसूरत यात्रा है। नेहा,
1: वही हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह का बंधन का मतलब बंधन नहीं है, अपने रिश्ते को समझें। कुछ लोग शादी तो कर लेते हैं पर शादी के बाद नए रिश्तों को अपना नहीं पाते, खासकर कन्या। वो लोग शादी कर लेती है ससुराल को और न ही अपने सास ससुर को जल्दी अपना पाती है। समय लगता है, रिश्ते नहीं समझती बल्कि एक बंधन समझती है। अब हम इस रिश्ते से बन चुके हैं लेकिन वो सच्चे दिल के रिश्ते हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। ये नहीं समझते कि अरे अभी हमें रिश्ता निभाना है, बंधन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं कि अपने माता पिता की तरह ही उन्हें माने और उनके साथ रहें। और वो आगे कहते हैं कि ससुराल वालों से भी ये कहना चाहेंगे कि लड़के के ससुराल वाले हों या लड़की के ससुराल वाले, दोनों को ही टाइम दें। लड़के के लिए भी नया होता है दामाद बनना और नए लोगों को माता पिता का दर्जा देना थोड़ा समय लगता है। ये लड़कियों के लिए भी नया होता है, ये नहीं कि आज आप थोप दें कि हमारा रिश्ता जुड़ गया है तो आप हमारे अनुसार, हमारे नियमों के अनुसार रहें, तो इसमें समय लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी तरह से इन्होंने दोनों नजरिया पेश किया क्योंकि आमतौर पर लड़कियों के लिए इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वो अपना घर बार छोड़कर नए घर में जा रही हैं और उन्हें तो पूरे समय वहां रहना है, जबकि जो नए दामाद बने हैं उन्हें तो कभी कभी ही आना है। तो कभी कभी आने में तो इंसान 2-3 दिन तो फिर भी चला सकता है, लेकिन अगर आपको पूरे दिन वहां रहना है तो बहुत सारे नियम कानून अगर नए तुरंत ही दे दिए जाए
0: तो
1: वो एक घबराहट होती है और ऐसा लगता है कि क्या ये मेरा घर नहीं है। वो जो एक मन में स्थिति आती है ना कि भाई ये मेरा घर नहीं है, क्या इतनी सारी चीजें ये सब करना है।
0: और सब लोग देखो उम्मीद भी लगा लेते हैं उस नई लड़की से कि ये तो आएगी तो हर काम कर लेगी, सबकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी, तो ऐसा नहीं है। आप लोग मिलके काम करिए तो उस बच्चे को भी अच्छा लगेगा। और हमारे साथी लिखते हैं विवाह बंधन नहीं रिश्तों को समझे। आज की युवा पीढ़ी विवाह के पवित्र रिश्ते को जिस सरलता से ले रही है, आज हर माता पिता और परिवार के बड़ों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है कि नई पीढ़ी को विवाह के पवित्र रिश्ते का महत्व समझाए। विवाह पति पत्नी का रिश्ता अंतिम सांस तक का होता है। पति और पत्नी दोनों को एक दूसरे के मिसाल कायम करनी चाहिए ताकि दोनों में प्रेम बढ़े। और हम सोचते हैं एक गीत सुन लिया जाए। नेहा,

0: तो
1: ये जब शादी ब्याह की बातें होती है तो नाच गाने की और सब बातें भी हो जाती हैं, लेकिन असली जो भी होता है मौका तो उसके बाद ही होता है, क्योंकि निभाना तो उसके बाद ही
0: बिल्कुल है। और बस खुशी खुशी निभाइए अपने रिश्ते को, है ना। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि विवाह को एक नैतिक सामाजिक बंधन माना जाता है, न कि बोझ। विश्वास, प्यार और सहयोग के नाजुक रेशमी रिश्तों में बंधा युवा जर तारी वस्त्र यानी शादी ब्याह है उसे तहे दिल से निभा पति और पत्नी दोनों का कर्तव्य निभाना, मतलब दो अनजान राहों का एक हो जाना, सुख दुख में एक दूसरे का हाथ थामना, यही विवाह की असली खूबसूरती है। देखो ना, आज की सती सावित्री वाली वट पूर्णिमा की पूजा भी है, ये तुमने मेरे ख्याल से ये वाला संदेश लिया
1: था। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि विवाह को एक समझौता या बोझ मानने के बजाय इसे जीवन को सुंदर बनाने का एक जरिया समझना चाहिए। जब दो लोग एक दूसरे को बिना किसी शर्त के समझने का प्रयास करते हैं तब विवाह बंधन नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफर बन जाता है।
0: बिल्कुल। और एक लिखते हैं, विवाह दो आत्माओं का स्वैच्छिक मिलन है, ये कोई बंधन नहीं है, ये दो लोगों के बीच बराबरी और सम्मान का रिश्ता है। एक अच्छा विवाह दोनों पार्टनर्स को व्यक्तिगत रूप से बढ़ने में मदद करता है। वाकई में जब आपकी शादी होती है, आपका पार्टनर है, तो एक दूसरे के साथ अपने विचार साझा करते हैं, और हम कहीं मुसीबत में होते तो वो हमें संभालता है, उसको परेशानी होती तो हम संभालते हैं। तो कहना चाहिए सुख दुख तो देखो आते ही रहते हैं जीवन में, लेकिन हमें उन्हें कैसे निभाना है वो हमें सीखना चाहिए। शादी के बाद वही बहुत जरूरी होता है कि एक दूसरे की बातों को समझे और कुछ भी ना छुपाए। आप सच बोले तो हमेशा आपकी बात को वो समझेंगे कि हाँ ये हमेशा सच बोलती है, तो इससे आपका एक विश्वास भरोसा बढ़ेगा आपके ऊपर।
1: इससे एक आपकी जो एक आपका एक व्यक्तित्व है उनके सामने क्लियर सही तरीके से आएगा कि ये जो भी बोलना है चाहे वो बात अच्छी लग रही हो ना लग रही हो या वो बात कैसी भी हो ये सच हमें बता देंगे या ये सच हमें बता देंगे जो भी है दोनों के लिए। तो एक तरह से देखिए हमारे साथियों ने इतने सारे कमेंट्स किए तो सब में उन्होंने यही कहा है कि मिलजुल कर अगर रहें और आपसी सामंजस्य बिताएं, एक दूसरे को वक्त दें और एक दूसरे के साथ जो दूसरा साथी अगर थोड़ा बदल भी रहा है वक्त के साथ तो उसे स्वीकार करें क्योंकि हर व्यक्ति बदलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो बस समझ कर चलने से एक दूसरे के साथ ही यही विवाह का एक कह सकते हैं कि मूल मंत्र है।
0: मूल मंत्र है।
1: विवाह को अच्छी तरह से बंधन नहीं है लेकिन साथ चलने का नाम है विवाह, जिसमें
0: अब देखो विवाह जब कर ही लिया है तो पति को क्या पसंद है वो भी समझे, क्योंकि कहते हैं कि अगर दिल जीतना है तो खाना वाना अच्छा सा बनाइए और दिल जीत लीजिए। तो
1: खाना तो बनाएंगे लेकिन गाना कब सुनाएंगे?
0: तो चलो पहले गाना सुना देते हैं।
1: बिल्कुल।

0: तो
1: तो
0: देखो,
1: मनाने का तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि कुछ खिलाया जाए। अच्छा
0: चलो
1: अच्छा है
0: फिर
1: ना।
0: बना देते हैं दाल की कचौड़ी।
1: हाँ?
0: इसके लिए मैदा लेंगे और 2 कप मैदा लेंगे और इसमें घी या तेल जो है वो मोयन के लिए डालेंगे, नमक डालेंगे और इसको हम गूथ लेंगे।
1: हाँ
0: और जो भरने की सामग्री है उसके लिए उड़द की दाल बिना छिलके वाली 1/2 कप, ये करीब 3-4 घंटे भीगी हुई, और इसको पीस के रख लें जब भीग जाए अच्छे से।
1: जी
0: और बेसन इसमें लगेगा 2 चम्मच, सौंफ दरदरी और 1 चम्मच साबुत धनिया कुटा हुआ, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हींग, 1 चुटकी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच गर्म मसाला, 1/4 चम्मच अमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार आप लीजिए, और तलने के लिए तेल। और बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल, बस जो आपने आटा गूंथ कर रखा है मैदा वगैरह उसको उसको एक बार और वापस गूंथ लीजिए। और इधर जो आपने भरावन था उसको आपको भीगी हुई उड़द की दाल को बिना पानी डाले दरदरा पीस लीजिए। एक पैन में तेल गरम करिए, इसमें हींग, जीरा, सौंफ, धनिया और बेसन डालकर भूनिए। इसके बाद पीसी हुई दाल डालें और सभी मसाले जो है वो मिर्च, लाल मिर्च, गरम मसाला, अमचूर डालकर

0: ये और देखिए, समय ऐसा बता रहे हैं कि आप समोसा और जो छोले की जो रेसिपी थी ना, समोसा बना हुआ लाइए, छोले अपने घर में अपने हिसाब से बनाइए, दोनों को मिलाकर खाइए।
1: बिल्कुल
0: जी।
1: तो अब चलते हैं विदा। तो सभी को मंजरी वर्मा और
0: नेहा शर्मा का नमस्कार।

0: आज के सेहत नामा कार्यक्रम में आप सुनेंगे जाने माने गैस्ट्रो इंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता से ममता सिंह की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह। अपने श्रोताओं को बताते हैं कि आज मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल के जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता हमारे साथ विविध भारती के स्टूडियो में हैं और आज पेट की बीमारियों के बारे में और फैटी लिवर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। हमारे श्रोताओं की ओर से भी डॉक्टर साहब कुछ सवाल आए हैं। एक तो आईबीएस के बारे में सवाल था, एसिडिटी के बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा जिस पर हमने चर्चा की ही, और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि हमें पेट में दर्द रहता है और सारी जांच करवा लिए लेकिन फिर भी सब कुछ रिपोर्ट नॉर्मल आई, फिर भी पेट में दर्द रहता है, इसकी क्या वजह हो सकती है? एक तो इन्फेक्शन, तो उसकी भी दवा कर चुका हूं फिर भी तकलीफ नहीं जा रही है।
2: तो जब जो पेट का दर्द होता है उसके कई कई कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द ज्यादा देर तक रहे तो क्लियरली इन्फेक्शन तो हो नहीं सकता। एक दूसरी बात ये भी हमारा है कि हम एंटीबायोटिक बहुत जल्दी ले लेते हैं। कोई भी दर्द हुआ, पेट में दर्द हुआ, एक दो लूज मोशन हमने एंटीबायोटिक ले ली, तो वो हमको अवॉइड करना चाहिए। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली एज लास्ट रिसोर्ट। अगर कुछ नहीं ठीक हुआ तो एंटीबायोटिक फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। पेट के दर्द के अगेन कई कारण होते हैं। एसिडिटी से किसी को पेट में दर्द हो सकता है, पेट में अल्सर हो सकता है, तो पेट में और कई ऑर्गन्स होते हैं, पैंक्रियाज होता है, पैंक्रियाज में अगर तकलीफ हो जाए, जो अल्कोहल पीते हैं उससे पेट में कभी कभी अल्सर हो सकता है, पेट में पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, अगर कॉन्स्टिपेशन हो उससे पेट में दर्द हो सकता है, पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो मैंने पहले कहा था आईबीएस, उसमें भी पेट में दर्द हो सकता है। तो पेट का दर्द इज अ वेरी वेरी ब्रॉड टॉपिक, उसमें बहुत से कारण होते हैं। अगर पेट का दर्द थोड़े दिनों तक रहे और चला जाए तो उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर पेट का दर्द जारी रहे, दो से तीन दिन तक पेट का दर्द जारी रहे, उसके साथ अगर आपको बुखार आए या वॉमिटिंग हो, लूज मोशन हो या कॉन्स्टिपेशन हो, तब डॉक्टर को दिखाना चाहिए।

0: क्योंकि ये कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइटिस.
1: जी
0: अपेंडिसाइटिस का सबसे इम्पोर्टेंट सिम्टम पेट का दर्द होता है. तो डोंट इग्नोर पेट का दर्द. एक दो दिन तक हो तो घर के नुस्खे कर सकते हैं, मगर अगर कोई अलार्म सिम्टम्स हो जैसे बुखार, वॉमिटिंग, तब डॉक्टर को दिखाइए.
1: जी, तो ये आपने बड़ी जरूरी बात कही है। और उसमें यहाँ बहुत सारे लोग घरेलू इलाज करने लगते हैं। घरेलू इलाज की व्यवस्था तब थी जब मेडिकल साइंस एडवांस नहीं था। आज जब मेडिकल साइंस उपलब्ध है तो सीधे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, हम एसिडिटी की बात जब कर रहे थे तो वहां मेरे जहन में एक बात आई कि बहुत सारे लोग एसिडिटी के शिकार होते हैं। क्या एसिडिटी का असर गले पर भी पड़ता है, थ्रोट पर, या आवाज पर भी पड़ता है? हमने सुना है कि आवाज फटने लगती है, खराब होने लगती है। इसके बारे में जानकारी दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: बिल्कुल सही कहा आपने. जब एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो एसिड ऊपर आके गले को इरिटेट करता है, और गले में हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं जहां से हमारी आवाज निकलती है. स्पेशली जब हम रात को सो जाएं, नींद में हो, और अगर आपको एसिड रिफ्लक्स हो तो ये गले में आके गले को इरिटेट करता है. कई पेशेंट कहते हैं गले में दर्द हो रहा है, किसी किसी की आवाज बदल जाती है. तो नॉर्मली ये सारे पेशेंट पहले ईएनटी को जाके देखते हैं, ये गला खराब है. ईएनटी जब अपना कैमरा डाल के गले में देखता है तो उनको पता चलता है कि जहां से खाने की पाइप शुरू होती है वहां पे काफी लाल हो चुका है, विच टेल्स यू कि ये एसिड रिफ्लक्स के कारण है. तो एसिड रिफ्लक्स से गला खराब हो सकता है, एसिड रिफ्लक्स से गले की आवाज जा सकती है, ऐसे लगता है हमको हमेशा कि गले में कुछ अटका हुआ है. तो एसिड रिफ्लक्स कैन कॉज ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स.
1: तो मतलब आवाज की दुनिया में जो लोग काम कर रहे हैं और उन्हें अगर एसिडिटी की समस्या है तो फौरन जागृत हो जाएं और डॉक्टर से संपर्क करें। और बात आवाज की चली है तो एक गाना है, मेरी आवाज ही पहचान है। अगर ये गाना आप कहें तो हम सुनवाएं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बढ़िया गाना है, बहुत सुनना चाहिए.
1: सुनते हैं ये गाना।

0: डॉक्टर साहब, गाने के बाद हमारे श्रोताओं को बताइए, बीच में पेट के अल्सर का भी जिक्र किया था, और पेट के अल्सर के हालांकि अब तो लोग डॉक्टर्स कहते हैं कि बहुत आसान है इलाज, लेकिन जिस मरीज को होता है वो बहुत जल्दी घबरा जाता है, तो क्या अल्सर का इलाज दवाइयों से भी संभव है या ऑपरेशन करना जरूरी होता है?
1: नहीं, आज के जमाने में तो हम अल्सर का ऑपरेशन करते ही नहीं है, क्योंकि अभी इतनी बढ़िया दवाइयां निकल रही हैं जो अल्सर की ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाती है। पर क्वेश्चन है कि अल्सर क्यों हो रहे हैं? अगर आज के जमाने में अल्सर हो तो हमको ढूंढना चाहिए क्यों होते हैं अल्सर। ज्यादातर अल्सर होते हैं जब हम पेन किलर्स बहुत खा लें, जैसे कभी जोड़ों का दर्द हो गया, हेडेक हो गया, तो लोग पेन की दवाइयां लेते रहते हैं, तो पेन मेडिसिन से अल्सर होने की संभावना बहुत हाई रहती है। स्ट्रेस से भी अल्सर हो सकता है, उसको स्ट्रेस अल्सर्स बोलते हैं। एसिडिटी से भी अल्सर हो सकता है, और रेयरली पेट का अल्सर एक साइन ऑफ कैंसर भी हो सकता है। द रीजन हम अभी आजकल सर्जरीज नहीं कर रहे, क्योंकि जो एसिडिटी की दवाइयां हैं वो अगर आप खाओ तो मोस्ट अल्सर्स 6 से 8 हफ्ते के अंदर मिट जाते हैं। तो पुराने जमाने में ये दवाई नहीं होती थी, तो अल्सर लोगों के चले रहते थे, जबकि फट जाए तो सर्जरी कराओ। आज के जमाने में अल्सर की सर्जरी इज ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ, दवाइयों से 6 से 8 हफ्ते में मोस्ट अल्सर्स ठीक हो जाते हैं।
0: जी जी, तो ये बहुत सही बात आपने बताई है, लेकिन अल्सर की पहचान कैसे करें, मतलब मरीज को कैसे पता चले कि उसे अल्सर है, क्या सिम्टम होते हैं खासतौर से?
1: नॉर्मली अल्सर में आपको पेट में, जहाँ पेट शुरू होता है, छाती के जस्ट नीचे बीच में सेंटर में पेन होगा। कभी कभी ये पेन खाने के बाद हो सकता है, कभी कभी ये पेन खाने से पहले हो सकता है, कभी कभी पेशेंट को वॉमिटिंग होती है और वॉमिटिंग में ब्लड भी आ सकता है।
0: जी जी,
1: कभी कभी ये ब्लीडिंग मोशन में भी हो सकती है, काला कलर का अगर मोशन हो गया मतलब पेट में अल्सर की ब्लीडिंग हो रही है, तो ये संभावना हो सकती है। अगर आपको ब्लीडिंग हो जाए, वॉमिटिंग हो जाए ब्लड की, पेट में दर्द हो जो खाने के बाद या खाने के पहले हो, दैट टेल्स यू कि आपके पेट में अल्सर होने की संभावना काफी हाई है।
0: जी, और एक बहुत बड़ी समस्या है, हमारे श्रोताओं की ओर से भी सवाल है, ये नींद और पेट की बीमारियों का क्या संबंध है, कि बहुत कम नींद लेके आजकल लोग काम करते हैं बहुत टेंशन में, तनाव में, तो उसका क्या असर पेट पर पड़ता है?
1: हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि अगर हम ठीक से सोए ना, अगर हमारी नींद पूरी ना हो तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा खराब हो जाता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक क्लॉक पे काम करता है, सुबह उठते हैं, मोशन होता है और फिर पेट खाली होता है, फिर पूरे दिन हम खाना खाते हैं, अगले दिन फिर से सोते हैं, हमारी साइकिल रीसेट होती है, अगेन नेक्स्ट डे मोशन होता है। चूंकि स्लीप साइकिल खराब हो या लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, ये स्लीप पैटर्न खराब हो जाता है। तो कॉन्स्टिपेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम देखते हैं आजकल के युवाओं में, जो लेट नाइट बैठे रहते हैं, जंक फूड खाते हैं, फाइबर कम खाते हैं, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं स्लीप डिप्राइव्ड पेशेंट को, जब स्लीप पैटर्न ठीक ना हो। अगर आप टाइम पे नहीं सो, खाके तुरंत सो गए, तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें, तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दर्शक देख नहीं रहे कि मेरे हाथ में एक रिंग पहनी हुई है मैंने, ये मेरी स्लीप रिंग है, ये मुझे कहती है कि मैं कितना सोया हूं कल रात को, ठीक से सोया हूं कि नहीं। अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई है तो ये मुझे कहेगी कि मैं नेक्स्ट डे मुझे इतने बजे सोना है। अगर मैं इसको फॉलो करूं अपने स्लीप पैटर्न को, तो मेरा पेट भी ठीक रहता है, एसिडिटी भी नहीं होती, वेट भी कंट्रोल में रहता है। अगर आप स्लीप पैटर्न्स को ठीक करें तो अपने वेट को भी कंट्रोल कर सकते हैं।
0: ओके, तो ये तो बहुत जरूरी बात आपने बताई है, क्योंकि आजकल तो सोने का किसी का समय फिक्स नहीं होता है, तो शिफ्ट ड्यूटी करने वाले लोगों को पेट की समस्या ज्यादा होती है कुछ?
1: बिल्कुल, या एब्सोल्युटली बिल्कुल। हमारे ओपीडी में काफी कंपनी के पेशेंट्स आते हैं जो अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट खत्म करके आते हैं हमारे पास देखने, और मोस्टली सबको इधर कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ रहती है या एसिडिटी की तकलीफ रहती है, एंड दिस इज रिलेटेड टू द शिफ्ट वर्क। तो आई थिंक शिफ्ट वर्क पेशेंट्स को डेफिनेटली ज्यादा प्रॉब्लम होती है।
0: जी।

0: एक श्रोता की ओर से सवाल है कि ये गट फ्लोरा क्या होता है?
1: गट फ्लोरा वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट चीज जो अभी लास्ट एटलीस्ट 10 साल से डिस्कवर हुई है। जो हमारा पेट इंटेस्टाइन होता है उसमें कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं
0: जी।
1: तो हम सिंपल टर्म्स में देयर इज गुड बैक्टीरिया एंड देयर इज बैड बैक्टीरिया। जो गुड बैक्टीरिया हो अगर ज्यादा हो तो डाइजेशन ईजी हो जाता है, गुड बैक्टीरिया ज्यादा हो तो ओवरऑल बॉडी का फंक्शनिंग बेटर होता है। तो बहुत बार अगर हमको लूज मोशन हो, हमने एंटीबायोटिक ले ली तो हमारे गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब वो मर जाते हैं तो पेट के मसले और बढ़ जाते हैं, लूज मोशन ज्यादा होता है, पेट ठीक नहीं लगता, पेट का दर्द होता है। तो इसके लिए प्रोबायोटिक्स डेवलप हुई है, गुड बैक्टीरिया जो हम देते हैं इंटेस्टाइन्स को, एंड इट हेल्प्स नॉट ओनली मेक द इंटेस्टाइन डाइजेस्ट फूड बेटर बट ऑल्सो इम्प्रूव्स इम्यूनिटी, बॉडी की इम्यूनिटी को भी ठीक करता है गुड बैक्टीरिया
0: जी। तो उसके लिए जो प्रोबायोटिक दवाएं आती हैं वो लेना
1: तो मैं तो कहूंगा कि मोस्ट इम्पोर्टेंट गुड बैक्टीरिया और गुड प्रोबायोटिक्स जो हमारे घर में है ना, फर्मेंटेड फूड्स और दही,
0: दही
1: से अच्छा कोई प्रोबायोटिक नहीं है। बट ऑब्वियसली अगर ये आप नहीं ले सकते, बहुत लोग दही नहीं खाते या फर्मेंटेड फूड्स नहीं टॉलरेट कर सकते, तो उनके लिए देयर इज गुड बैक्टीरिया अवेलेबल टू यू कैन टेक इट ऑलमोस्ट डेली।
0: जी बहुत बढ़िया। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं डॉक्टर साहब, बताइए कौन सा गाना सुनवाया?
1: तो ये एक बहुत पुराना सॉन्ग है, बहुत पुरानी मूवी कर्स का, दर्दे दिल दर्दे जिगर, ये गाना
0: क्या बात है, आशिक बनाया आपने, बढ़िया गाना है, सुनते हैं ये गाना।

0: गाने के बाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं की ओर से एक सवाल है कि फैटी लिवर की समस्या है, इसे योगासन से क्या ठीक कर सकते हैं और एक्सरसाइज से दवाओं के साथ साथ कर सकते हैं क्या, किस तरह की एक्सरसाइज?
1: बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट जब हमारे पास आते हैं, दवाई नहीं देनी है हमने पहले एक्सरसाइज देनी थी। एक्सरसाइज इंक्लूड योगा, योगा के साथ एक्सरसाइज जिससे आपका हार्ट रेट बढ़े, एक्सरसाइज जिससे आपको पसीना आए, जिससे आपकी कैलोरीज बर्न हो। तो खाली योगा नहीं, योगा के साथ ऐसी एक्सरसाइजेज जिसके आपसे आपका हार्ट रेट बढ़े, एरोबिक एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं हम
0: जी,
1: ना?
0: जी।
1: साथ में योगा इज गुड बिकॉज योगा से मसल बनती है, तो अगर मसल बढ़ाओगे तो आपका फैटी लिवर जल्दी जाएगा।
0: जी बिल्कुल। क्या पतले लोगों को भी, जो बहुत दुबले पतले होते हैं, उनको भी फैटी लिवर होता है?
1: हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट उनको जो फैटी लिवर होता है वो और नुकसान डेंजरस होता है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं।
0: जी।
1: पहले हमको लगता था कि जिसका वेट ज्यादा उनको ये बीमारी होती है, पर अगर आप देखा जाओ कंट्रीज लाइक जापान जहाँ पे लोग काफी पतले हैं, पर उधर इंसिडेंस ऑफ फैटी लिवर बहुत ज्यादा है, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। जो हमें लगता है कि हम सब, जैसे इंडियन पॉपुलेशन को ले लो, सारे सॉर्ट ऑफ दुबले पतले, पतले हाथ पतले पैर होते हैं, मगर जो मेन फैट होता है वो बेली में होता है, मेरे जो तोंद जो बोलते हैं सबकी निकल आती है, वो फैट इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो आपका हाथ पैर पतला होगा, आप पतले लगोगे, मगर अगर आपका स्कैन करेंगे हम, सीटी स्कैन एमआरआई, तो पूरा फैट है वो पेट के अंदर आएगा, एंड दैट इज अ फैट विच इज अ मोस्ट डेंजरस फैट। तो इसको लीन नैश बोलते हैं। ये पेशेंट्स को भी फैटी लिवर के साथ सिरोसिस होने की संभावना ज्यादा होती है।
0: जी जी जी। और पेट के इन्फेक्शन के बारे में बताइए कि क्यों इन्फेक्शन होता है? किसी किसी को बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार लूज मोशन, कई कई बार लूज मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: अगेन लॉट ऑफ इट इज हमारी इम्यूनिटी कैसी है, हम क्या कैसा खाना खा रहे हैं। जैसे मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ जिनको लूज मोशन दोबारा दोबारा होता है, मेक श्योर आप कुक्ड खाना खाओ, साफ सुथरा खाना खाओ। हाँ। अगर आप बाहर रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो अवॉइड द चटनी, समोसा खा लो या जो भी खाना है, रोटी सब्जी खा लो, पर सलाद मत लो। बट अगर ये इमोशन दोबारा दोबारा होता रहे, दैट कुड मीन अ साइन ऑफ अदर मेडिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पेट के इंटेस्टाइन के अल्सर हो सकते हैं, एक तरह की बीमारी बोलते हैं आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें इंटेस्टाइन में और बड़ी आंतरी में छाले होते हैं, उसे दोबारा दोबारा लूज मोशन हो सकते हैं, कभी ब्लीडिंग हो सकता है। कई फूड एलर्जीज होते हैं जिसके कारण नौजिया, वॉमिटिंग, लूज मोशन हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा सीलैक डिजीज, ग्लूटेन एलर्जी। तो अगर ये सिम्टम्स थोड़े दिन तक रहे तो वी कैन मैनेज, पर अगर ये दोबारा दोबारा होते रहे तो मेक श्योर यू सी योर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और थोड़ा बेसिक चेकअप कराओ कि कोई और बीमारी ना हो, जिसको ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग होती है।
0: जी जी। और एक बात डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि जो अमूमन एक्सरसाइज से सेहत अच्छी होती है, लेकिन पेट की एक्सरसाइज खास तौर से जो योगा करते हैं उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो पेट की बहुत फास्ट फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, पेट को फुलाना पचाना, ये कहाँ तक कारगर है, सही है या गलत है?
1: हाँ, इसमें भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि रिगरस स्टमक की एक्सरसाइज करना भी अच्छी नहीं है। पेट की जो हमारी लाइनिंग है उसमें दो बड़े मसल्स होते हैं, वो मसल्स को अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेच करो तो आगे जाके वो वीक हो जाते हैं और मसल के बीच का जोड़ निकल जाता है और हर्निया होने के रिस्क होते हैं, पेट बाहर आ जाता है ज्यादा उल्टा। तो यू हैव टू बी केयरफुल, जो भी एक्सरसाइज करो ध्यान से करो, अंडर सुपरविजन करो, सही तरीके से करो। अगर उसको ठीक से नहीं करोगे, ज्यादा जोर लगाओगे पेट पे, तो हर्निया होने का रिस्क ज्यादा होता है।
0: जी, तो

0: की एक्सरसाइज से पाचन क्रिया पर फर्क पड़ता है?
1: बिल्कुल पड़ सकता है
0: जी। और डाइजेशन सही रखने के लिए कुछ है ऐसी कारगर दवा, कोई इलाज है लोगों के? क्योंकि हर कोई कहता है कि मुझे तो खाना पचता ही नहीं है, क्या करें?
1: हाँ, तो ये जो खाना पचता नहीं है इसके लिए पूछना पड़ता है पेशेंट को, क्यों नहीं पच रहा है? हाँ। बोले हमको खाना पचता ही नहीं है, पर उनको कॉन्स्टिपेशन होती है, कब्जियत होती है। तो मेरा मानना होता है कि खाना आपको बहुत अच्छा पच रहा है, पूरा खाना आपने डाइजेस्ट कर लिया, आपको तो कॉन्स्टिपेशन हो गई है। जिसको नहीं पचे मतलब उसको लूज मोशन हो रहे हैं, तो पूछना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है। पचना नहीं पचना इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, पेशेंट का जो आउटलुक होता है वो अलग होता है, पच नहीं रहा है तो मोस्ट टाइम्स ये पेशेंट का मतलब होता है या तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है या उनको एसिडिटी हो रही है। तो उसको बेसिक प्रॉब्लम्स को ट्रीट करो। अगर कॉन्स्टिपेशन है तो फाइबर बढ़ाओ खाने में, पानी बढ़ाओ। मोस्ट टाइम्स हमने देखा है डाइट में स्पेशली यंग किड्स पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी नहीं पीते हैं कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी नहीं पियो तो और तकलीफें होती हैं, डिहाइड्रेशन होता है, फिर से कॉन्स्टिपेशन होती है, फिर खाना नहीं खाते, तो इट्स अ विशियस साइकिल। तो आई थिंक बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशन, वाटर इनटेक, गुड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को कहता हूँ कि जो आपकी प्लेट है ना खाने की वो कलरफुल होनी चाहिए। मतलब पेट में आपके दो तरह की भाजियां हो जाए, एक रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, रोटी हो जाए, वो कोई भी गेहूं की ले लो, जवार की ले लो, थोड़ा सा राइस लो, दाल ले लो, एंड इफ यू नॉन वेजिटेरियन एक छोटा सा मीट का पोर्शन हो जाए, बट योर प्लेट शुड बी कलरफुल।
0: लेकिन अभी एक चलन चला है कि या तो एक अन्न खाओ, चावल खाओ या रोटी खाओ, तो कुछ लोग ये भी करते हैं कि सिर्फ कढ़ी चावल खा लिया, सिर्फ दाल चावल, तो इससे बचना चाहिए।
1: बिल्कुल, इसमें तो खाली कार्बोहाइड्रेट खाया आपने, प्रोटीन तो बहुत मिनिमम हो गया।
0: तो बिल्कुल। और डॉक्टर साहब यहाँ पर एक गाना सुनते हैं, फिर हम आगे और बढ़ते हैं।
1: एक और गाना जो मुझे काफी पसंद है, बहुत पुरानी पिक्चर है, रॉकी पिक्चर का, क्या यही प्यार है। ये गाना क्वाइट फेमस मेरे स्कूल के टाइम पे
0: जी,
1: काफी सुना है हमने
0: जी।

0: डॉक्टर साहब बीच में एसिडिटी की बात कर रहे थे जो बहुत बड़ी समस्या है, वहां पर एक बात रह गई थी वो ये कि कहीं एसिडिटी की वजह से, एसिड रिफ्लक्स की वजह से बीमारी को थोड़ी असावधानी हो या तो कहीं कैंसर का रूप भी लेती है वो?
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, जलन हो रही है और आप दवाई नहीं ले रहे ठीक से या आपने इसका इलाज ना किया हो, तो जो एसिड होता है वो तेजाब है बेसिकली, ऊपर आके खाने की पाइप को जलाते रहता है, जला जला के फिर आगे एक अल्सर बनाता है और यही अल्सर आगे जाके कैंसर भी बन सकता है जिसमें खाने की पाइप का कैंसर हो जाता है और खाने की पाइप छोटी हो जाती है और अटकने लगता है। इसके लिए मैंने पहले कहा था अगर खाना अटक रहा हो तो एंडोस्कोपी करना बहुत जरूरी है। अनकंट्रोल्ड एसिड रिफ्लक्स कैन लीड टू कैंसर इन द फूड पाइप।
0: जी, और ये जो एसिडिटी की समस्या, एसिड रिफ्लक्स, इसके लिए एक तो आपने एंडोस्कोपी बताया जांच, और क्या क्या जांच की पद्धति है, क्योंकि अभी तो टेक्निक बहुत एडवांस हो चुकी है, हमारे श्रोताओं को जानकारी
1: दीजिए। तो बेसिक एंडोस्कोपी तो सेम रही है, एंडोस्कोपी टेक्निक काफी सेम ही है, जिस तरीके से हम देखते जो इमेजिंग होती है वो चेंज हो गई है। अभी काफी हाई डेफिनेशन मॉनिटर्स हैं, 4K मॉनिटर्स हैं, हम हमारे एंडोस्कोपी के टाइम पे एक बटन दबाते हैं जिससे लाइट चेंज हो जाती है, हमको और बेटर दिखता है। हमारे मशीन्स पे अभी AI भी लगना शुरू हो गया है, जो अगर हम सपोज ब्लिंक कर रहे हैं, हमने लेफ्ट और राइट देख लिया एक सेकंड के लिए, पर वो मशीन पकड़ लेती है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है और रुक जाती है और हमको कहती है कि यहाँ पे ठीक से देखो। ये एक सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो गई AI इन एंडोस्कोपी। दूसरा, अगर एंडोस्कोपी नॉर्मल है, हमको कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम कभी कभी खाने की पाइप का प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, उसको मैनोमेट्री बोलते हैं, छोटी सी पाइप डालते हैं नाक से पेट में और वो पूरे खाने की पाइप के प्रेशर मेजर करती है, क्या प्रेशर की प्रॉब्लम है जिसके कारण खाना आगे नहीं जा रहा है या रिफ्लक्स कर रहा है। और फिर लास्ट एक और टेस्ट है जिसमें हम खाने के पाइप में पाइप डाल देते हैं और पाइप के साथ पेशेंट घर चले जाता है और जब उसको एसिडिटी लग रही हो रहा है वो बटन दबाता है और विद इन 24 to 48 hours हम वो पूरे खाने के पाइप का टेस्टिंग करते हैं कि कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। पेशेंट जो कह रहे हैं कि हमको एसिड रिफ्लक्स है, जरूरी नहीं है वो एसिड रिफ्लक्स, वो खाली एक सिम्टम हो सकता है, तो उसको 24 hour pH मैनोम pH probe बोलते हैं जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं कि एक्चुअली एसिड ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देयर आर मेनी अदर वेज टू डिटेक्ट द एसोफेगस।
0: जी, तो इतनी सारी इलाज की और जांच की सुविधाएं हैं, तो मेरे ख्याल से तकलीफ हो तो सीधे डॉक्टर के पास जाना चाहिए अपनी अटकलें लगाने के बजाय। डॉक्टर साहब, एक पेट संबंधी एक बीमारी है जो कॉमन हो रही है आजकल, कोलाइटिस, ये क्या है, कौन सी बीमारी है और इससे क्या तकलीफें होती हैं?
1: तो कोलाइटिस बेसिकली एक ब्रॉड टर्म है, कोलाइटिस मतलब बड़ी आंतड़ी में कुछ इशू है। अभी वो इशू अगर लूज मोशन हो तो उसको भी लोग कोलाइटिस का नाम दे देते हैं। जो बीमारी हमको डिटेक्ट करनी है उसको IBD बोलते हैं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, जिसमें बड़ी आंतड़ी कोलन के अंदर छाले होते हैं और लूज मोशन और ब्लीडिंग होता है, तो उसको IBD बोलते हैं। ये जानना जरूरी है कि आपको कोलाइटिस IBD वाली है कि नहीं, क्योंकि

0: आईबीडी की कोलाइटिस है तो ट्रीटमेंट उसकी लाइफ लॉन्ग रहती है, ये इम्यून मीडिएटेड डिसऑर्डर है, अगर इसको ट्रीटमेंट नहीं करो तो आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। जो दूसरी कोलाइटिस होती है वो नॉन स्पेसिफिक कोलाइटिस होती है, मतलब हमको लूज मोशन हो गए और लूज मोशन बीच में होते रहते हैं और उसको नाम दे दिया कोलाइटिस, बट दैट इज नॉट रियली अ डिजीज, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ इरिटेबल बाउल सिंड्रोम ओनली। तो जानना कि आपको अल्सर वाली कोलाइटिस है कि नॉन अल्सर वाली कोलाइटिस बहुत जरूरी है।
1: तो मतलब डॉक्टर के पास संपर्क करें, यही ज्यादा बेहतर होता है। और अब डॉक्टर साहब एक गाना सुनते हैं पहले,
0: शायद मेरी शादी का ख्याल
1: सुनते हैं डॉक्टर साहब ये गाना।

0: कसम है ना?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
0: हाँ,
1: तेरी कसम आऊंगा।
2: अब डॉक्टर साहब बताइए कि आईबीएस और फैटी लिवर, एसिडिटी, जो पेट संबंधी ये जो बीमारियां हैं, बड़ी महत्वपूर्ण बीमारियां हैं, इनसे बचने के लिए किस तरह की अवेयरनेस रखें, किस तरह की सजगता रखें और क्या सावधानी बरतें हमारे श्रोता?
3: तो ये जितनी भी ये बीमारियां, आई थिंक ये अवेयरनेस घर से शुरू होती है, बचपन से शुरू होनी चाहिए। एज ग्रोइंग अप एज अ किड, हमारे घर में एजुकेशन होनी चाहिए अबाउट डाइट। आई थिंक डाइट सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट अगर कोई सीख है वो डाइट है, कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, फैट क्या होता है। ये तीन बेसिक पिलर्स हैं हमारे लिए जिसके ऊपर हम खाना खाते हैं। कितना प्रोटीन खाना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट खाना चाहिए, कितना फैट खाना चाहिए। सो डाइट इज वन पिलर ऑफ हेल्थी सोसाइटी, हेल्थी पेट की गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिकल इश्यूज के लिए। सेकेंड पिलर इज एक्सरसाइज एंड न्यूट्रिशन। आई थिंक न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेस्ड ऑन व्हाट आई टोल्ड एंड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करोगे तो पेट की काफी बीमारियां अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, स्पेशली फैटी लिवर, आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, एसिड रिफ्लक्स डिजीज। द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन। कब आपको टेस्टिंग करनी चाहिए, कब आपको डॉक्टर को देखना चाहिए। तो अगर ये तीन पिलर्स हम करें, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर, ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
2: जी डॉक्टर साहब, हमने कई लोगों को ये सुना है कहते हुए कि सिर दर्द हो रहा है और सिर दर्द की दवा न लेके एसिडिटी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है, या उल्टी की दवा लेते हैं तो सिर दर्द ठीक हो जाता है। तो मुझे बहुत अचरज हुआ कि उल्टी की दवा लेने से सिर दर्द कैसे ठीक हो गया, ये क्या समस्या है?
3: ये बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि ये पेशेंट जब हमारे पास भी आते हैं कि अगर मेरे को एसिडिटी हो गई और सिर दर्द हो गया है और एसिडिटी की दवाई लो तो मेरा सिर दर्द चले जाता है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट पेशेंट्स को माइग्रेन होता है, बेसिकली खाना खाया नहीं होता टाइम पे, स्ट्रेस होता है, हेडेक शुरू हो जाती है, तो एसिडिटी की दवाई लो तो एसिडिटी चली जाती है, पर फॉर सम रीजन द स्ट्रेस गोज डाउन एंड द माइग्रेन ऑल्सो गोज अवे। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट कि इनको माइग्रेन है कि नहीं। तो फर्स्ट पार्ट आपका सवाल था कि हेडेक होती है पर एसिडिटी की दवाई लो हेडेक चली जाती है, तो ये मैंने अपनी सारी किताबें छांट लिए, मुझे इसका जवाब किधर नहीं मिला। ये मैंने बाहर कभी नहीं देखा, ये मैंने इंडियन पेशेंट्स में ही देखा है कि एसिडिटी की दवाई लो मेरी हेडेक चली गई है।
2: जी, जी।
3: तो आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन फॉर इट, बट जब मैं पेशेंट्स मेरे पास ये कंप्लेन लेके आते हैं ना, तो मेरा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइग्रेन ना हो।
2: ओके,
3: माइग्रेन कैन ट्रिगर बोथ एसिड रिफ्लक्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड हैव हेडेक्स। माइग्रेन को ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट ने बहुत देर तक खाना ना खाया हो, इसके लिए एसिडिटी हो। अगर हम खाना स्किप करें तो हमारी शुगर्स कम होगी तो अपना हेडेक शुरू हो जाएगी ना, तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी बिकॉज ऑफ स्किपिंग मील्स। इसके लिए आपको एसिडिटी हो रही है, इसके लिए आपको हेडेक हो रहा है।
2: जी, हमने भी कई बार एक डॉक्टर से और पूछा था ये सवाल, तो उन्होंने कहा था नहीं, सिर दर्द और एसिडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने
3: कुछ तो है, देयर इज सम कोरिलेशन बिटवीन डाइट, नॉट ईटिंग ऑन टाइम, एसिडिटी एंड हेडेक्स।
2: जी, पर आजकल ये समस्या बहुत हो रही है लोगों में कि स्टमक अपसेट होता है तो सिर दर्द होने लगता है। तो माइग्रेन अगर किसी को है मान लीजिए, तो किस डॉक्टर के पास जाना चाहिए?
3: अगर माइग्रेन है तो वी शुड सी अ न्यूरोलॉजिस्ट, जो ब्रेन के डॉक्टर होते हैं, बिकॉज बहुत ध्यान से देनी पड़ती है, क्योंकि सम ऑफ द माइग्रेन मेडिसिन कैन कॉज एसिड।

0: तो अगर आपको एसिडिटी ऑलरेडी है तो माइग्रेन स्पेशलिस्ट को जब देखोगे तो यू हैव टू टेल कि आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो दे मेक श्योर दे गिव एन एंटासिड उसके साथ।
1: जी जी जी। और हम फैटी लिवर के बारे में बात कर रहे थे कि फैटी लिवर जिनको होता है, जिन पता चल जाता है, तो कई बार ऐसा लगता है कि कुछ लोग बहुत अल्कोहल लेते हैं या धूम्रपान करते हैं, सुपारी खाते हैं, तो क्या ये एक बड़ी वजह है फैटी लिवर की?
0: बिल्कुल
1: तो,
0: बिल्कुल।
1: या फिर जो लोग नहीं लेते हैं उन्हें भी होता है? तो
0: हाँ, तो अगर आप लिवर का टुकड़ा ले लो और फैटी लिवर है सपोज किसी को, वो लिवर का एक पीस निकाल के पैथोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो पैथोलॉजिस्ट आपको बोल नहीं पाएगा, कह नहीं पाएगा कि ये पेशेंट अल्कोहल पीने के कारण फैटी लिवर हुआ है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। दोनों सेम चीज करते हैं। अगर आप अल्कोहल ना पियो, आपकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक ज्यादा हो, तो लिवर में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट फैट की तरह डिपॉजिट हो जाता है। अल्कोहल इज ऑल्सो लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, वो भी सेम चीज होता है। एक्सेसिव अल्कोहल पीने से लिवर के अंदर फैट करके डिपॉजिट हो जाता है। तो ओनली वे हम अलग कर पाते हैं कि अल्कोहल है नॉन अल्कोहल, पेशेंट को पूछ के, हिस्ट्री के ऊपर। तो अगर आपको फैटी लिवर ऑलरेडी है तो अल्कोहल आपको जरा भी नहीं पीनी चाहिए। वैसे भी अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए बिकॉज इट इज अ ग्रेड वन कार्सिनोजेनिक, मतलब अल्कोहल कैन कॉज कैंसर्स नॉट ओनली ऑफ द लिवर बट ऑल्सो ऑफ द माउथ, द फूड पाइप, द स्टमक एंड अदर ऑर्गन्स। तो अगर आपको ऑलरेडी एक बीमारी है तो आप उस पर दूसरी बीमारी क्यों डालोगे? धूम्रपान टबैको सेम चीज, धूम्रपान टबैको करने से एसिडिटी ज्यादा होती है, ऑलरेडी एसिडिटी से अल्सर होके कैंसर होने की संभावना ज्यादा है, उसके ऊपर से आप धूम्रपान करो, तंबाकू खाओ, तो ये प्रॉब्लम काफी बढ़ सकती है। अल्कोहल और फैटी लिवर गो हैंड इन हैंड। अगर आप अभी न्यू जो हमारा सिस्टम है जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट को फैटी लिवर है कि अल्कोहलिक लिवर डिजीज है, तो एक बीच का भी आता है समथिंग कॉल्ड मेट एएलडी, मतलब जहां पे अल्कोहल भी थोड़ा है, फैट भी थोड़ा है और दोनों बीमारियां पड़ रही हैं। ये सबसे डेंजरस है बिकॉज ऑलरेडी एक बीमारी चल रही है, आपने दूसरी बीमारी डाली है, तो ये जल्दी लिवर सिरोसिस और लिवर को खराब करती है। तो फैटी लिवर पेशेंट शुड नॉट बी टचिंग अल्कोहल।
1: जी जी। डॉक्टर साहब, लिवर संबंधी और कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं जिसके लिए सजग रहना चाहिए श्रोताओं को?
0: तो जो इंडिया में सबसे कॉमन है वो है हेपेटाइटिस बी, एक वायरस होता है जो इंडिया में बहुत कॉमन है, सर्टेन एरियाज ऑफ इंडिया में तो बहुत ही कॉमन है। तो इसका एक सिंपल ब्लड टेस्ट आता है हेपेटाइटिस बी का, इसके हम काफी कैंप्स करते हैं। आप एक सादा ब्लड टेस्ट हेपेटाइटिस बी का करो, अगर आपका हेपेटाइटिस बी नेगेटिव आया है तो आपको इसकी वैक्सीन ले लेनी चाहिए। दिस इज अ ट्रीटेबल कॉज ऑफ लिवर इंजरी हेपेटाइटिस बी। बाकी और भी वायरसेस होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए होता है, हेपेटाइटिस ई होता है, ये बेसिकली रेनी सीजन में हमको ज्यादा दिखता है जब वाटर कंटेमिनेशन होता है, फीको ओरल कंटेमिनेशन बोलते हैं, खान पान साफ नहीं होता है, तब ये वायरस होता है, लिवर पे इंजरी करता है पर आके चला जाता है। हेपेटाइटिस ई ज्यादा हम प्रेगनेंसी में देखते हैं, हेपेटाइटिस ए कैन बी सीन एनी टाइम। एक और तरह का वायरस होता है हेपेटाइटिस सी, ये अभी हम कम देखते हैं, फॉरेन में ज्यादा देखते हैं, इंडिया में कम दिखता है। ये बेसिकली ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है या कोई नीडल इंजरी से या कभी कभी सेक्सुअली भी होता है। हेपेटाइटिस सी की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो मेरा मानना है कि ये वायरस इंजरीज हैं, ये लिवर को होती हैं, ये प्रिवेंटेबल डिजीजेज हैं। हेपेटाइटिस ए का वैक्सीन आता है, हेपेटाइटिस बी का आता है और अभी हेपेटाइटिस ई का भी वैक्सीन आ गया है। तो अपने टेस्ट कराइए, अगर नेगेटिव है तो आप सब वैक्सीन लीजिए ताकि ये बीमारी ना हो। ये कॉमन इंजरी है लिवर की। तो फैटी लिवर हमने बोला, अल्कोहलिक लिवर इंजरी बहुत कॉमन है, अल्कोहल पीने के कारण लिवर फेल है वो तो हम जानते ही होता
1: जी,
0: है
1: जी,
0: ये कॉमन है। वायरसेस कॉमन है, फिर बाकी की जो लिवर की इंजरीज हैं वो काफी रेयर होती हैं। लास्ट चीज मैं कहूंगा गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में पथरी होती है, वो भी लिवर के नीचे ही बैठती है, उससे भी कभी कभी लिवर को इंजरी होती है। अगर वो लिवर की पथरी स्लिप हो जाए, लिवर की ट्यूब में आके फंस जाए, तो उससे भी जॉन्डिस हो सकता है। तो ये कॉमन लिवर की बीमारियां, गॉल स्टोन्स, अल्कोहल, फैटी लिवर एंड वायरसेस।
1: जी, आपने गॉल ब्लैडर का जिक्र किया तो मेरे जहन में ये बात है कि कई बार जो उल्टी होती है तो क्या गॉल ब्लैडर में स्टोन है, ये भी वजह होती है क्या?
0: बिल्कुल हो सकती है। कभी कभी पेशेंट को पेट में थोड़ा दर्द होता है, वॉमिटिंग शुरू हो जाती है, स्पेशली फैटी फूड खाके, तला हुआ खाके, दिस इज अ साइन कि आपका शायद गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम है। इसके लिए मैंने कहा था पहले भी कि अगर पेट का दर्द जारी रहे तो इन्वेस्टिगेशन करनी जरूरी है, एक सोनोग्राफी करेंगे उसमें ये पकड़ा जाएगा आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं।
1: जी जी। और गॉल ब्लैडर अगर ऑपरेट करके निकाला जाए तो उसके कुछ आगे चलकर मरीज को कुछ तकलीफ होती है?
0: नहीं, जरा भी नहीं। गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स ऐसे दो चीजें हैं जो निकाल के मोस्ट पेशेंट्स को कोई तकलीफ नहीं होती, लाइफ नॉर्मल कटते रहती है।
1: ये बहुत बड़ी गलतफहमी लोगों में होती है।

0: दूर हुई। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए कि जो आईवीएस की समस्या है वो भी बहुत कॉमन है, अमूमन लोगों को ये होता है, ये जिसको सिकनेस ही बोलते हैं हम लोग, कि यात्रा पर जाना है तो जैसे वोमिटिंग सेंसेशन होने लगा या बार बार मोशन के लिए जाना पड़ता है, तो इसकी वजह क्या होती है? एक तो स्ट्रेस आपने बताया था, तो आंतों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम है क्या ये?
1: हाँ, ये बेसिकली मन और आंतों के कनेक्शन की प्रॉब्लम है। अगर हमको पता हो हमको जाना है किधर, तो वो स्ट्रेस ऑफ गोइंग आउटसाइड, उसके कारण हमको लगता है कि मोशन करना चाहिए, और मोशन जाते हैं। तो अगर सपोज लूज मोशन की इशू है, तो कई मेरे पेशेंट है जो अगर अपने मन को नहीं शांत कर पा रहे या नहीं कर पा रहे ठीक, तो हम एक एंटी डायरियल दे देते हैं दवाई, कि अगर आपको ट्रैवल करना है तो एक गोली ले लो जाने के पहले। अगर वॉमिटिंग इज अ प्रीडोमिनेंट प्रॉब्लम तो एक वॉमिटिंग की दवाई लेते हुए जाओ। एसिडिटी प्रॉब्लम है तो एक एसिडिटी की दवाई खाते हुए जाओ, ताकि आपके जर्नी ठीक जाए, पहुंच जाओ जहां पहुंचना है। तो बेसिकली इट इज टू डू विद, आई वुड नॉट से वीक इंटेस्टाइन्स बट सेंसिटिविटी, दिस इज ऑल टू डू विद सेंसिटिव, हमारा पेट सेंसिटिव है बहुत।
0: तो इस समय आईबीएस की समस्या से जब ग्रसित हो तो क्या फूड लेना चाहिए मरीज को? मतलब सॉलिड फूड खाना चाहिए या लिक्विड या पानी या कुछ नहीं?
1: नहीं, ऑलवेज लिक्विड तो लेना ही चाहिए ताकि वो कीप वेल हाइड्रेटेड, बट जो इजी डाइजेशन हो, जैसे कच्ची चीजें नहीं खानी चाहिए, कच्चा सलाद हो गया, यू नो फ्रूट, ज्यादा पत्ते वाली भाजी अवॉइड कर लो ट्रैवल में, कुक्ड फूड खाओ, राइस इजी होता है, दाल राइस खिचड़ी इजी है डाइजेस्ट करने के लिए, पानी अच्छे से पियो, छाछ पियो ताकि वो वेल हाइड्रेटेड।
0: और क्या उस समय आंतों में स्वेलिंग आई होती है आईबीएस?
1: एक्चुअली आईबीएस में कुछ नहीं आया होता, आईबीएस इज अ सेंसिटिव थिंग। अगर आप स्कैन करके देखो, एंडोस्कोपी करके देखो, तो सारा नॉर्मल होता है। इट इज अ सेंसिटिविटी थिंग, इट्स अ पेट और माइंड का प्रॉब्लम है ये।
0: ओके, अब चलते चलते एक गाना सुनवाइए हमारे श्रोताओं को, बताइए कौन सा गाना सुनवाए।
1: चले चलो, ये गाना सुना है, चले चलो।
0: चले चलो लगान का,
1: लगान का,
0: लगान फिल्म का गाना चले चलो।

डॉक्टर साहब आजकल फैशन में है कि लिवर की बीमारी के लिए लिवर डिटॉक्स कुछ पाउडर मिला के घोल बनाए पी लिया, और बहुत सारे बीज

0: का प्रचार हो रहा है, ये बीज वो बीज बना के घोल के पी लो, तो ये सब कितने कारगर होते हैं मरीज के लिए, चाहे वो पेट की जितनी समस्याएं हैं।
1: तो जैसे आपने कहा ना, एज अ ह्यूमन हम हमेशा चाहते हैं कि सबसे सिंपलेस्ट वे ले लो बार। सिंपलेस्ट वे क्या होता है कि कोई बोल दे ये तेल अच्छा है ये ले ले इससे मैं ठीक हो गया, या कोई बोले कि ये गोली खा लो गोली से आप ठीक हो जाओगे। बट जो रियल वे है, जैसे वेट लॉस करना, एक्सरसाइज करना, डाइट पे कंट्रोल करना, अपने मन पे कंट्रोल करना, अगर ये आप कर पाए तो ये सब नुस्खों की जरूरत नहीं है। और वी नो कि ये सब चलते नहीं है, कोई नुस्खा चलता नहीं है। वेट लॉस एक्सरसाइज का कोई शॉर्टकट नहीं है, खाना अच्छा खाना, टाइम पे खाना, अवॉइड टेकिंग सप्लीमेंट्स, अवॉइड टेकिंग आयुर्वेदिक हर्बल मेडिसिन, क्योंकि हमको पता है कि हर्बल मेडिसिन आर नॉट रेगुलेटेड। अगर आपको कोई दवाई दे जो हमारे फार्मेसी में बनती है, जब रेगुलेटेड दवाई है, आपको पता है कि एक 500 ml पैरासिटामोल है, 500 ml पैरासिटामोल है। जो आप जड़ी बूटियां लेते हैं या जो आयुर्वेदिक दवाई लेते हैं, मोस्टली दे आर डार्क इन कलर बिकॉज उसमें भस्म होता है, मेटल्स होते हैं, आपको पता नहीं उसके अंदर क्या है।
0: और
1: स्टेरॉइड भी आता है, और ऐसी कोई चीज आप अपने मुंह में डालोगे और स्वालो करोगे, इंजेस्ट करोगे, उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे किसी को नहीं पता। मेडिसिन में एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि इट हैज टू बी टेस्टेड एंड ट्राइड। मतलब आपने ये दवाई लोगों को दी है, इनको देखे, फिर फॉलो किया है, फिर देखा है कि इसका फर्क पड़ रहा है कि नहीं, देन वी मेडिसिन को अप्रूवल मिलती है। इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग प्रोसेस। एक एक दवाई जो अभी इजिली मिल जाती है उसके पीछे बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च होती है। तो ये जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो बोलते हैं, जो आजकल नेचुरोसूटिकल्स करके बिकते हैं, जो बहुत फैशन में है अभी, उस पर कोई डेटा नहीं है। और वर्स्ट कम टू वर्स्ट, हमको ये नहीं पता कि उसका साइड इफेक्ट्स आगे जाके क्या हो गए। तो अगेन, बी सिंपल, लिव अ सिंपल लाइफ, एक्सरसाइज, ईट राइट, इट इज अ लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम। अगर अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करोगे, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स विल गेट सॉल्व्ड।
0: डॉक्टर साहब, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और इतनी ढेर सारी पेट संबंधी बीमारियों की जानकारी दी, जो बहुत जरूरी जानकारियां हैं, और हमें उम्मीद है कि श्रोताओं को बहुत फायदा पहुंचेगा। आपका तहे दिल से शुक्रिया। विविध भारती परिवार की ओर से नमस्कार।

0: एक बेटी की यादों में उसके पिता
1: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है। उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
0: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
1: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है।
0: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
1: हम लोग बम्बई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
0: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
3: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पर मेहनत किया।
2: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। इस समय शाम के 5 बजे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का कार्यक्रम युवाणी।

दोस्तों के साथ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी धरती का एक हिस्सा ऐसा है जहां हरियाली, जीव जंतु और प्राकृतिक संपदा भरपूर मात्रा में मिलती है। इन्हीं क्षेत्रों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में हमारी पृथ्वी सबसे सुंदर और सबसे समृद्ध रूप में दिखाई देती है। इन सुंदर और समृद्ध क्षेत्रों के महत्व को समझाने के लिए हर साल 29 जून यानी आज के दिन को अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों, इसी संबंध में चर्चा करते हैं अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस के महत्व के बारे में। दोस्तों, आज के यह दिन का महत्व हम सबके साथ साथ युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन का मुख्य उद्देश्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की असाधारण विविधता और महत्व का जश्न मनाना तथा इन देशों के सामने आने वाले जलवायु परिवर्तन, गरीबी और जैव विविधता के नुकसान जैसी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों, इस बारे में विस्तार से जानने के लिए आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बातों के द्वारा। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पृथ्वी की लगभग 80% स्थलीय जैव विविधता और 95% मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र मौजूद है। इस दिवस इन संवेदनशील और समृद्ध पर्यावरण प्रणालियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है। इसके साथ साथ यह दिन गरीबी, कुपोषण और अनियोजित शहरीकरण जैसी समस्याओं को उजागर करता है। यह दिवस वैश्विक तापमान को नियंत्रित करने और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। हमें यह सिखाता है कि हमें इन क्षेत्रों की रक्षा, विकास और संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए यह प्रकृति सुरक्षित रह सके। तो आइए साथियों, आइए हम सभी मिलकर आज प्रकृति की रक्षा का संकल्प लें, पेड़ लगाएं, पानी बचाएं और पर्यावरण स्वच्छ रखकर अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय दिवस को सार्थक बनाएं। चर्चा हम आगे यूं ही बरकरार रखेंगे, पर उससे पहले साथियों आपको सुनवाते हैं फिल्म आक्रोश से जावेद अली की आवाज में ये गीत।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को आपकी अपनी युववाणी होस्ट और दोस्त पिंकी का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जिसमें होगी आज की चर्चा और साथ ही कराएंगे मनोरंजन, कुछ फिल्मी गीत।

0: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
1: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
2: लग जा गले के फिर हसी रात।
0: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
1: तेरी मेरी गल आए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
2: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज के डिजिटल युग में स्टार्टअप युवाओं के लिए अपने सपनों को साकार करने और आत्मनिर्भर बनने का सुनहरा अवसर है। इसलिए दोस्तों आज हम अपनी चर्चा के माध्यम से जानकारी देंगे युवाओं के लिए कुछ स्टार्टअप अवसर के बारे में। दोस्तों युवाओं के लिए स्टार्टअप अवसर आज के समय में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। यह न केवल रोजगार पाने का बल्कि खुद को रोजगार देने का भी एक बेहतरीन तरीका है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कंटेंट बनाना, चैटबॉट विकसित करना, डेटा एनालिटिक्स करना, सेवाएं देना बेस्ट स्टार्टअप आइडिया है। इसके अलावा दोस्तों प्लास्टिक के विकल्प बनाना, ई कचरा

0: प्रबंधन या अपशिष्ट पदार्थों को उपयोगी उत्पादों में बदलना भी आज के युवाओं के लिए करियर का एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और दोस्तों, आप आधुनिक खेती के तरीके, मिट्टी की जांच या जैविक उत्पादों की सीधे ग्राहकों तक आपूर्ति करके इसे स्टार्टअप के रूप में चुन सकते हैं और अपनी विशेषज्ञता के अनुसार डिजिटल कोर्स बनाना या छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाकर भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो साथियों, ये तो थी युवाओं के लिए स्टार्टअप के अवसर के बारे में जानकारी। इस प्रकार आप भी अपने कौशल और सोच का सही उपयोग करके स्टार्टअप के जरिए आत्मनिर्भर बनकर देश की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, चर्चा हम आगे और भी करेंगे, पर उससे पहले वक्त हो गया है फिल्मी गीतों का। तो आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म गदर एक प्रेम कथा से उदित नारायण की आवाज में ये गीत।
1: मैं निकला।

0: सा प्लांट है?
1: टेंजरीन, बहुत मीठा होता है, तोड़ना नहीं है।
2: फ्री फॉरेन ट्रिप, क्लिक ऑन द लिंक, अभी करता हूँ।
0: दादू रुको, लिंक में क्लिक मत करना।
2: क्यों?
0: ये SMS स्कैम है, क्लिक करोगे तो आपके बैंक डिटेल्स होंगे चोरी।
2: थैंक्स गप्पू, बचा लिया। ये रे,
1: तेरी समझदारी का फल।
3: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
4: सुनिए सुनिए सुनिए, 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 बजे तक आकाशवाणी झांसी पर।

ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपका अपने कार्यक्रम युववाणी में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे प्रेरणा स्रोत की जिन्होंने अपनी अनोखी कला के माध्यम से देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन किया। यह कलाकार कोई और नहीं बल्कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सुदर्शन पटनायक है, जो कि एक सैंड आर्टिस्ट रेत कलाकार है। ये अपनी अनोखी कला के लिए पूरे विश्व में जाने जाते हैं। इनका जन्म 15 अप्रैल सन 1977 में उड़ीसा में हुआ था। बचपन से ही उन्होंने रेत से आकृतियां बनाना शुरू कर दिया था। उस समय आर्थिक स्थिति अच्छी न होते हुए भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि सफलता के लिए महंगे साधनों की नहीं बल्कि बड़े सपनों और उन्हें पूरा करने की लगन की जरूरत होती है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर मेहनत ईमानदारी से की जाए तो एक दिन पूरी दुनिया आपके काम को पहचानती है। उन्होंने अपनी रेत कलाकारी के द्वारा कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती और भारत को गौरवान्वित किया। इनकी कला लोगों को जागरूक और प्रेरित करती है और इनकी कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल हालात सफलता में बाधा नहीं होते। मेहनत और लगन से हर सपना पूरा हो सकता है, इसलिए हमें अपनी प्रतिभा को पहचान कर उसे आगे बढ़ाना चाहिए। यदि आप निरंतर मेहनत करते हैं तो अपने सपने को साकार करके समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। उनका योगदान केवल कला तक सीमित नहीं है बल्कि समाज और युवा पीढ़ी को जागरूक करने में भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी कला और संघर्ष के जरिए समाज के प्रति जिम्मेदार और जागरूक बनने का भी संदेश दिया है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्रेरणा स्रोत सुदर्शन पटनायक के बारे में। वक्त हो गया है एक बार फिर फिल्मी गीत का, तो आइए सुनते हैं फिल्म कलयुग से राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कलयुग से राहत फतेह अली खान की आवाज में ये गीत। बढ़ते हैं अपनी चर्चा की ओर। तो दोस्तों आज के समय में दुर्घटना एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हर दिन हजारों लोग लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं या गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। ऐसे में हमारी छोटी छोटी सावधानियां ही हमें सुरक्षित रख सकती हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि हमारी सुरक्षा का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है। तो आइए दोस्तों चर्चा करते हैं वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग के बारे में। हेलमेट सिर को गंभीर चोट से बचाता है। दुर्घटना के समय यह जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है। चालक और पीछे बैठने वाले दोनों सवार को हेलमेट पहनना चाहिए। हमेशा अच्छी गुणवत्ता का हेलमेट सही तरीके से पहने। वहीं दोस्तों सीट बेल्ट दुर्घटना के समय शरीर को सुरक्षित रखता है। यह अचानक लगने वाले झटकों से बचाता है। आगे और पीछे दोनों सीट पर बैठने वालों के लिए यह जरूरी होता है। सीट बेल्ट पहनने से गंभीर चोटों का खतरा कम होता है। इसलिए हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग हमारी सुरक्षा की सबसे पहली जिम्मेदारी है। ये दोनों साधन दुर्घटना के समय हमारी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जागरूक रहकर इनका प्रयोग करना चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। यदि दोस्तों आप भी दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो सीट बेल्ट और हेलमेट का उपयोग वाहन चलाते समय हमेशा करें, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट के प्रयोग के बारे में। वक्त हो गया है एक बार फिर फिल्म संगीत का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत जो लिया गया है।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे फिल्म कबीर सिंह से अखिल सचदेवा और तुलसी कुमार की आवाज में ये बेहद प्यारा गीत। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। यदि आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए तो आप हमारा कार्यक्रम रोज शाम 5 बजे न्यूज ऑन AIR के माध्यम से सुन सकते हैं और अपने सुझाव हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज @AKASHWANIZHANSI के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। तो इसी वादे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए आपकी अपनी दोस्त पिंकी को। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी एफएम 103 पर। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नारी जगत।

0: हम फिर हाजिर हैं लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम, जिसमें होती हैं ढेर सारी जानकारियां और आप सभी के लिए गीतों का खजाना। तो चलिए देर कैसी, जल्दी से कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज बात करते हैं बहुत ही अहम मुद्दे पर, जो हमारे बच्चों की जिंदगी के लिए बहुत ही अहम है। जो कहने को तो दो बूंद दी जाती है, पर इसका असर हमारे बच्चों को पोलियो जैसी लाइलाज बीमारी से बचाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पोलियो की। इसकी दो बूंद जिंदगी की हमारे 5 साल तक के सभी बच्चों के लिए बहुत अहम है। वैसे तो हमारे देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है, पर फिर भी हर बार यह अभियान चलाया जाता है ताकि एक भी बच्चा इस बीमारी से ग्रसित ना हो। यह अभियान सन 1995 में चलाया गया था और आधिकारिक तौर पर WHO द्वारा वर्ष 2014 में हमारे देश को पोलियो मुक्त घोषित किया गया था। लेकिन आज भी हमारे आसपास के देशों में इस वायरस के संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए इस अभियान के जरिए बच्चों को पोलियो वैक्सीन की अतिरिक्त दवा बिल्कुल निशुल्क पिलाई जाती है। तो यदि आपके घर में या आपके आसपास भी कोई बच्चा है जिसकी उम्र 5 वर्ष से कम है, तो उसे यह जीवन रक्षक दवा जरूर पिलाइए, ताकि हर तरह से हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें और देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने में अपना अहम योगदान दे सकें। तो उम्मीद है श्रोता बहनों, आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगी। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
3: लब जागले के फिर हसी रात,
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है बीत।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीते कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: श्रोता बहनों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर महिला का बाहर जाकर नौकरी कर पाना संभव नहीं है। ऐसे में उन महिलाओं को जो घर और नौकरी दोनों करना चाहती हैं, उन्हें किसी एक को चुनना पड़ता है, या तो नौकरी या घर। पर अब ऐसा नहीं है। आजकल बदलते वक्त ने ऐसी महिलाओं के लिए भी कई अवसरों को जन्म दिया है, जहां पर महिलाएं अपने हुनर को, अपनी शैक्षिक योग्यता और अनुभवों के आधार पर अपना व्यवसाय या नौकरी का जरिया बनाकर घर पर ही रहकर कर सकती हैं। इससे महिलाओं को अपनी शर्तों, अपने समय के अनुसार काम करने और बेहतर तरीके से वर्क लाइफ बैलेंस करने में मदद मिलती है। आजकल बहुत सारी नौकरियां हैं जो आप अपने घर से ही कर सकते हैं, जैसे ऑनलाइन ट्यूशन। इसके जरिए आप बच्चों को ट्यूटर वीडियो कॉल वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर बैठ के पढ़ा सकते हैं। श्रोता बहनों, यदि आप अपनी रचनात्मकता और कलात्मक प्रतिभा को एक स्थिर आय में बदलना चाहती हैं, तो ग्राफिक डिजाइनर के रूप में आप घर बैठे नौकरी पा सकती हैं। आज मार्केट में हर ब्रांड की वेबसाइट, बैनर, विज्ञापन, सोशल मीडिया ग्राफिक्स का बहुत क्रेज है, तो यदि आप भी इसमें रुचि रखती हैं, तो यह अवसर आपके लिए काफी अच्छा साबित होगा। इसके अलावा आप डेटा एंट्री का काम भी घर से कर सकते हैं। आजकल तो डिजिटल मार्केटिंग के जरिए भी महिलाएं घर बैठे बैठे काम कर सकती हैं। आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां अपने सोशल मीडिया, ईमेल, वेबसाइट, ब्लॉग, ग्राहक सेवा जैसी सेवाओं के लिए और

0: अपने उत्पादों और सेवाओं के प्रचार प्रसार के लिए डिजिटल मार्केट को अपनाते हैं। तो ऐसे में आप एक डिजिटल मार्केटर के रूप में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं अपने हुनर को अपनी आय का साधन बनाना चाहती हैं, वो ऑनलाइन क्लासेज जैसे के ऑनलाइन क्लासेज चला के आय प्राप्त कर सकती हैं, जैसे फैशन डिजाइनिंग, टेलरिंग क्लासेज, क्राफ्ट क्लासेज, फूड मेकिंग क्लासेज। जो महिलाएं अच्छा खाना बना लेती हैं, वह टिफिन सर्विस या क्लाउड किचन के जरिए इसको अपनी आय का साधन बना सकती है। परंतु ध्यान रखें कि आजकल नौकरियों के लिए बहुत से लुहावने एड और विज्ञापन प्रकाशित होते हैं। ऐसे में नौकरी के लालच में ऐसे विज्ञापनों की पूरी जानकारी लिए बिना इन पर अमल बिल्कुल ना करें। श्रोता बहनों, आपने कहावत तो सुनी ही होगी, जहां चाह होती है वहां राह होती है। बस जरूरत है थोड़े से मार्गदर्शन की, जो समय समय पर हम अपने कार्यक्रम के जरिए आप सभी का करते ही रहते हैं। तो बस आप भी चाहें तो अपना रोजगार का अवसर घर पर रहकर ही पा सकती हैं। आइए सुनते हैं इस भेंटवार्ता को, जिसमें एक महिला ने घर बैठे ही अपने रोजगार के अवसर को चुना और बन गई संगीत शिक्षिका। तो मिलकर सुनते हैं इस भेंटवार्ता को, जिसमें रूपाली नाग ने बातचीत की है श्रीमती अंशुल सक्सेना जी से।
1: श्रोताओं, कहते हैं कि हौसला है तो दुनिया का कोई भी काम नामुमकिन नहीं हो सकता है। आज की महिला आत्मनिर्भर है और हर क्षेत्र में सफलता का परचम लहरा रही है। अपनी मेहनत और लगन के बल पर न सिर्फ महिलाओं ने अपने सपनों को पंख दिए हैं, बल्कि सफलता की उड़ान भी भरी है। तो आज ऐसी ही एक आत्मनिर्भर नारी श्रीमती अंशुल सक्सेना जी हमारे साथ हैं, जो कि एक संगीत शिक्षिका भी हैं। तो अंशुल जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आपका।
1: अच्छा अंशुल जी, सबसे पहला सवाल जो इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है कि कैसे शुरुआत हुई आपके संगीत के सफर की?
2: मैं बहुत छोटी थी तो गाने गाती रहती थी ऐसे ही
1: जी।
2: तो मम्मी ने सोचा कि इसको म्यूजिक में डालना चाहिए, तो मेरा शुरुआत हो गई
1: जी।
2: बस नाइन्थ से मैंने म्यूजिक ले ली थी
1: जी,
2: और नाइन्थ टेंथ इलेवन ट्वेल्थ फिर हमारे यहाँ म्यूजिक नहीं था
1: जी,
2: तो फिर मैं कानपुर आ गई
1: जी।
2: कानपुर में पीजी किया और ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, फिर वहां से लखनऊ आ गई
1: जी।
2: और लखनऊ में मैंने भातखंडे के रिटायर्ड प्रिंसिपल
1: जी
2: पंडित डॉक्टर एस एस अवस्थी जी से
1: जी
2: सीखना।
1: वही आपके संगीत के प्रथम गुरु थे?
2: प्रथम गुरु तो मेरे हमीरपुर में ही सबसे पहले थे, जिन्होंने मुझे सबसे पहले सिखाया,
1: जिन्होंने आपका संगीत से परिचय कराया
2: जी। बिल्कुल, श्री हरिदत्त शर्मा जी
1: जी,
2: जो कि इलाहाबाद में सितार के प्रोफेसर थे
1: जी जी जी,
2: और पापा के दोस्त भी थे तो वो घर आ जाते थे
1: जी जी,
2: तो उनसे मैंने सीखना शुरू किया।
1: तो आप बताया कि जैसे आपने कि ये संगीत का आपको बचपन से ही संगीत में आपको रुचि थी, तो परिवार में भी इस तरह का माहौल था? मतलब आपके परिवार में भी कोई संगीत में रुचि रखता था, जैसे आपके माता पिता या दादा दादी, कोई किसी को संगीत में इंटरेस्ट था?
2: पापा जरूर गाते थे
1: जी,
2: पर ऐसे ही।
1: अच्छा, शौकिया तौर पर?
2: शौकिया ऐसे ही बस।
1: अच्छा, तो जब आपने संगीत की जैसे आपने शिक्षा ली, संगीत में आपको रुचि थी, तो आपके जहन में ये कब आया कि मुझे इसी में अपना करियर बनाना है, मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ूंगी, और इस क्षेत्र में फिर आपको क्या क्या चुनौतियां मिली?
2: मैंने पहले से एकदम शुरू से ही मैं माइंड मेकअप करके चल रही थी
1: जी,
2: कि मुझे आगे इसी में अपने को लाना है
1: जी,
2: कुछ भी हो जाए
1: जी।
2: हमारे यहाँ लड़कियां होम साइंस लेके कर रही थी, सब कर रही थी, बट
1: हाँ जी,
2: मेरा मन म्यूजिक में ही था
1: जी,
2: तो मैंने बस नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ किया
1: जी,
2: और उसके बाद सीधे मैं सिर्फ म्यूजिक के लिए ही बाहर निकली। उसका मेरा सिर्फ रीजन ही यही था, क्योंकि मेरे यहाँ म्यूजिक नहीं था।
1: अच्छा, तो आपने पहले से ही ठान लिया था कि म्यूजिक में आपको ही करियर बनाना है? क्योंकि देखिए, अक्सर सोच ये होती है कि हम पढ़ लिख कर, कोई कहता है कि हम डॉक्टर बनेंगे या फिर हम एक नॉर्मल सब्जेक्ट टीचर बनेंगे, इस तरह की सोच हम लोगों की होती है। मेरे कहने का मतलब एक सेफ जोन, जैसे हम कहते हैं कि हम एक सेफ जोन में रहेंगे, एक जो शिक्षिका बनने का जो एक हमारा विचार है, वो एक आप सेफ एक हमारा करियर है। लेकिन आपने जिस क्षेत्र को चुना उसमें चुनौतियां बहुत है, ठीक है, उसमें मैं अगर कहूं कि

0: कॉम्पिटिटर भी बहुत है, तो क्या क्या चुनौतियां आई आपके सामने?
1: मेरा श्री हरिधर शर्मा जी ने बेस बहुत क्लियर किया था
0: जी,
1: बेस उन्होंने एकदम क्लियर मेरा रखा
0: जी,
1: जिसकी वजह से मुझे आगे जब मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे ये तो रहा कि बहुत सारे बच्चे थे उनके साथ मुझे कॉम्पिट करना था और आगे भी बढ़ना था, तो मेरा बेस क्लियर था इसलिए मुझे डर नहीं लगा किसी चीज से, और धीरे धीरे आत्मविश्वास भी आता गया
0: जी।
1: तो बस उसी को लेके जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा हुआ कानपुर में, तो फिर मैं डायरेक्ट लखनऊ चली गई
0: जी।
1: वहां पर पंडित जी से मैंने सीखा
0: जी,
1: और मुझे समझ में आया कि इसमें इतने से कुछ नहीं होगा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
0: जब आप उसे एक करियर के रूप में ले रही हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी है।
1: तो फिर मैंने कम से कम 12-13 घंटे उसकी प्रैक्टिस की
0: जी,
1: तो बस उसके बाद।
0: तो किस तरह से शुरुआत हुई फिर आपकी करियर में?
1: वहां मैंने बहुत सारे प्रोग्राम दिए लखनऊ में,
0: स्टेज शो किए हैं आपने?
1: स्टेज शो किए हैं
0: जी,
1: लेकिन मुझे लग रहा है कि जैसे शादी के बाद मेरा ज्यादा करियर ने उड़ान भरी
0: जी। ऐसा क्यों?
1: सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है
0: जी,
1: ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं, मेरा बहुत सपोर्ट किया, बट वो अलग रहते थे, दूर रहते थे और मैं लखनऊ में रहती थी तो मुश्किल हो जाता था
0: जी।
1: लेकिन यहाँ झांसी में मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ।
0: अच्छा अंशुल जी, जैसे आपने जब अपना पहला, अपना जो कला है पहली बार जब आपने श्रोताओं के सामने रखा, परफॉर्मेंस दिया, तो क्या प्रतिक्रिया मिली, आपको कैसा महसूस हुआ?
1: पहली बार मैंने हमीरपुर में ही दिया था
0: जी,
1: जहाँ की मैं हूँ
0: जी,
1: और मैंने एक बॉयज कॉलेज में दिया था
0: जी,
1: वहां पहले खूब सारी वो ऐसा लग रहा था कि बस अब गुब्बारे पड़ने वाले हैं
0: जी,
1: और लेकिन फिर जैसे ही गाना शुरू किया पिन ड्रॉप साइलेंस था
0: जी,
1: और उसके बाद जो मुझे मतलब तालियां मिली हैं उसके बाद से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया।
0: हाँ जी, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए जब हम पहली बार स्टेज पे जाते हैं और सामने जब इतना सारे श्रोता होते हैं तो एक अंदर से घबराहट होती है, तो आपने उसको मैनेज कैसे किया, क्या आपने उस वक्त उस क्षण आपने अपने आप को क्या कहा?
1: अपने आप को शांत रखा, आंखें बंद की
0: जी,
1: गुरु का नाम लिया
0: जी
1: और शुरू कर दिया।
0: अच्छा, अच्छा आपने अंशुल जी जिस क्षेत्र को चुना है एज ए करियर, संगीत का जो क्षेत्र है वो समय काफी मांगता है, और आप परिवार हैं, घर में पति, सास ससुर, बच्चे सब हैं, तो आप मैनेज कैसे करती हैं, किस तरह से बैलेंस करती हैं इन सारी चीजों को?
1: जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ
0: जी,
1: मैं स्कूल टाइमिंग में ही बच्चों के साथ ही प्रैक्टिस करती हूँ
0: जी,
1: और उनको भी वही सिखाती हूँ और खुद भी वही सीखती हूँ
0: जी,
1: तो कुछ चीजें सब गिव एंड टेक होता है
0: जी,
1: तो अगर आप मुझे कुछ दे रही हैं तो मैं भी आपको कुछ दूंगी
0: जी,
1: तो बच्चे ऐसा नहीं है कि मैं बच्चों से नहीं सीखती हूँ, मैं भी बच्चों से सीखती हूँ
0: जी,
1: वो कुछ मुझसे सीखते हैं कुछ मैं उनसे सीखती हूँ, और जिंदगी भर ये सिलसिला चलता ही रहता है।
0: देखिए आप शिक्षिका भी हैं और आप स्टेज शोज भी, आप परफॉर्मेंस भी देते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं इन दोनों को आप?
1: हो जाता है,
0: कोई दिक्कत नहीं आती?
1: नहीं।
0: अच्छा, परिवार से आपको सपोर्ट मिला है आपने बताया, तो जब आपकी प्रशंसा करते हैं आपके परिवार वालों से, जो दूसरे श्रोता आपकी आवाज सुनते हैं, आपका संगीत सुनते हैं, तो परिवार वालों की क्या प्रतिक्रिया रहती है, क्या उन्हें बहुत गर्व महसूस होता है?
1: हाँ, होता ही
0: है। ऐसा जब उन्हें गर्व महसूस होता है तो आपको क्या लगता है कि हाँ आपने भी लाइफ में कुछ अचीव किया?
1: हाँ, मुझे लगता है कि एक बहू होने के नाते
0: जी,
1: जिस तरह से उन्होंने मेरा सपोर्ट किया है
0: जी,
1: और ये चीज सबको देखनी चाहिए और समझनी चाहिए और दूसरों को आगे बढ़ाना चाहिए
0: जी,
1: अपनी बहुओं को भी, बेटियों को भी,
0: खासकर महिलाएं, महिलाओं को सपोर्ट करें तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेटर होगा।
1: सपोर्ट बहुत बड़ी चीज है
0: जी। अच्छा, आप संगीत में है तो कौन कौन सी, मतलब संगीत में तो कई विधाएं होती हैं, जैसे लोक संगीत है, गजल है, आपका पसंदीदा क्या है?
1: मेरा बुंदेली भी है, गजल भी है
0: जी,
1: भजन भी है
0: जी,
1: सब कुछ, मतलब मैं सब गाती हूँ
0: जी,
1: और सेमी क्लासिकल ठुमरी भी है
0: जी,
1: सब कुछ, पर बुंदेली इस समय मेरा मैं ज्यादा करती
0: हूँ। अब हमने बुंदेली संगीत की बात कर ही दी है तो क्यों ना सुनाइए हमारे श्रोताओं को भी कुछ बुंदेली संगीत सुनाए आप।
1: बिल्कुल, ये उस समय का वर्णन है जब राम का विवाह होने जा रहा है
0: जी,
1: और वो दूल्हा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं
0: जी। बिल्कुल
1: ठीक है,
0: सुनाए।
1: बने दूल्हा छवि देखो।

0: बहुत खूब, बहुत ही सुंदर आत्मविभोर करने वाला संगीत आपका। अच्छा, तो आप जो, आप एक आत्मनिर्भर नारी हैं, अगर मैं, आप संगीत शिक्षिका हैं, आप एक आत्मनिर्भर नारी हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी हमारी महिला श्रोताओं को, क्या संदेश देना चाहेंगी?
1: मैं गाने के थ्रू ही संदेश दूंगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना?
0: ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि आप संगीत शिक्षिका हैं।

0: खूब अंशु सक्सेना जी, बिल्कुल सही है कहा आपने कि अंधेरों का सामना करते हुए हम सभी को उजालों की ओर चलते रहना है।
1: धन्यवाद
0: अंशु सक्सेना जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, आपका आभार।
2: अभी आपने सुनी यह भेंट वार्ता जिसमें एक सफल संगीत शिक्षिका श्रीमती अंशुल सक्सेना जी से बातचीत की थी रूपाली नाग ने। श्रोता बहनों, महिलाओं का साहस कभी थकता नहीं है, वो जीवन की तमाम मुश्किलों को हराकर भी जीना जानती हैं। और आज आपको बताते हैं एक ऐसी ही प्रेरणा स्रोत महिला गुलाबो सपेरा जी के बारे में, जिन्होंने तमाम मुश्किलों के बाद भी अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी कला को विश्व स्तर पर पहचान भी दिलाई। इनका जन्म अजमेर के कालबेलिया में धनवंती के रूप में हुआ, लेकिन अपने माँ बाप की चौथी बेटी होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके पिता उन्हें बहुत छोटी सी उम्र से ही सड़कों पर होने वाले सांपों के शो में ले जाने लगे थे, जो उनका मुख्य व्यवसाय था, और धीरे धीरे उन्होंने भी सांपों की तरह नाचना आरंभ कर दिया, जो अपने आप में एक अनोखी नृत्य शैली के रूप में उभर कर सामने आई। एक तीर्थ स्थल पर उन्हें गुलाब के फूल से आशीर्वाद दिया गया और यहीं से उनका नाम गुलाबो पड़ा। 1985 में उन्हें अमेरिका के एक सांस्कृतिक दल में अपनी नृत्य शैली के प्रदर्शन का मौका मिला और उन्होंने इस मौके को अपनी कामयाबी का जरिया बनाया और वहां उन्होंने राजस्थान की लोक विरासत के राजदूत के रूप में स्थापित किया गया। आज उन्हें अखिल भारतीय कालबेलिया समुदाय के अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने द्वारा स्थापित एक संस्थान के माध्यम से लड़कियों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। उनके इस प्रयास और नृत्य शैली कालबेलिया को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने के लिए निस्वार्थ मेहनत बहुत जरूरी होती है। जैसे सोने को आग में तापाकर ही निखारा जाता है, ठीक वैसे ही सफलता के लिए मेहनत और जरूरी होता है। तो श्रोता बहनों, आप भी अपने सपनों को जरूर निखारें। इसी के साथ समय हो चला है गीत संगीत का, तो आइए।

श्रोता बहनों, इस समय गर्मियां पूरी तरह से अपनी चरम सीमा पर हैं और इस मौसम में तेज धूप की वजह से लू लगना, डिहाइड्रेशन और मौसमी बीमारियों का होना आम बात है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम सभी अपनी सेहत का भरपूर ध्यान रखें ताकि गर्मियों और गर्मी की वजह से होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। इसलिए अपने खानपान, पहनावे और जरूरतों का जरूर ध्यान रखें। दिन भर में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी जरूर पिएं। इसके अलावा नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, जूस जरूर पिएं। इससे आपका शरीर हाइड्रेटेड रहेगा, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा अपने खानपान में ज्यादा मसालों का उपयोग ना करें। मौसमी फल व सब्जियों को अपने खाने में जरूर शामिल करें और जितना हो सके धूप में बाहर जाने से बचें। तो श्रोता बहनों, ये तो बात हुई धूप से बचाव की। इसी के साथ वक्त हो चला फिर से गीत संगीत का, तो आइए मिलकर सुनते हैं इस गीत को। फिल्म बेटा से आवाजें हैं अनुराधा पौडवाल व विपिन सचदेवा की।

श्रोताबहनों, इसी गीत के साथ अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा अपने पत्रों द्वारा लिखकर जरूर बताइएगा। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम नारी जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड है 284128। इसी के साथ मुझे यानी पल्लवी वर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे महिलाओं का पसंदीदा कार्यक्रम नारी जगत। एफएम 103 पर यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

चौपाल कार्यक्रम सुनबे बारे सभी किसान पंच भैया रो स्वीकारो संतोष पाल को नमस्कार। राम राम भैया रो। हाँ तो किसान पंच भैया रो अपन वाले कैसे हो? हाँ भैया रो आशा करत और भगवान से प्रार्थना भी करत कि अपन सब जने नौने हुई हो और स्वस्थ हुई हो और अपनी खेती किसानी के काम भी देखो अब मौसम के अनुसार कर रहे हुई हो। काहे के भैया जो तो अपन सब जने जान ही रहे कि अपने ते आसो देखो मानसून देर से आ रहा हो। कैसे पर साल अपन ने देखो के ई बेरा देखो अपन के बोनी करवे को भी टाइम नहीं मिल रहा। तो जो भैया आ रहे चूक गए थे तो उनकी बोनी हो ही नहीं पाई थी, लेकिन ई बेरा अपन वहां इंतजार कर रहे कि कबे पानी बरसत और कबे अपन अपनी खेतन में बीज बुवाई करत। तो भैया रो अपन के अपने पहले बीज बीजन के व्यवस्था बना लेने उत्तम किस्म के उन्नत किस्म के अपन के

बीज की व्यवस्था बना लेने, या देखो अपन के जो पंजी के दुकान है उतने से खरीद लेने, या फिर अपन के देखो जो अपने पुराने बीज रखे अपन जी की फसल ले चुकी अपने खेतन में, उनके शोधित करके बोने हैं। और भैया रो अबे का है कि अपन जैसे पानी की लाने फिर रहे, अपने जैसे जानते ही हो कि बुंदेलखंड में पानी की कमी बनी ही रहती, चाहे पीवे के लाने पानी की कमी हुई और फसलन की लाने, जब पीवे की लाने ना हुई है तो फसलन की लाने कहाँ से आती। तो भाई यारो ई की लाने अपन खे एक काम करने, ई बेरा का करने के जैसे अपन ने जो तो सुनी हुई है खेत को पानी खेत में और घर को पानी घर में। हाँ तो अपन हो रहे खेत को पानी खेत में रखबे की बात तो जानते ही हो कि अपन खेतन की मेड़े बना के या फिर बनिया डरवा के अपनो खेत को पानी खेत ही में इकट्ठो कर देते ही। अब घर को पानी अपन वो सोच रही हो का भैया घर में भर ले का, ऐसा नहीं है भैया। अपन कहें घर को पानी घर में कैसे रखने, एक तो का है कि अपनी जो जब बरसात होता ही पानी बरसता ही तो छत्तन को पानी आते ही अपने लैंटर्न को और बत्तियों को पानी, या फिर अपनी जो आंगन को बकरी को पानी जितने इकट्ठो होते ही तो लगभग सभी पंच भैया आ रहे हैं काकन लगत यानी कि नर्दा बनाए रहते ही, तो वो पानी नर्दा से निकल जात पूरा पानी इकट्ठो हो गए। अब ऐसा ही अपन है का करने कि भैया एक सोक पिट बनवाने। हाँ भैया जी हैं अपन वहां सोकता बोलने लगा, एक गड्ढा खोद देने कितने खोदने जितने वहां अपनो नर्दा निकलता ही है आंगन में अपने घर के द्वारे में, जितने अपन नर्दा को गड्ढा खोदने रहते ही ऊखे तनक बड़ो खोद देने। ऊखे का करने अपन के 5 बाई 5 बाई 5 यानी कि 5 × 5 × 5 यानी कि 5 फुट चौड़ाई 5 फुट लंबाई और 5 फुट गहराई को अपन के गड्ढा खोद देने। फिर अपन के देखने के अपने पास अगर जांगा इतनी उपलब्ध नहीं है तो अपन के ऊखे सकरो भी खोद सकत, लेकिन गहराई अपन के भैया की 5 फुट ही रखने। और फिर वो गड्ढा खोद के अपन के का करने गारा ईंट से अपन के ऊखे उकी चुनाई करा देने चारों तरफ है। चुनाई करावे के बाद फिर अपन के का करने के ऊ में जो अपने गुम्बन के टुकड़ा होता ही रूड़ा पथरा होता ही उसे भर देने लगभग 1-1.5 फुट। फिर एक परत अपन है काय की लगाने जो अपनी बजरू छनन निकलते ही उनके वो छनन के अपन है एक परत उकी लगा देने मोटी। फिर अपन का करें कि एक रूड़ा पथरन की एक परत और लगा दो। फिर अपनी जो ब्याह शादियों में देखो लकज्जा को, लकज्जा अपन बारते ही जलाते ही खाना बनावे के लाने ऊको जो कोयला निकलत ऊ कोयला की एक परत बना दो। फिर अपन के भैया ऊपर बालू की छनन की एक परत डाल देने, ऐसे ही कर परते बना बना के अपन के ऊ गड्ढा के पूरा भर देने। और फिर का करने के जो अपने छत्तन को पानी होते ही और बतियन को बकरी को पानी होते ही वो एक नाली या पाइप के जरिए वो गड्ढा में छोड़ देने। और अपनी जो मुख्य नाली है नर्दा है ऊखे भी वही गड्ढा में डाल देने, वही के माध्यम से अपने लगभग पूरा पानी घर को निकलता ही तो ऊखे अपने ऊ गड्ढा में छोड़ देने। अब का करने के अब अपन के उतर निकलवे में असुविधा हुई है तो ई के लाने अपन ऊपर देखो जो पत्थर की चीपे आती हैं बे डाल दो, या फिर देखो सीमेंट की सिल्पे बनवा के ऊपर डाल दो। अगर जो नहीं कर पा रहे अपन तो अपनी जो चौड़े पटिया होते ही बेडा दो जी अपन खे उत से निकलवे में असुविधा ना हुए। अब अपनो सुख पिट बन के तैयार हो गो, बरसात हुई है अपनी बकरी को लेंटरन को जब पानी पूरे घर को समेट के उ गड्ढा में आए और सूख जाए बाहर न निकल पे बह के नाली में मुख्य नाली में बह के न निकले तो इसे भैया का लाभ होता ही। अपन वहां सोच रहे जो ठीक है जो तो हमने बनवा दो आपका लाभ हुई है, तो भैया अपन खे बता दें इसे जो होता ही कि अपने घर में जो अपन देखो सफर भी के लाने उन नलत्ता पींच भी के लाने और देखो अपन के तरह के उपयोग के लाने घर को पानी पीवे के लाने लेते ही तो वो हैंडपंप अपने घर में लगू रहते ही बोर रहता ही अपन बोर कराते ही उसमें हैंडपंप लगाए रहते या तो देखो या बिजली से चले भाई मोटर समरसीबल डाले रहते ही के तरह के पंप आते ही उनको प्रयोग करते अपन तो वो पानी जो अपनो सूखता में सूख जाता ही बरसात को पानी तो वो अपने जो हैंडपंप को बोर है उ में फिल्टर होके आ जाता ही छन छन के जिसे अपने

0: हैंडपंप को जो जल स्तर है वो बढ़ जाता ही, और गर्मियन में अपन देखत के अपने हैंडपंप में कम पानी आन लगता ही, तो भाई अब पानी की कमी नहीं होती, यानी कि जल स्तर बढ़ जाता, और भूगर्भ स्थल यानी कि धरती के भीतर जो पानी को स्तर है वो भी बढ़ जाता ही। हैं अपन के बखरी में या घर में आसपास कुज्जा खुदी कुगा खुदो तो उको जल स्तर भी बढ़ जाता ही। कैसे इखे रिचार्ज वाटर भी बोलत, यानी कि जो फिर से जो बरसात को पानी होता ही वो जमीन में सोख के माटी के द्वारा छन छन के फिल्टर होके और वो देखो अपने उपयोग करवे के लाने हो जाते ही। तो देखो कितना लाभ भाव अपन है के अपना जो दुआए में नर्दा अपन खोले रहते उसे देखो किच कंदो मच जात तो निकलवे में दिक्कत हो, और कितना बुरा गंदगी फैल जात, मच्छर अपन अपन लगत, लेकिन जब अपनो सोखता बनो हुई है तो बवानी पानी के तो ना जाए उमे सोखत रहे, और जो बरसात को पानी भी निकले वो भी पूरा सोख जाए, और जैसे अपन खे देखो हमने लाभ बताई रहो का लाभ होता ही है। तो भैया रो अपन खे जा व्यवस्था अपने घर के आंगन में कर रखने जरूर, और भैया रो अपन से हम बतकाओ और करें, लेकिन उसे पहले रुकत और सुनत जो संदेश हो।
1: अरे भैया का करें, जब खेती किसानी में कौन फसलन में कितने पानी देवे, खाद बीज कितने से ले आवे, किसे पूछ में कछु समझ ही में नहीं आऊ।
2: अब चिंता छोड़िए किसान भाइयों, क्योंकि आकाशवाणी झांसी प्रस्तुत करता है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के सहयोग से RLBCAU रेडियो कृषि पाठशाला। 24 कड़ियों के इस कार्यक्रम में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य आदि से संबंधित जानकारियाँ और व्यवहारिक अनुप्रयोग की विधियाँ बताई जाएंगी। यह कार्यक्रम 10 मई 2026 से प्रत्येक रविवार शाम 6 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
1: अरे सच में भैया?
2: हाँ बाबू, बिल्कुल सच। हाँ
0: भैया, आप अपन ने कितना नो नो जो जानकारी सुनी, और अब अपन से हम चर्चा करत के अपन खे का करने भैया रो, एक तो प्राकृतिक खेती अपनाने। बिल्कुल भैया आरो, काय से जो कुदरती अपन खे चीजें खावे पीवे मिलती वे देखो कितनी नवानी लगती, स्वादिष्ट लगती, और अपन देखत के उनसे अपन शरीर जो होता ही हिष्ट पुष्ट होता ही। जबकि देखो अपन जो बनावटी चीजें या रासायनिक खादन से उत्पन्न भई चीजें, रसायनन से केमिकल से बनी हुई चीजें खाद तो भी नुकसान पहुंचाती, कई तरह की बीमारी अपने शरीर में पैदा कर देती। तो हम ऐसे ही आज चर्चा कर रहे, ऐसे ही एक भेंट वार्ता अपन को सुनवा रहे गो आधारित प्राकृतिक खेती, और गो आधारित प्राकृतिक खेती विषय पे हमने बतकाव करो प्रगतिशील कृषक नथु सिंह तोमर से। तो अपन है सुनवाते ही के तोमर साहब ने अपन सब जन है का कछु बताओ, अपन कैसे गो आधारित प्राकृतिक खेती कर सकत और इसे लाभ ले सकत। तो सुनो किसान पंच भैया, अपन उन्हें जो बतकाओ।
3: श्रोताओं नमस्कार, हाथों किसान भैयारो, जैसे कि बार बार हम अपन से कतरत अपने जो किसान वाणी कार्यक्रम है या चौपाल कार्यक्रम है कि अपन है भैया जैविक खेती अपनाना, और जैविक खेती के अतिरिक्त अपन देखत के जो गौ आधारित खेती भी अपन ने नाव सुनो हुई है। हम कह सकत के खेती के साथ साथ पशुपालन अलग नहीं है, यानी कि खेती का ही एक हिस्सा है, इसे कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलू। तो गौ आधारित खेती के विषय में जानकारी देने के लिए आज हमने अपने आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में एक जागरूक किसान भैया है आमंत्रित करो है, जो कि रानीपुर से आए, और जी है नथु सिंह तोमर जी। तो जी गौ आधारित खेती से जुड़े हुए हैं, और गौ आधारित खेती से जुड़ के इनने बहुत सी अपनी खेती किसानी की लागत कम करो और सरकार से सहायता भी प्राप्त करी। तो नथु सिंह तोमर जी, आपका हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी के स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार भैया।
4: नमस्ते।
3: तो अपन किस तरह की खेती करते हैं? हम देखते हैं कि देखो आज के समय में जैविक खेती पर जोर दिया जा रहा है।
4: साथियों, जो अभी हमारे पाल साहब जी ने सही कहा, मैं गोवाधारित खेती का कार्य कर रहा हूँ। उस गोवाधारित खेती में एक क्लस्टर है, पूरा एक समूह है किसानों का, उसमें करीब 50 किसान हमारे इस क्लस्टर में हैं
3: जी।
4: और हम लोग गौ आधारित खेती यानी कि हम गाय के माध्यम से हमारी जो गोआधारित खेती है वो हमारे विकास खंड में

0: और विकासखंड के अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में ये खेती की जा रही है।
1: जी जी।
0: तो साथियों, किसान भाइयों, गाय एक ऐसी फैक्ट्री है खाद की कि उसके माध्यम से ही हम अपनी जैविक खेती अपना सकते हैं।
1: बिल्कुल। तोमर सर, आपके मन में विचार कैसे आया कि हम गौ आधारित खेती करें, जबकि आज के समय में दुनिया सोच रही कि हमें अधिक से अधिक पैदावार मिले, कैसे भी हो उत्पादन हमें ज्यादा मिले, चाहे हमें रासायनिक खाद देने पड़े या हमारी लागत बढ़े, लेकिन हमें उत्पादन ज्यादा मिलना चाहिए।
0: जी जी।
1: तो आपने इसे क्यों अपनाया?
0: तो साथियों, इसका अपनाने का मेन कारण है सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारे देश में किसान की आय दूनी हो और जो हमारी भूमि की जो सेहत है वो बिगड़ रही है दिन पर, उसमें सुधार हो। तो इसको लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए ये योजना चलाई है पूरे देश में, और खासतौर से उत्तर प्रदेश उसका केंद्र बिंदु है कि यहाँ गौ आधारित खेती हो, यहाँ की जो जमीन है उसका जो हेल्थ जो है
1: बिल्कुल
0: बिगड़ रहा है वो ठीक हो। इसी उद्देश्य को लेकर के सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, माननीय योगी जी ने इस योजना को फॉलो किया है गौ आधारित खेती के माध्यम से, और उसमें ये किसान करें तो निश्चित तौर से उनकी जो भूमि है वो जो उसका जो रूप बिगड़ रहा है, उसका जो सेहत बिगड़ रही है खासतौर से, और जो हमारी पैदावार है वो पैदावार भी अब धीरे धीरे गिर रही है, उसको बचाने के लिए हम किसान भाइयों को निश्चित तौर से गौ आधारित खेती की ओर चलना पड़ेगा।
1: जी जी। तोमर साहब
0: जी,
1: अच्छा ये किसान भैया अभी संदेह में होंगे कि ये गौ आधारित खेती होती क्या है। वैसे सभी किसान भैया आ रहे हैं, एक दो गाय भैंस पाले रहते हैं, तो उस खेती को गौ आधारित क्यों नहीं कहते हैं? आपने ये विशेषता क्यों कहा कि गौ आधारित खेती कर रहे हैं, तो गौ आधारित खेती का कारण क्या है, इसे नाम दिया गया है?
0: गौ आधारित खेती का मतलब ये है कि हमें गाय के गौमूत्र गोबर जो हम उसको नासमझी के माध्यम से उसको अपन बेकार में घूरों में फेंक देते थे, तो अब सरकार ने गौ आधारित के माध्यम से, चूंकि वो ऐसी पद्धति है गौ आधारित पद्धति कि उसमें ना तो आपको अब घूरे डालने की जरूरत है, अब तो हम आप उसको जीवामृत के माध्यम से, बीजामृत के माध्यम से, और हम उसका एक पूरा एक घोल बना करके एक ड्रम में, चूंकि सरकार ने ड्रम बाल्टी और जो भी कई जो यंत्र हैं वो हमारे क्लस्टर को उपलब्ध कराए हैं, तो उसको जीवामृत के माध्यम से हम जल्दी से जल्दी अपने खेतों में जो जीवाणु हमारे कम हो रहे हैं उनकी बढ़ोतरी कैसे हो, वो हम उसमें जीवामृत के माध्यम से उसमें बढ़ोतरी तुरंत कर सकते हैं। एक समय था कि हम गोबर की खाद घूरों के माध्यम से डालते थे, अब कई ऐसे पद्धतियां डेवलप हो गई हैं, चाहे वो पालेकर जी की पद्धतियां हो या अन्य पद्धतियां हो, अब हमें घूरे डालने की जरूरत नहीं है, हम एक गाय के माध्यम से अपनी कम से कम 20 एकड़ जमीन गोबर से और हमारे जीवाणु कम हो रहे हैं उनको हम स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं कृषि का एक गाय से।
1: बिल्कुल। जबकि आप जो क्लस्टर की बात कर रहे हैं तो इसमें आपने कितनी गाय पाल रखी हैं?
0: उसमें प्रत्येक किसान अपने अपने गाय पाले हुए अपने अपने घर में,
1: अच्छा,
0: किसी के पास दो गाय है, किसी के पास तीन गाय है, किसी के पास चार गाय हैं, तो उस क्लस्टर में इस तरह की व्यवस्था है कि किसान अपनी गाय को खुद पाले हुए हैं या उन्होंने खरीद ली है।
1: क्लस्टर का मतलब एक समूह जैसा बनाया,
0: समूह जैसा है, और उसी समूह के माध्यम से हम लोग आपस में बैठक करते हैं, सरकार के लोग भी बीच बीच में हम लोगों को मार्गदर्शन करते हैं गोष्ठियों के माध्यम से, और जहाँ भी गौ आधारित खेती का कार्य चल रहा है वहाँ भ्रमण भी कराते हैं।
1: जी।
0: तो ये सरकार उसमें पूरी तरह से हम लोगों को साथ सहयोग कर रही है।
1: अच्छा, तो इस सहयोग के लिए आप कहाँ गए?
0: हम लोग जो है, जो कृषि विभाग है हमारा, उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग है,
1: जी जी,
0: वो इसमें पूरी तरह से सहयोग कर रहा है और उन्हीं के माध्यम से ये गौ आधारित क्लस्टर बने हैं।
1: अच्छा, इसके लिए क्लस्टर बनाने के लिए आप लोगों को कौन कौन से प्रपत्रों की आवश्यकता पड़ी और कौन से संबंधित अधिकारी के पास अपन ने जमा करे?
0: जी,
1: तो यह पूरी प्रक्रिया अपने किसान भैया बताओ, जैसे और किसान भैया जो और गांव में रहते वे भी इस तरह को क्लस्टर तैयार करके और सरकार से सहायता प्राप्त करके गौ आधारित खेती कर सके।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा पाल साहब, किसान भाई अपने जो कृषि विभाग के संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी हैं, सम्माननीय एसडीओ, उनसे मिलकर के

0: इस कार्य को कर सकते हैं। उनके और भी बीटीएम एटीएम जो कार्यकर्ता है कृषि विभाग के, तो सारे लोग लगे हैं और उनकी मंशा है कि बुंदेलखंड में पूरी तरह से लोग जैविक खेती करें।
1: बिल्कुल,
0: चूंकि आपको बता दूं कि ये जो मेरा क्लस्टर है जिले में सबसे पहले बना था, तो मैंने सम्माननीय जो संभागीय अधिकारी हैं, डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी हैं, उनसे मैं मिला, उनको मैंने बताया कि सर मैं इस तरह का कार्य कर भी रहा हूं, तो उन्होंने उसको प्रशासन के रूप में तुरंत हमारा क्लस्टर रजिस्टर्ड करवाया।
1: बिल्कुल,
0: और उस क्लस्टर में जुड़ने के लिए किसान के पास कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन होना चाहिए, और साथ ही उसके पास गाय हो और आधार कार्ड हो और उनके पास जो है पूरे खेती के कागजात के होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन किसान पंजीयन के पास होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो अगर जो किसान क्लस्टर में जुड़ना चाहते हैं तो अगर उनका किसान पंजीयन नहीं है तो वो जरूर पंजीयन करा ले, क्योंकि बिना पंजीयन के वो क्लस्टर में नहीं जुड़ सकते हैं।
1: और फिर ई के बाद अपन के जो खाते में
0: जी
1: पैसा आए के सब किसानन के अलग अलग खाते में पैसा आए क्या सामूहिक रूप से ऐसा खाता खोलोगे तो जी मैं अपन वो सहायता राशि प्राप्त हुई।
0: बहुत अच्छी बात आपने कही, ये प्रत्येक किसान के खाते में पैसा गया है।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: लगभग कितना पैसा मिला?
0: शुरुआत में मान लो 2000 की किस्त सरकार के माध्यम से आई।
1: अच्छा,
0: इसके बाद 8000 की किस्त आई, उसका फिर सरकार के माध्यम से उसको सामान खरीदा गया है, ड्रम है, बाल्टी है, इस तरह का कार्य पूरा उनका चल रहा है
1: जी।
0: तो निश्चित तौर से ये किसानों के लिए एक वरदान है गौ आधारित खेती। तो ये जैसे ही किसानों ने पूरे क्लस्टर ने काम पूरा पहली किस्त में कर लिया, तो उनका तुरंत जो है दूसरी किस्त जो है उनके कार्य के लिए, ड्रम खरीदने के लिए, बाल्टियां खरीदने के लिए
1: जी,
0: और भी जो है जैसे मूंग का बीज है, नीम ऑयल है, तो इस तरह का कार्य जो है सरकार जो है तुरंत उनको उपलब्ध कराती है।
1: बिल्कुल,
0: और उसके माध्यम से किसान उन्होंने अपना काम शुरू कर रहे हैं और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है।
1: अच्छा,
0: तो किसान निश्चित तौर से जैविक खेती की ओर बढ़े और यही हम आपका एक विकल्प है। इससे हमारी भूमि जो भूमि का स्वरूप बिगड़ रहा है और निश्चित तौर से ये खेती का जो उत्पादन है वो उत्पादन निरंतर रहेगा, किसान भाई की जो लागत है वो लागत कम होगी और गुणवायुक्त उत्पादन उनको मिलेगा, तो निश्चित तौर से वो अब जो है जैविक खेती की तरफ बढ़े। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये सपना है कि हमारा बुंदेलखंड पूरी तरह से जैविक हो, हम यहाँ मोटे अनाज उत्पादन करें, जो हमारे साथ साथ जो कृषि की विविधता है, जो कृषि की विविधीकरण है, उसको भी हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। खेतों में अपने फलदार वृक्ष किसान लगाएं।
1: बिल्कुल,
0: उसमें अपन को नींबू है, अमरूद है, आंवला है। मैंने तो एक इस तरह का एक पूरा एक मॉडल खड़ा किया है इस वर्ष कि हर महीने हमारे घर में फल हो और वो फल जो है घर के फल हो।
1: बिल्कुल,
0: तो इसमें बुंदेलखंड में हर चीज संभव है। मैंने ड्रैगन फ्रूट भी लगाया, संतरा भी लगाया, मौसमी लगाया, अनार लगाया, जो एक अच्छे रूप में देखे जा सकते हैं।
1: तोमर साहब, अब हम आपसे बात करते हैं कि आपने जो गौ आधारित खेती नाम लिया
0: जी,
1: तो जो गौ का इसमें महत्व, क्या आप गोबर से बनी उनकी खाद तैयार कर ली, फिर ऐसे क्या आप, फिर आपने जैविक कीटनाशक
0: जी जी
1: या जैविक जो खरपतवार नाशी इस तरह से कुछ तैयार किया?
0: बिल्कुल मिला है। इसमें हम लोगों ने जो कीटनाशक दवाएं भी हम लोगों ने प्रयोग की हैं, उनको बनाया भी है, उसको प्रयोग भी कर रहे हैं।
1: अच्छा, किस तरह से तैयार किया, किसान भाइयों को जरा बता दें।
0: मैं जैसे मिर्च है अपनी, अगर कहीं कीट लग गए हैं अपनी फसल में, तो मिर्च है, अकौआ है, अदरक है, लहसुन है, इनका पूरा मिश्रण करके और बीमारी आने के पहले हमने उस पर छिड़काव किया है। और ये जो जितनी भी बीमारी हमारे खेतों में आ नहीं पाए, नीम ऑयल है, इसको हम पहले उसको छिड़कना है, तो निश्चित तौर से हमारा कंट्रोल रहेगा और जो हमारे हानिकारक कीट हैं वो हमारी फसल से भाग जाएंगे। गोबर से दीपक बना रहे हैं।
1: ये कैसे तैयार होता
0: है? उसका एक फार्मा होता है, उस फार्मा में बढ़िया तरह से उसको गूंथ करके गोबर को, और उसमें दीपक तैयार हो जाता है।
1: अच्छा,
0: हाँ, तो वो मार्केट में हमें बेच भी रहे हैं उत्पाद। अच्छा, के रूप में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये तो एक नया उत्पाद हुआ गोबर से, यानी कि दियो को तैयार करना,
0: दियो को,
1: यानी कि एक सांचो हो वहां में अपन गोबर के सान के भर देते ही और फिर थोड़ा सूखने के बाद निकालते
0: हैं। बिल्कुल निकालते हैं, तो वो भी एक प्रयोग किया है। तो इस तरह से कई संभावनाएं हमें गौ आधारित खेती में है और

0: साथ ही हम गोआधारित खेती के माध्यम से अपनी जो एक गाय के माध्यम से कम 10 एकड़ जमीन अपन उसको सुसुभजित कर सकते हैं, उसको खाद उपलब्ध करा सकते हैं। इतनी क्षमता हमारी गाय में है। प्राकृतिक खेती पूरी तरह से किसानों के लिए वरदान है और यही हम आपको बचा सकती है। हमारा जो समाज है वो अच्छी तरह से विकसित होगा, उनको अच्छा अन्न मिलेगा।
1: नत्थू सिंह तोमर जी, आप हमारे आकाशवाणी केंद्र झांसी की स्टूडियो में आए और गो आधारित खेती के बारे में अपन ने इतनी विस्तार से जानकारी दी, जिससे आशा है कि अपने जो किसान भैया हैं वे लाभान्वित हुई है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार तोमर साहब। किसान पंच भैया, अब अपन देखो कितनो नोनो बतकाओ सुनो के अपन है प्राकृतिक खेती करने और जिसे अपन के क्यों तरह से लाभ है। जो अपनी खेत की माटी है वह बीमार हो जा रही और बंजर हो चली जा रही, उसे भी अपन प्राकृतिक खेती करके, गो आधारित खेती करके, जैविक खेती करके, ये सब भैया कहने को मतलब जो एक ही नाम है, यानी कि ये सब एक दूसरे की मिली वही है और इनसे अपन देखो बहुत ज्यादा लाभ है। एक तो अपनी खेती की जो लागत है वह कम हो जाता ही और जो फिर अपन के पैदावार मिलत वो मैं देखो अपन के लाभ मिल जाते। और पंच भैया और अपन से आप बात करें कि अपन के देखो एक तो जो अपन खरीफ फसलन की बुवाई करो उसे पहले बुवाई से पहले अपने बीजन के उपचारित करने, शोधन करने FIR विधि से। हाँ भैया रो FIR विधि अपन सोचा थे भैया जा तो अपन जब थाने जाते ही रिपोर्ट लिखवाते ही कर लगाते FIR कर दी, लेकिन भैया जाए FIR दूसरी है। हम अपन बता दें अंग्रेजी में एफ को मतलब होत फंगीसाइड, आई को मतलब होत इंसेक्टिसाइड और आर को मतलब होत राइजोबियम कल्चर। तो इन चीजन से अपन अपने बीजन के उपचारित करने, पहले तो अपन देखो फफूंदनाशक दवाई से उपचारित करने, फिर कीटनाशक दवाई से उपचारित करने, फिर देखो अपन बता दें हर एक फसल को, जैसे अपन उड़दा बे रहे या मूंगफली बे रहे या तिलहन दलहन, यानी कि जौन सी फसल बो रहे उको अलग से विशेष राइजोबियम कल्चर आता ही। ऐसो नहीं है कि एक ही कल्चर से सब उपचारित हो जाते हैं, तो जो विशेष ध्यान रखने अपन है दुकानदार भैया से पूछने कि अगर अपन मूंगफली को बीज उपचारित करवो चाह रहे तो भैया उनसे कहने कि हमें मूंगफली को राइजोबियम कल्चर दे दो, तभी अपन उपचारित करो और लाभ हुई। और जो उपचारित करवे को भी अपन ख्याल रखने, एक तो देखो मूंगफली है, जैसे अपन मूंगफली अपने ईबेरा बुंदेलखंड में ज्यादातर अपनी देखो एक मुख्य फसल हो गई खरीफ की, तो ऐसे में अपन का करने, एक तो अपन ने लगभग इस टाइम पे समय भी है बुवाई को, सब जन ने मूंगफली फरवा ली हुई है, तो ज्यादा पहले भी नहीं फरवाने मूंगफली हुई है, लगभग एक सप्ताह बुवाई से पहले बीज दाने निकाल लेने आते ही। और फिर उपचारित कब करने बीजन है भैया, और जब अपन बोनी करे जैसे अपन लग रहा हो कि अपन दोपहर पे बोनी करने या शाम के बोनी करने, तो लगभग एक आध घंटा पहले, दो घंटा पहले उखे उपचारित करने, फिर देखो छायरी में सुखा लेने, जिसे कहा है कि जो जीवाणु दवाई के रूप में अपन बीजन पे जो परत चढ़ा देते ही वे मर ना पाए और अपनी खेत की माटी में दबजे उन्हें नमी मिल जाता ही तो भी जिंदा बनी रहता ही, वो बाको फायदा अपन है मिल जाता ही अच्छी फसल उत्पादन करके अपन है। तो भैया और जा तो भाई देखो बुवाई से पहले बीज शोधन की बात, और अब अपन वह सोच रहे हुए कि जे तो बतकाओ ही बतकाओ कराने जा रहे और देखो मनोरंजन को कसु ख्याल नहीं रख रहे। हाँ तो भैया एक विशेष हमारी अपन से प्रार्थना है कि भैया और देखो हरे भरे बेछा बिल्कुल नहीं काटने अपन के, काय से आजकल हम देख रहे कि देखो ट्रैक्टर की ट्रैक्टर लदे, यानी कि बहुत ज्यादा अंधाधुंध पेड़न की कटाई भी कर रहे आदमी, जिसे अपन देखो कितनी गर्मी को सामना करने पड़ रहा, तो अपन नए पेड़ भी लगाने। ऐसे ही देखो एक उम्दा सो हम अपन लोकगीत सुनवा रहे, जे भी देखो पर्यावरण प्रेमी हैं और अपने ई गीत के माध्यम से हम सबसे कछु कहवो चाह रहे, जयराम और उनके संगी साथी जे गायक को गाओ भाव, जो लोकगीत अपनों ने सुनो।

किसान भैया रो अबे अपन ने देखो पर्यावरण आधारित कितनों नोनो जो लोग गीत सुनो जी गा रहे थे जयराम और उनके संगी साथी। तो भैया रो देखो अपन से बतकाओ करत करत पतो ही नहीं चलो के काय के हमको समय पूरो हो गो। तो अपन से हम चलत चलत जोई के वो चाहते कि अपन के हम काय के हम कैसो लगत ई के लाने अपन वहां देखो आकाशवाणी झांसी के नाम से फेसबुक आईडी बनी और इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल भी बनो आकाशवाणी झांसी के नाम से। तो इन्हों के कमेंट बॉक्स में अपन लिख सकत बता सकत अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकत। अब अपने भैया संतोष पाल को दो आज्ञा। नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम चौपाल एफएम 103 पर। यह आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब प्रस्तुत है आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

शाम 7:19 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। शाम 7:31 पर आप सुनेंगे स्वास्थ्य वार्ता आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम होगा खुशबू माटी की शाम 7:45 पर। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम। रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम जो कि आधारित होगा एक ही कलाकार पर, जिसमें आज की कलाकार हैं अलका याग्निक। रात्रि 8:45 पर आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार। रात्रि 9:15 पर आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

रात्रि 9:30 पर हमारे केंद्र से आप सुनेंगे फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो झांसी, जिसमें स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग होगा उषा अग्रवाल का और प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि कुमारी। रात्रि 10:30 पर आप सुनेंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम और 11:00 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार।

श्रोताओं, ये था आज के शेष कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवा रहे हैं बरसात फिल्म से अलका याग्निक सोनू निगम की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने और संगीत दिया है नदीम शेफी और श्रवण राठौर ने।

श्रोताओं, कार्यक्रम में ये पहला गीत आप सुन रहे थे बरसात फिल्म से। आवाजें थी अलका याग्निक और सोनू निगम की, संगीत दिया था नदीम शैफी और श्रवण राठौर ने, और गीत को लिखा था समीर ने। कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मेरे सनम फिल्म से, जिसमें आवाज दी है आशा भोसले ने, गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे मेरे सनम फिल्म से। आवाज थी आशा भोसले की, गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत था ओपी नैयर का। कार्यक्रम में आगे भी आपको और भी गीत सुनवाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: हैं? अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना हो हमारे किसान भैया परेशान।

कार्यक्रम का ये गीत आपको सुनवा रहे हैं बाजीगर फिल्म से अलका याग्निक और कुमार शानू की आवाज में। गीत को लिखा है नवाब आरजू ने और संगीत दिया है अनु मलिक ने।

0: श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। इस कार्यक्रम में ये गीत आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से अनुराधा बॉडवाल और कुमार शानू की आवाज में। गीत को लिखा था रानी मलिक ने और संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं चॉकलेट फिल्म से सोनू निगम की आवाज में। गीत को लिखा है मयूर पुरी ने।
1: Yeah. Wanna feel that? Come on, girl. Be the beat.

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे चॉकलेट फिल्म से, जिसमें आवाज है सोनू निगम की और गीत को लिखा है मयूर पुरी ने। इसी खूबसूरत गीत के साथ ही आज का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं समाप्त हुआ।

0: एफएम 101 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।
1: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: ये देख कैसे?
3: हैप्पी बर्थडे भाई।
4: हाँ, मेरा फेवरेट कलर
3: हमेशा शॉपिंग।
5: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
6: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
7: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
5: आई नो ना।
7: RBI कहता है,
8: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
9: महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, और मूढ़ व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है। महात्मा गांधी के अनुसार, युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अयोध्या के श्री राम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में श्री राम मंदिर चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोप में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया गया है। मामले की सुनवाई आज अयोध्या जिला न्यायालय में विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई। सभी आरोपियों की पेशी जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के रिमांड की मांग नहीं की है। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने कहा कि सरकार पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित कर रही है।
10: पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करके कड़ी कार्रवाई करे, सरकार इसको सुनिश्चित करेगी।
0: इस मामले को लेकर अयोध्या अधिवक्ता संघ ने ऐलान किया है कि उसका कोई भी अधिवक्ता इस मामले में नामजद आरोपियों की ओर से पैरवी नहीं करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बार एसोसिएशन मामले की CBI की जांच की मांग भी करेगा।
11: हमारे अधिवक्ता संघ अयोध्या का कोई भी अधिवक्ता

0: ये राम जन्मभूमि चोरी के अभियुक्तों की डिफेंस की ओर से वकालत नहीं करेगा। वकालतनामा दाखिल करने, अब जो कि भीड़ है तो करने पर प्रत्येक नाम पर प्रमोशन स्वरूप अधिवक्ता संघ को वो 5 लाख रुपए प्रत्येक नाम से वो जमा करेगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और शील नागो की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत में आज 569 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र भी प्रदान किए गए। कार्यक्रम में पीलीभीत के सांसद और केन्द्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश से विस्थापित होकर आए परिवारों को सरकार ने जमीन का मालिकाना हक देकर न सिर्फ उन्हें सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है बल्कि विरासत को भी संरक्षित किया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पीलीभीत समेत प्रदेश के सभी जनपदों के विकास को गति देने के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है।
0: आज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक हब बन रहा है यूपी। अब यूपी के अंदर विकास हो रहा है। एक इकोनॉमिक कॉरिडोर इसी पीलीभीत से होते हुए जा रही है शामली के लिए, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक जाएगी। जितने अच्छे मार्ग बनेंगे, जितनी कनेक्टिविटी में गति होगी, उतनी ही तेज प्रगति होगी।
1: कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश सरकार की जनहितकारी नीतियों और सुशासन के चलते पीलीभीत का कायाकल्प हो रहा है।
2: आज के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास की एक नई गाथा प्रदेश में लिखी गई। प्राथमिकता पे पीलीभीत में सभी योजनाएं यहाँ पर दिखाई दे रही।
1: पीलीभीत के बाद मुख्यमंत्री ने मुरादाबाद में दानवीर भामाशाह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में 365 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही लोक निर्माण विभाग की परियोजनाओं की समीक्षा भी की। प्रदेश सरकार ने ई पंजीकरण मॉड्यूल के संबंध में जारी अपने पिछले आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। स्टाम्प और न्यायालय शुल्क और पंजीकरण विभाग के राज्य मंत्री रविन्द्र जायसवाल ने बताया कि ये निर्णय अधिवक्ताओं और डीड राइटर की चिंताओं और हितों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
3: स्टाम्प विभाग का एक शासनादेश ऑनलाइन रजिस्ट्री की विभाग की तरफ से एक नवाचार करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें जियो जारी किए गए 4/6/2026 को इस जियो में थोड़ी सी क्लियरिटी न होने के कारण से एक भ्रम किस्ती बन गई। कई जगह अधिवक्ता, कई जगह डेट राइटर को एक भ्रम हो गया कि साथ हमारा रोजगार छीना जा रहा है, और इस भ्रम को से हम लोग को बाहर निकालने के लिए अभी फिलहाल 4/6/2026 का जो आया था उसको हम निरस्त करते हैं।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि 7वीं, 8वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के दूसरे दिन देशभर से आए ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ व्यापक मंथन किया। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने लखपति दीदी डैशबोर्ड और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के लिए शी लीप्स डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी किया। इस आयोजन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हुए। सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी योजना देशभर में लागू होगी, जो मनरेगा की जगह लेगी। इसके लिए 95,682

0: करोड़ की अंतरिम राशि स्वीकृति दी जा चुकी है। उन्होंने राज्यों से अपील की कि वे समय पर अपनी औपचारिकताएं पूरी करें ताकि योजना का सुचारू क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी और पारदर्शी ढंग से लागू करते हुए ग्रामीण विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। कार्यक्रम में डिजाइन प्रतियोगिता में प्रदेश के अभय गुप्ता और झील गौतम को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कल से यूपीटीईटी 2026 के एडमिट कार्ड जारी करेगा। एडमिट कार्ड आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। ये परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होगी। इस परीक्षा के लिए लगभग 15,99,000 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। जौनपुर के युवा भाला फेंक खिलाड़ी रोहित यादव ने भुवनेश्वर में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। इंटरस्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप में रोहित ने 87.05 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रोहित यादव के भाई राहुल ने कहा कि ये उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो था। उन्होंने कहा कि एशियन गेम्स के लिए चुने जाने पर उनके पूरे गांव में खुशी का माहौल है।
1: इस वाले गेम में क्वालिफाई मार्क था 77 पॉइंट कुछ था एशियन गेम्स के लिए, और वहां अपना पर्सनल बेस्ट थ्रो करके 87.05 किए और एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई भी किए हैं, जिसमें दो लोग जाते हैं। वहां एक नीरज चोपड़ा, उनका ऑलरेडी क्वालिफाई हुआ था डायमंड लीग से, 85 पॉइंट कुछ किए थे, और यहां से रोहित यादव, दो लोग जाएंगे एशियन गेम्स। हम तो खुश है, पूरा परिवार पहले से इंतजार कर रहा था कि हाँ अच्छा हो, अच्छा हुआ, पूरा गांव खुश है इस चीज से, क्योंकि काफी मेहनत किए थे उसके पीछे।
0: राजधानी लखनऊ और आसपास के जनपदों में बीते 24 घंटों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में आगामी 2 दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कल राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ भारी वर्षा का अनुमान जताया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अयोध्या के श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के 8 आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत मंजूर। सर्वोच्च न्यायालय ने मामले से जुड़ी जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से किया इनकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीलीभीत में 569 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमि और नागरिकता प्रमाण पत्र किए प्रदान। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से दी छूट। और प्रदेश में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल, कल से राज्य के कई हिस्सों में शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: बड़ी बहू, ये तुम्हारे नाम।
3: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी, हाँ, आपके नाम?
5: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
5: क्या RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ का प्रसारण, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। आज इस कार्यक्रम में पहले सुनिए गुर्दे के ट्यूमर, इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव से आशीष चतुर्वेदी की भेंट वार्ता।
8: गुर्दा यानी किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। शरीर में लाखों प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं और उनका जो बाई प्रोडक्ट है, उनका प्रोडक्ट है, वो एक्सक्रीटा के रूप में किडनी उसको फिल्टर करती है और उसके बाद बाहर शरीर के निकलता है। इसी कड़ी में आज हमारे साथ है प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव साहब, और आज डॉक्टर साहब से हम जानेंगे गुर्दे में सिस्ट के बारे में, गुर्दे के ट्यूमर के बारे में। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम।
9: नमस्कार श्रोताओं।
8: सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, गुर्दा कितना महत्वपूर्ण अंग है?
9: देखिए, भगवान ने हमको दो किडनी दी गई है जिसको हम हिंदी में गुर्दा भी कहते हैं। ये बेसिकली अपने शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है उनको निकालने में काम करता है, साथ के साथ शरीर में मेटाबॉलिक जो चेंजेज हैं जैसे एसिड वेस्ट

0: बैलेंस उसके काम आता है, इवन आपकी आरबीसी जिसको हीमोग्लोबिन बढ़ाने के भी काम आता है, तो बहुत ही जरूरी है। इसका मतलब पूरे शरीर में समन्वय। सपोज करिए पानी शरीर में ज्यादा है तो उसको निकालने में भी ऑटोमेटिकली ये वर्क करता है, और कभी कभी हम डिहाइड्रेटेड हैं तो शरीर में पानी को कंजर्व भी करता है। तो मेन हमारा ऐसा तंत्र है जो कि शरीर की होम्योस्टेसिस एवं शरीर में जो अवशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने में काम करता है।
1: डॉक्टर साहब, गुर्दे में जो ट्यूमर है वो क्या होती है?
0: अमूमन लोग गुर्दे में एक पथरी या गुर्दे फेल होना, इसके बारे में, ट्यूमर के बारे में, या जिसको हम कैंसर कहते हैं। अब हर गांठ कैंसर नहीं होती है, ये ट्यूमर के बारे में जैसे भी हम जानते हैं कि अनरेगुलेटेड कोई सेल्स की ग्रोथ होने लगे तो उसको हम ट्यूमर कहते हैं। तो लोगों को लगता होगा कि भाई गुर्दे में तो पथरी होती, ट्यूमर? हाँ जी, ट्यूमर हो सकता है। और इसका हमने जो एविडेंस देखे, जितने भी एडल्ट्स में ट्यूमर होते हैं उसके 2-3% लोगों में ये ट्यूमर पाया जाता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, क्या सिस्ट और ट्यूमर भी सेम है?
0: कई बार कुछ लोग ट्यूमर को बिल्कुल लेके परेशान नहीं होते, लेकिन कुछ लोग सिस्ट के लिए बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। क्या होता है कि 10% तक अपने नेफ्रॉन खाली काम नहीं करते, वो बाद में रिजर्व के रूप में यूज होते हैं। तो जैसे जैसे हमारी एजिंग होती है तो वो छोटी छोटी झिल्ली बना लेते हैं जिसको हम रीनल सिस्ट कहते हैं। अल्ट्रासाउंड में हमें सिस्ट मिल गई तो लोग उसी में परेशान हो जाते हैं ट्यूमर है कि नहीं है। तो अगर सिस्ट आ रही है, क्योंकि अब अल्ट्रासाउंड हर जगह अवेलेबल है, वो तो टाइप लिख देते हैं। अगर उन्होंने सिंपल रीनल सिस्ट टाइप 1 टाइप 2 तक लिख दिया तो आप परेशान ना हो। टाइप 3 या 2F और 4 के लिए वो आगे सीटी स्कैन वगैरह कराते हैं, तो उसका कंफर्मेशन। ये नहीं कि सिस्ट देखते ही हम परेशान हो गए। अमूमन ओपीडी में अल्ट्रासाउंड कराया आपने, किसी लिए सिस्ट आ गई, अरे साहब सिस्ट से हमें ट्यूमर तो नहीं है, बिल्कुल नहीं होता अंटिल अनलेस कुछ उसमें स्पेसिफिक फाइंडिंग ना हो। और ये कैसी कंडीशन है? एक ऑटोसोमल डोमिनेंट किडनी डिजीज कहलाती है, उसमें हेपेटिक सिस्ट, स्प्लेनिक पेनक्रियाटिक सिस्ट, वो मल्टीपल फॉर्म, वो जेनेटिक रूप होता है, वो एक अलग तरह की बीमारी होती है, वो फैमिली में चलती है।
1: अगर किसी को गुर्दे में ये जो गांठ है किसी को है तो क्या लक्षण प्रकट होते हैं?
0: देखिए, पहले के जमाने में हमें 10% लोग ही मिलते थे जिनमें की एक बड़ी सी गांठ आपको नहाते वक्त या किसी वक्त आपने छू ली उसके बाद, या पेशाब में खून आना, या एक जो सुप्रा क्लेविकुलर लिम्फ नोड, ये पहले के जमाने की बात कर रहा हूँ, एक गांठ आ जाना गले के बगल में सुप्रा क्लेविकुलर रीजन में, एवं एक बार अनएक्सप्लेन्ड फीवर। आजकल क्या हो रहा है कि हम अल्ट्रासाउंड ऑफन कराते रहते हैं, प्लस अवेलेबिलिटी हो गई, तो हमें अर्ली स्टेज में भी एक गांठ टाइप की मिल जाती है। सिस्ट में क्या होता है, एक बुल्ला टाइप का होता है पानी का, जैसे बुलबुला कह लीजिए, लेकिन जो ट्यूमर होता है उसमें सॉलिड कंपोनेंट कुछ ना कुछ उसके अंदर मिलेगा, या अमूमन अल्ट्रासाउंड वाले लिख देते हैं इंक्रीज्ड वास्कुलरिटी। तो मेन लक्षण होते हैं गांठ, पेशाब में खून आना और अनएक्सप्लेन्ड फीवर या दर्द होना।
1: डॉक्टर साहब, ये जो सिस्ट है ये किडनी के किस भाग में, कहां पर?
0: देखिए, किडनी के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है कॉर्टिकल जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, दूसरा होता है पेल्वी कैलिसियल सिस्टम जिसको कैलिक्स, पेल्विस या यूरेटर, इसकी लाइनिंग अलग होती है और इनकी अलग होती है। रीनल ट्यूमर्स या जिसको हम हाइपरनेफ्रोमा कहते थे पुराने जमाने में, वो रीनल कॉर्टेक्स से आते हैं। और एक ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा होता है जो कि कलेक्टिंग सिस्टम, जैसे यूरिन उन्होंने फिल्टर कर दी, उसके बाद कलेक्ट होती है कैलिक्सिस के थ्रू पेल्विस, पेल्विस से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लड। तो ये 2 जो आरसीसी कहेंगे, जिसको मतलब किडनी ट्यूमर कहेंगे, वो कॉर्टेक्स से आया तो हाइपरनेफ्रोमा, अगर वो कलेक्टिंग सिस्टम जहां पे अमूमन पथरी बनती है उसमें आया तो उसको हम अपर ट्रैक्ट टीसीसी कहते हैं।
1: तो जिन लोगों को ये टेंडेंसी है कि स्टोन काफी बन रहे हैं, तो क्या इस तरह की संभावना, इस तरह के ट्यूमर या सिस्ट की संभावना ज्यादा रहती है?
0: देखिए, कोई भी चीज या कोई भी लाइनिंग बार बार अगर इरिटेट होगी, उसको बार बार कोई तंग करेगा, तो अमूमन वो अपने आप रिएक्ट करेगी, जिसमें आपका टीसीसी का इंसिडेंस बढ़ जाता है जो कि पेल्विक एलिसियल सिस्टम में होता है।
1: कितना सामान्य है
0: ये? उतना सामान्य नहीं है, जो हम लिटरेचर पढ़ते हैं उसमें 2-5% तक लोगों में पाया जाता है एडल्ट पॉपुलेशन में, और आदमियों में ज्यादा है, 2:1 का रेशियो।
1: अच्छा, अगर 2 आदमी में है तो एक महिला में होगा। बच्चों की बात करें,
0: ये बेसिकली आपका 15 साल से कम बच्चों में देखा जाता है, जिसको हम विल्म्स ट्यूमर कहते हैं। वो भी क्या होता है, जब हमारी किडनी बन रही होती है तो किडनी के कुछ डेवलपमेंट वाले पार्ट रह जाते हैं, उनसे डेवलप होता है, वो ट्यूमर कहते हैं। अब 15 साल तक के बच्चों को जब हम स्क्रीन करते हैं तो मोस्ट कॉमन 3.5 साल से 5 साल के बीच में बच्चों में पाया जाता है। पता कैसे चलता है? माँ नहला रही है, चूंकि बच्चों में उतना मस्कुलेचर नहीं होता है, तो एक गांठ पालपेट हो गई, या बहुत बड़ी सी गांठ है, या पेशाब में खून आ गया, या खाना पीना उसने बंद कर दिया, या उसका फीवर नहीं जा रहा है,
1: अच्छा।
0: तो पता चलता है।
1: डॉक्टर साहब जांचे
0: देखिए, मोस्ट कॉमन अल्ट्रासाउंड, कुछ नहीं करना आपको, बस जाके डॉक्टर के पास जाना है,
1: होल बॉडी
0: होल एब्डोमन वो लोग कर लेते हैं। अमूमन आप भी चाहते हैं कि हमारी एक बार जांच हो जाए, तो जांच हो, अगर निकलती है गांठ तो उसको आगे हम उसको वो करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं, या उसको हम 100% बनाने के लिए कहते हैं, तो हम एक सीटी स्कैन

0: होता है जिसमें हम कंट्रास्ट देते हैं। और गुर्दे के बारे में बताऊं, ये अगर गांठ है तो इसमें बायोप्सी कम होती है, हमें रेडियोलॉजी के लिए मतलब सीटी स्कैन है एमआरआई से हमें 100% तक पता चल जाता है।
1: इस समस्या के लिए उपचार क्या उपलब्ध है?
0: देखिए, अगर यही है कि आप जल्दी आए तो जल्दी, आजकल बहुत सारी विधियां आ गई हैं। पहले हम पूरा गुर्दा निकाल देते थे, फिर हम इस ट्यूमर को स्टेज वाइज करते हैं, मोटा मोटा है 7 सेंटीमीटर से नीचे, 7 सेंटीमीटर के ऊपर और आगे फैला हुआ, तो T1, T2, T3, T4 इस तरह से स्टेज, जैसे आप लोग भी स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 कहते हैं। अब इसमें भी अगर less than 4 सेंटीमीटर का ट्यूमर है आपका और वो पोलर है, जिससे हमें पता चलता है कि हम किडनी बचा सकते हैं, इसको हम पार्शियल नेफ्रेक्टमी कहते हैं, तो किडनी बचाते हुए ट्यूमर निकाल सकते हैं। भगवान ने हमें 2 किडनी दी है, अगर किडनी इन्वॉल्व भी हो रही है तो उस किडनी को अर्ली अगर हम ट्रीटमेंट कराएंगे अपना तो अच्छी रिकवरी है, 90% तक लोग सर्वाइव करते हैं, फिर फॉलोअप में चलते रहते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, चलते चलते बचाव के लिए क्या करें और हमारे श्रोताओं के लिए आपका क्या संदेश है?
0: देखिए, संदेश सब लोगों को पता है, स्मोकिंग से आप या टोबैको को किसी भी फॉर्म में आप लेना बंद करें, अपना वजन सही नियंत्रित रखें, एक्सरसाइज करें और अपना ब्लड प्रेशर अगर है तो उसको रेगुलरली अपना ट्रीट कराते रहें। प्लस अगर कोई भी ऐसा लक्षण आवे तो अपने आप को एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। अब हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, क्वालिफाइड लोग हैं, वो आपको सही दिशा या सही रेफर करेंगे आपको। देखिए, हमारी ओपीडी मंगल और शुक्रवार को होती है, वैसे केजीएमयू में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में सोमवार से लेकर शनिवार तक ओपीडी होती है, आप कभी भी आके अपने लक्षणों को दिखा सकते हैं।
1: और सारी जांचें हैं,
0: सारी जांचें इन हाउस होती हैं, सब कुछ अंदर एक छत के नीचे हो जाता है।
1: डॉक्टर साहब, तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आप हमारे श्रोताओं के समक्ष है और अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, अपने स्किल से हमारे श्रोताओं को आपने लाभान्वित किया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: अभी आप गुर्दे के ट्यूमर इस विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर मनोज कुमार यादव से आशीष चतुर्वेदी की बातचीत सुन रहे थे। स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए वार्ता, फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। वार्ताकार हैं डॉक्टर विकास कुशवाहा।
3: सभी श्रोताओं का नमस्कार। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है जिंदगी को आसान बनाती फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों में से एक है, जो कि लोगों को उनके शारीरिक कार्य, गतिशीलता और जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखने या उन्हें बहाल करने या सुधारने में मदद करती है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में जहां गतिहीन जीवन शैली, तकनीकी निर्भरता, बढ़ती उम्र की आबादी और पुरानी बीमारियां बढ़ रही हैं, फिजियोथेरेपी व्यक्तियों को स्वस्थ, अधिक सक्रिय और स्वतंत्र जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। फिजियोथेरेपी एक स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय है जो कि शारीरिक अक्षमताओं और गति विकारों के आकलन, निदान, उपचार और रोकथाम पर केंद्रित है। फिजियोथेरेपी के अंतर्गत फिजियोथेरेपिस्ट वैज्ञानिक सिद्धांतों और साक्ष्य आधारित तकनीकों जैसे कि चिकित्सीय व्यायाम, हाइड्रोथेरेपी, हीट थेरेपी, मुद्रा सुधार, इलेक्ट्रोथेरेपी, रोगी शिक्षा और जीवन शैली में बदलाव आदि के द्वारा शारीरिक कार्यक्षमता में सुधार लाते हैं। फिजियोथेरेपी का प्राथमिक लक्ष्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं है, बल्कि व्यक्तियों को उनकी अधिकतम कार्यात्मक क्षमता प्रदान करने और दैनिक गतिविधियों में पूरी तरह से भाग लेने के लिए सक्षम बनाना है। फिजियोथेरेपी से कई सारे लाभ होते हैं, जैसे कि दर्द कम करना, उसका प्रबंधन, गतिशीलता या मूवमेंट और लचीलेपन में सुधार, चोट और सर्जरी से स्वस्थ होना, दिव्यांगता की रोकथाम करना, बेहतर शारीरिक मुद्रा और शारीरिक फिटनेस में वृद्धि। आजकल फिजियोथेरेपी की सुविधाएं अस्पतालों, पुनर्वास केंद्रों, स्कूलों, खेल सुविधाओं, कार्यस्थलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, यहाँ तक की आवश्यकता पड़ने पर घरों में भी उपलब्ध है। अब हम बात करते हैं दैनिक जीवन में कुछ आम शारीरिक समस्याओं की, जिनसे फिजियोथेरेपी में बहुत तक हम जिनको सुधार सकते हैं या ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्दन के दर्द या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। आजकल जैसा कि तकनीकी के विकास के कारण स्मार्टफोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का उपयोग और गलत तरीके से उठने बैठने की वजह से गर्दन दर्द बहुत तेजी से आम होता जा रहा है। इसका सामान्य कारण लंबे समय तक डेस्क पे काम करना, मोबाइल फोन का अत्यधिक यूज करना तथा उम्र के साथ साथ होने वाले शरीर में बहुत सारे डिजनरेटिव चेंजेस भी हैं। लक्षणों में देखा जाए तो गर्दन में अकड़न, सिरदर्द हो सकता है, कंधे में दर्द, बाहों में झुंझुनी या सुन्नपन हो सकता है, या रेंगता हुआ पेन हो सकता है, या हाथों में कमजोरी भी हो सकती है। फिजियोथेरेपी उपचार के अंतर्गत हम लोग सबसे पहले पोस्चरल करेक्शन या मुद्रा सुधार करते हैं, गर्दन को मजबूत करने वाले व्यायाम, स्ट्रेचिंग व्यायाम या और भी दर्द निवारक उपचार फिजियोथेरेपी उपचार के अंतर्गत उपलब्ध है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या जो फिजियोथेरेपी के द्वारा ठीक की जा सकती है वो है पीठ दर्द या कमर दर्द। कमर दर्द विश्व स्तर पर दिव्यांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। लगभग हर कोई जीवन में कभी न कभी पीठ दर्द का अनुभव करता है। इसके सामान्य कारणों में गलत तरीके से

0: बैठना, गतिहीन जीवन शैली, मोटापा, भार या वजन उठाने की गलत तकनीक या मांसपेशीय कमजोरी हो सकती है। इसके लक्षणों में से सम्मिलित है कमर में दर्द होना, खड़े होने या चलने में कठिनाई, दर्द का पैरों के पीछे की तरफ रेंगना, मांसपेशियों में अकड़न, पैरों में दर्द का फैलना और मांसपेशी कमजोरी। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में हम पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले व्यायाम, मुद्रा प्रशिक्षण, लचीलेपन के व्यायाम, पीठ की देखभाल संबंधी शिक्षा और जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं उनमें बदलाव करके, अपने जीवनचर्या में बदलाव करके हम पीठ दर्द को दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है घुटने का दर्द या ऑस्टियोआर्थराइटिस। उम्र बढ़ने के साथ साथ घुटने का दर्द आम होता जा रहा है, खास करके ऑस्टियोआर्थराइटिस के कारण। चलने फिरने में, पालथी मारकर बैठने में दिक्कत, सीढ़ियां चढ़ने में दिक्कत, जोड़ों में अकड़न, गतिशीलता में कमी, ये सारे ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य लक्षण हैं। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में जांघ की मांसपेशियों को मजबूत करना, गति सीमा बढ़ाने वाले व्यायाम, संतुलन का प्रशिक्षण, क्योंकि दर्द की वजह से व्यक्ति का संतुलन बिगड़ जाता है इस वजह से, और इसके साथ ही साथ वजन का प्रबंधन करना, मोटापा एक बहुत बड़ा कारण है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और चलने के तरीके में सुधार। इन सारी विधियों से हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को कम कर सकते हैं और जिस स्थिति में है वहां रोक सकते हैं। चौथा सबसे बड़ी कंडीशन है फ्रोजन शोल्डर की, जिसमें मध्यम आयु वर्ग के और बुजुर्ग व्यक्तियों में फ्रोजन शोल्डर की समस्या बहुत अधिक देखने को मिलती है, और जो डायबिटिक पर्सन है, मधुमेह से रोगी है, उनमें विशेषकर से यह प्रभावित करता है। इसके लक्षणों में सम्मिलित है कंधे में दर्द, बांह उठाने में कठिनाई, कंधे की गति का सीमित होना, साथ ही साथ रात में सोते समय कंधे में बहुत तेज दर्द होना। फिजियोथेरेपी प्रबंधन में जोड़ों की गतिशीलता बनाए रखना, जोड़ों को मजबूत करने वाले व्यायाम और विधियां सम्मिलित हैं। इसी के साथ साथ तमाम बच्चों से संबंधित समस्याएं, जैसे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार या सेरेब्रल पैल्सी में भी फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तंत्रिका संबंधी समस्याओं में भी फिजियोथेरेपी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। बच्चों की शारीरिक जो बीमारियां हैं उनमें भी, जीवन शैली संबंधी जो बीमारियां हैं उनमें भी फिजियोथेरेपी, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जो दिनचर्या है उसमें मधुमेह, मोटापा, उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोग बहुत सामान्य है। तो हम कह सकते हैं कि फिजियोथेरेपी केवल व्यायाम और पुनर्वास से कहीं अधिक है। यह एक ऐसी विधा है जो कि गतिशीलता को बहाल करने, दर्द को कम करने, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए समर्पित है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि फिजियोथेरेपी बच्चे से लेकर वृद्धजनों, सारे उम्र के व्यक्तियों के लिए लाभप्रद है, और जैसे जैसे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास जारी है वैसे वैसे फिजियोथेरेपी में भी तकनीकों का विकास बढ़ता जा रहा है। अंततः फिजियोथेरेपी वास्तव में व्यक्तियों की शारीरिक क्षमताओं को प्राप्त करने, आत्मविश्वास पुनः प्राप्त करने, आत्मनिर्भरता बनाने तथा कार्यात्मक रूप से स्वतंत्र बनाने और सक्रिय जीवन शैली का आनंद लेने में मदद करके जीवन को आसान बनाती है। आवश्यकता पड़ने पर एक योग्य और कुशल फिजियोथेरेपिस्ट की मदद लें और स्वस्थ रहें। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि जहाँ पर योग्य फिजियोथेरेपिस्ट उपलब्ध नहीं है वहाँ पर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट से सीखकर आप घर पर भी कुछ व्यायाम कर सकते हैं, जिनसे आप अपने जीवनचर्या को सक्रिय बना सकते हैं और सक्रिय जीवन शैली का लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद।
1: फिजियोथेरेपी से होता सहज जीवन। अभी आप डॉक्टर विकास कुशवाहा की ये वार्ता सुन रहे थे। अब आज का स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम समाप्त होता है।

एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। इस समय शाम के 7:46 हुए हैं। अब प्रस्तुत है बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। इस कार्यक्रम में पहला देवी गीत आपको सुनवा रही है

0: काय भैया कछु अनमने दिखा रहे का बात है
1: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
0: है अपन को भैया पता नहीं आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
1: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
0: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठक है विशेषज्ञ भैया।
1: कैसे पाए समस्या को समाधान?
0: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
1: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
0: फोन नंबर है 0510-232-0068।
1: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हुए हमारे किसान भैया पर।

श्रोताओं, ये समाज पर आधारित साक्षरता गीत आप सुन रहे थे परमलाल व साथियों की आवाज में। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं धर्मेंद्र पाल की आवाज में।

श्रोताओं, ये लोकगीत आप सुन रहे थे धर्मेंद्र पाल की आवाज में। इसी के साथ ही खुशबू माटी की कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम।

श्रोताओं, हवा महल में आज आपको सुनवाते हैं महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक आनंद किशोर माथुर।

0: इतनी भीड़ है आजकल बाजार में, एक के बाद एक आदमी, मीलों तक चले जाओ, दुकान ही दुकान, और हर एक दुकान के अंदर 8-10 ग्राहक, और फिर कहीं कहीं तो क्यों में ही खड़े रहो
1: आप। अजी तो आप खड़े ही रहे क्यों में, या कुछ काम भी करके आए हैं? अरे ये क्या, ये दोनों थैले तो खाली है।
0: अरे ठहरो भाई ठहरो, मैं देता हूँ सामान, ये पड़ा, ये रहा साबुन तेल, और ये रहा मूंग की दाल, मूंग पापड़ मिर्ची, और ये सब्जियाँ भिंडी टमाटर।
1: उड़द की दाल लाए? इमली भी नहीं?
0: इमली
1: फिर क्या खाक लाए हो, 5 साल हो गए शादी को, अभी तक बाजार से घर गृहस्थी का सामान लाने का भी होश नहीं है।
0: अरे तो तुम चलती ना मेरे साथ,
1: मुझे मरने की फुर्सत हो तब ना, हर महीने समझा समझा कर

0: 왔는데 딱 이렇게 정말 기르기로 했는데 그리고 왜 정말 너무 웃겨요.
1: 몰라. 아, 차 자꾸 아차. 아, 빠따 인도는 그래서 잘라.
2: 아, 틱타케. 무슨 뭐 두마리 밥이 기타비에 살아 나름 잘라요.
1: 그래서?
2: 아니, 밥이 우리 야르. 그 पिछले दिनों मेरी साली की शादी थी हमें जोधपुर जाना पड़ा अब गाड़ी में आजकल कितनी भीड़ भाड़ होती है कि पूछो ही मत
1: हां यार भाई पता नहीं आखिर इसका हश्र होगा क्या
2: और फिर शादी में खाने पीने का मामला जरा अपना ढीला ही रहता है यार
1: अरे भाई किसको परवाह रहती है लेकिन यार ससुराल की शादी की बात थी तूने माल जरूर मारा होगा हां
2: अरे क्या खाक माल मारा होगा सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया
1: अच्छा हाँ। अच्छा हुआ भाई आजकल चेंज की वैसे भी शॉर्टेज है
2: क्या तुझे हर वक्त मजाक सूझता रहता है
1: हाँ? अच्छा अच्छा अब बता ऐसी क्या बात हो गई थी क्या किसी से झगड़ा हो गया
2: अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी लेकिन यार पैसे का पैसा गया और बुद्धू के बुद्धू बने
1: अरे सो तेरे लिए कौन सी नई बात है
2: फिर वही बात
1: अरे सॉरी सॉरी सॉरी अच्छा अब बता क्या हुआ
2: होता क्या वही ढाक के तीन बात वही फिल्मी स्टोरी
1: लड़के का बाप कोई फिल्मी प्रोड्यूसर होगा है
2: अरे फिल्मी नहीं जुल्मी कहो जुल्मी हीरो पर बैठने से पहले उसने एक परवाना ससुर साहब के हाथ में पकड़ा दिया
1: क्या कहा परवाना पकड़ा दिया सुनते हैं परवाने तो मंडराया करते हैं क्या उसने किसी परवाने को पकड़कर आपके ससुर साहब को इनायत कर दिया
3: कैसे दो दिन के बच्चे बन रहे हो
2: अरे परवाने से मेरा मतलब है स्लिप कागज की स्लिप और उसमें ये लिखा कि अगर 2 लाख रुपए उन्हें नकद इसी वक्त नहीं दिए तो वो बारात वापस ले जाएंगे
1: क्या राइटिंग में मेरा मतलब ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया
2: हाँ जनाब ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हमारा तो सारा मूड ही बिगड़ गया सोचा था कि जोधपुर घूमेंगे कुछ दिन ससुराल में रहेंगे सारे पैसे तो वहां

0: पेड़ चढ़ा दिए और यहाँ आकर छुट्टी और कैंसिल करानी पड़ी।
1: हो भाई जग्गू, मुझे तुमसे बड़ी हमदर्दी है कि तेरा दिल टूट गया, लेकिन प्यारे अब ये कॉफी का दिल भी ठंडा हो रहा है, इसे मत तोड़। हाँ ले ले कॉफी वॉफी भी। अरे सुना तूने, वो वर्मा ने शादी कर ली।
0: अच्छा, तो इसमें गुनाह क्या हो गया भैया, हर लड़का शादी करता है।
1: अरे मगर ब्लैक एंड व्हाइट में शादी की है।
0: क्या मतलब?
1: अरे मतलब वही कि अग्नि को साक्षी मानकर नहीं, वर्मा ने सिविल मैरिज की है।
0: यानी कि राकेश अब हर बात लिखित में होने लगी, जैसे एक दूसरे को एक दूसरे की जवान में विश्वास ही नहीं रहा। कैसा समय आ गया है जबकि आदमी की जवान की साख की कोई कीमत ही नहीं रही।
1: और एक वो जमाना था जब जवान से बेटी बेटी तक पराया हो जाया करते थे।
0: प्यारे समय ही ऐसा है, ब्लैक माने काला और व्हाइट माने सफेद, यानी काली रात और सफेद दिन। ये रात और दिन का ही तो चक्कर है जो हम सबको चक्कर दे रहा है
1: और हम इसकी चक्की में पिस रहे हैं। भाई कबीर ने ठीक ही कहा है कि चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए और दो बाटन के बीच में साबुत बजाने को। अरे अरे पर तू उठ कैसे गया भाई, यहाँ क्या देर हो रही है?
0: हाँ भैया एक जगह जाना है। अब सुन यार, अब वो बात यह है कि 50 रुपए हो तो दे देना, कुछ काम है। अब काम नहीं बना तो वापिस कर दूंगा।
1: अरे 50 तो नहीं है, पर तू ऐसा कर इसमें से 40 रुपए ले ले।
0: ना, ना, 40 दे दे। कोई बात नहीं, अभी 40 चलेंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, टाटा बाय बाय।

0: रुपए लेकर चलता बना। अब मैं जरा वो लिस्ट निकालूं। यहाँ भी नहीं है, इस जेब में देखूं, यहाँ भी नहीं है, शायद घर पे रह गई होगी। पहले घर चलता हूँ, शीला क्या कहेगी, फिर सामान कैसे लूंगा। हाँ याद आया, पढ़ाई दोहरा लूंगा, आ से अरबी, आ से आलू, ठीक है एक एक किलो ये दोनों ले लूंगा। अरे भैया अरबी देना और आलू देना। बाबूजी कहिए क्या दू,
1: 3 रुपया इंजन काला, 3 रुपया ई से इंजन और ग से गुड्डा, ख से खरगोश।
0: ठीक है ठीक है, ये तीनों ले जा। अरे भैया ये इंजन, गुड्डा और खरगोश ये तीनों दे देना, ये ले, ये ये ये ले रुपए।
1: हाँ ये ठीक किया। और हाँ हाँ हाँ, ये रसगुल्ले बहुत बढ़िया हैं, और ये सेब दोनों एक एक किलो ले लेता हूँ। रह से रसगुल्ला, से सेब। अब बचे 2 रुपए, ठीक है हो गया बजट पूरा। शीला भी क्या याद रखेगी कि मैंने उसी के पढ़ाए हुए पाठ के हिसाब से सामान खरीदा है। अब घर चलता हूँ।
0: ये लो सामान।
2: अरे बड़ी जल्दी आ गए, पर ये क्या, ये इंजन और ये खिलौने, ये सब तुम्हें लाने को किसने कहा था?
3: तुमने, मैं अपनी मर्जी से कोई सामान नहीं लाया हूँ। हाँ
2: क्या, ये इंजन, गुड्डा, ये घर गृहस्थी है या कोई नुमाइश, और ये मिठाई का पैकेट, ये सेब, ओफो सारी तनख्वाह चाटने में ही फूंक दोगे क्या? मैं कहती हूँ आखिर तुम्हें समझ कब आएगी, ना अजवाइन लाए, ना नमक, ना हल्दी। जरा लाना तो वो लिस्ट, वो जो मैंने तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में दिया था।
0: वो यही कहीं होगी। पर प्रिय तुम अपनी पढ़ाई याद कर लो ना।
2: क्या खाक याद कर लूँ, क्या जगमोहन ने भी याद नहीं दिलाया कुछ?
4: मैं अंदर आता हूँ। करे
0: अरे आओ आओ, और अपने दोस्त का जनाजा देखते जाओ। सुना था गए हुए वापस नहीं आते, पर अब तो वो भी वापस आने लगे। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो, बैठो बैठो यहाँ बैठो।
4: अरे बैठने नहीं आया राकेश, मैं तो कुछ देने आया हूँ।
0: अरे अरे तो रुपए रुपए ही दोगे ना?
4: रुपए, कौन से रुपए?
0: अरे वही जो तुमने मुझसे रेस्टोरेंट में लिए थे।
4: रेस्टोरेंट में? यार देख मजा

0: मजाक ठीक नहीं है।
1: देख मजाक तो तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। अभी एक घंटे पहले रेस्टोरेंट में तूने मुझसे रुपए मांगे थे और मैंने दिए थे, और तूने कहा था कि काम चल जाएगा।
2: काम तो चल जाता प्यारे, मगर तुमने रुपए दिए कहाँ? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास?
1: क्या मतलब?
2: मतलब ये कि आपने जो मुझे रुपए दिए उसकी कोई रसीद है ब्लैक एंड व्हाइट में? खुद तो घर के सामान की लिस्ट तक ब्लैक एंड व्हाइट में मांगते हो, और पैसे लेने देने के बाद यूं ही फोकट में कर लेते हो। वाह क्या कमाल है
1: यार। एक तो तू मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है और ऊपर से मुझसे मजाक कर रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।
3: आहा, अपनी याददाश्त तो ठीक नहीं, और दूसरों को कहते हो हर बात लिखित यानी ब्लैक एंड व्हाइट में लिया करो। मैंने घर के सामान की लिस्ट दी थी, वो भी न जाने कहाँ फेंक दी तुमने।
1: अरे तो मैं क्या करूँ, मुझे याददाश्त भी तो भगवान ने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं दी। अब रखो तुम घर का सामान और रखो तुम रुपए, मैं तो चला। हाँ
2: अरे अरे मेरे भाई, ऐसे कहाँ चल रहा है, अब केवल रुपयों के लिए इतनी बेरुखी? ये लो
1: अपने रुपए।
3: अरे ये तो सामान की लिस्ट है जो मैंने नहीं दी थी।
1: पर ये तुम्हारे पास कैसे पहुँच गयी जग्गू?
2: इसलिए कि तुम्हारी याददाश्त तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं मिली, तुमने रेस्टोरेंट में रुपयों के साथ मुझे ये लिस्ट भी दे दी
1: और तूने इसे ले लिया। और रुपयों का तूने क्या किया बच्चू?
2: उसका तो मैं ये सामान ले आया जो तुम लाना भूल गए। आखिर मैं करता क्या, ये ब्लैक एंड व्हाइट में जो थी।

हवा महल में आज आप सुन रहे थे महावीर सिंघल की लिखी झलकी ब्लैक एंड व्हाइट। निर्देशक थे आनंद किशोर माथुर। ये झलकी आकाशवाणी जयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी।

एफएम 101 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर, जिसमें आज की कलाकार हैं अलका याग्निक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का यह पहला गीत आप सुन रहे थे जूली फिल्म से। आवाज थी अलका याग्निक की और संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत का, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर, जिसमें आज ही कलाकार हैं अलका याग्निक।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे राजफिल्म से। आवाज थी अलका याग्निक की और संगीत था नदीम श्रवण का। गीत को लिखा था समीर ने। कार्यक्रम में आगे भी आपको और भी गीत सुनवाएंगे, उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: राजखेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम, और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित।

0: समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है,

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे तराश फिल्म से, आवासीय अलका याग्निक की। संगीत दिया था संजीव दर्शन ने और गीत को लिखा था समीर ने। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत, जो कि आधारित है एक ही कलाकार पर, जिसमें आज की कलाकार हैं अलका याग्निक।

श्रोताओं, कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सुन रहे थे तेरे नाम फिल्म से, आवाज थी अलका याग्निक की और गीत को लिखा था समीर ने, संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने। इसी गीत के साथ ही फिल्म संगीत एक ही कलाकार पर आधारित कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। एफएम 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।

0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है, जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है, जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की

0: वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। आईसीसी ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। यह मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा।

0: में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 बजे से खेला जाएगा, वहीं देर रात 2 बजे जर्मनी और पराग्वे आमने सामने होंगे। अमेरिका के फुलटन में किदाम्बी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के उपविजेता रहे। पुरुष सिंगल्स फाइनल में श्रीकांत को चीनी ताइपे के सू लियांग से हार का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, बिहार, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरलम और माहे के कुछ हिस्सों में कल तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन में ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में भी तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mushtaba with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at Defence Investiture Ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Narendra Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Returns home after successful visit to island nation. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund to accelerate infrastructure investment. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of northeast, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. And now the news in detail. President Draupadi Murmu conferred gallantry awards to the personnel of the Defence Forces and the Indian Coast Guard during the Phase 2 of Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Vice President C.P. Radhakrishnan, Defence Minister Rajnath Singh, along with other Union Ministers and senior officials of Armed Forces, were also present on the occasion. A report.
2: The President conferred 7 Sarvottam Yudh Seva Medals, 30 Param Vishisht Seva Medals, 12 Uttam Yudh Seva Medals and 56 Ati Vishisht Seva Medals at the ceremony. Some recipients of the Ati Vishisht Seva Medal included Air Marshal Tarun Chaudhary, Lieutenant General Neeraj Varshne and Vice Admiral Anand Vai Sardesai. Recipients of the Sarvottam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Pratik Sharma, Air Marshal Nagesh Kapoor and Lieutenant General Rajiv Ghai. Among those honored with the Param Vishisht Seva Medal were Vice Admiral Sanjay Vatsayan, Lieutenant General Manjinder Singh and Air Marshal Ashutosh Dixit. Recipients of the Uttam Yudh Seva Medal included Lieutenant General Dhiraj Seth, Air Marshal Manish Khanna and Vice Admiral Tarun Sopti. The medals were awarded to personnel for distinguished service of an exceptional order with Soumya Sharan, Aman Yadav, Akashvani News, Delhi.
1: Prime Minister Narendra Modi has said that his visit to Seychelles has yielded significant results that will enhance the friendship between both the nations. The Prime Minister returned home after concluding his 3-day successful visit to the island nation. In a social media post, he said, "Over the last 50 years, the relationship between the two nations has been characterized by profound trust and mutual advancement, whereas the forthcoming 50 years will be shaped by innovation, sustainability and collective prosperity." Our correspondent has more on Prime Minister's visit.
3: On the final day of his visit, Mr. Modi visited and offered prayers at Navashakti Vinayagar Temple in Victoria. He also met the members of Indian diaspora there. He He also paid floral tributes at the Mahatma Gandhi statue situated at Peace Park.

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: लीजिए सुनिए दस्तक फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत तैयार किया है मदन मोहन ने।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार।

0: संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
1: कार्यक्रम के अंतिम पेशकश जुर्माना फिल्म से आवाज लता मंगेशकर की, संगीत आडिबर्मन का बोल आनंद बख्शी के।

अभी आपने लता मंगेशकर को फिल्म जुर्माना में सुना। आपके लिए कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

0: ये विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। एफएम 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 9:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग है उषा अग्रवाल का और प्रस्तुतकर्ता है अंजलि कुमारी।
1: हेलो झांसी।

0: sí.
1: आकाशवाणी झांसी के लोकप्रिय कार्यक्रम हेलो झांसी में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं उषा, स्वीकार कीजिए हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आप सभी कैसे हैं? वीरों की धरती का यही है अरमान, स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल हो हर इंसान। मौसम बदला है, आदतें भी बदलें, सेहत का हर पल ख्याल रखें। बरसात की दस्तक, बढ़ती उमस और बच्चे हैं विद्यालय जाने के लिए तैयार। ऐसे मौसम में जरा सी लापरवाही सेहत पर भारी पड़ सकती है। कुछ आसान बातों को अपनाएं और स्वस्थ रहें। बच्चों को रोज साफ पानी की बोतल दें, घर का ताजा और पौष्टिक भोजन खिलाएं। लंबे समय तक बाहर रखा हुआ भोजन खाने से बचें। साफ पानी का हर घूंट अच्छी सेहत का मजबूत सूत्र। स्कूल जाते समय रेनकोट या छाता साथ रखें। भीगने पर जल्द से सूखे कपड़े पहनें। उमस के कारण पसीना अधिक आता है। हाथ मुंह आदि को बार बार पानी से धोते रहें। शरीर में पानी की कमी को पूरा करने के लिए नमक शक्कर का घोल, शीतल पेय का सेवन अवश्य करें। सावधानी ही सुरक्षा है, स्वस्थ जीवन ही सबसे बड़ी पूंजी है। इस मौसम में जागरूक रहें, बच्चों को सुरक्षित रखें और स्वस्थ समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। साथियों, इस समय बारिश होते ही खेतों में हरियाली छा जाएगी और खरीफ की फसल बहुत अच्छी होगी। हमारे कुछ किसान भाइयों ने धान, मक्का, बाजरा या ज्वार, अरहर, या किसी ने उड़द, मूंग, तिल, सोयाबीन, या किसी ने मूंगफली या कपास आदि की खेती बो रखी होगी। ध्यान रखें किसान भाइयों, खरपतवार हटाएं समय पर, खेती होगी लहलहाकर। साथियों, हमें आपसे बहुत सारी बात करने की इच्छा हमेशा ही रहती है, पर अब स्टूडियो में बजने लगी है फोन की घंटी और अब हम बात करते हैं अपने पहले कॉलर से। तो आइए सुनते हैं उनकी दिल की आवाज। हेलो झांसी, कहाँ से बोल रहे हैं
2: जी? मैं प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बच्चों का, तहसील नागपुर, जिला उज्जैन से।
1: प्रेम सिंह जी, कैसे हैं आप?
2: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है। आप बताइए, आप कैसे हो?
1: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं प्रेम सिंह जी?
2: जी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
1: अच्छा, खेती किसानी का काम तो बहुत अच्छा और बहुत कठिन है।
2: हाँ जी, बहुत कठिन है, लेकिन आपको बताऊँ बहुत ही अच्छा होता है। हम खेत में काम करते रहते हैं, मोबाइल ऐप से आपके कार्यक्रम सुनते हैं आकाशवाणी के, और साथ में काम करते करते आकाशवाणी सुनते हैं तो काम का पता भी नहीं चलता, वो समय निकल जाता है।
1: ये तो अच्छी बात है। होता क्या है कि हमारा, हाँ, मनोरंजन

0: के साथ साथ हमारा काम भी होता रहता है और हमें ये बात भी सही है कि हमें समय का एहसास नहीं होता।
1: जी आपको बताऊं अभी हमारे यहाँ पे बरसात हो चुकी है।
0: अच्छा हो चुकी है, बहुत बढ़िया।
1: हाँ जी बरसात हो चुकी है और किसानों में काफी गुस्सा है, सोयाबीन की फसल लगा रहे हैं सभी लोग।
0: बहुत बढ़िया, बधाई हो आपको और आपकी फसल खूब अच्छी तैयार हो, है ना, और
1: हाँ
0: खूब आपको उत्पादन मिले, आपकी उन्नति हो, ऐसा हमारा ईश्वर से निवेदन है। अच्छा बताइए हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी फिल्म का नाम है गुरु और गाने के बोले बरसोरे मेगा मेगा।
0: वाह क्या गीत आपने सिलेक्ट किया है, चलिए हम सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गीत। प्रेम जी
1: थैंक यू सो मच।
0: हाँ जी प्रोग्राम में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

बापू मैं जा रही हूँ, जो मेरी मर्जी है वो आपको पसंद नहीं। अब देश आजाद है तो आपकी बेटी क्यों नहीं? मुझे मेरा साथी मिल गया है, चिंता मत करना, मैं खुश रहूंगी। आपकी सुजाता।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो झांसी, नमस्कार मैम जी।
0: हाँ जी नमस्कार, नाम बताइए।
1: राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं, कसवा कोरिया तहसील नवाबगंज जनपद से परेली से बोल रहे हैं मैम जी।
0: राजेंद्र गंगवार जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक है मैम जी, आप कैसे हैं और मौसम कैसा है उधर?
0: हम भी ठीक हैं, मौसम बहुत गर्म है और बहुत ही ज्यादा गर्मी पड़ रही है, उमस है, बारिश नहीं हो रही है। आपके यहाँ कैसा चल रहा है?
1: कोई हाल इधर है, उमस भरी, बहुत गर्मी पड़ रही है।
0: हाँ जी, और हाँ जी, हमारे श्रोताओं को बताएं कि भाई इस उमस भरी गर्मी में अपने आप को कैसे स्वस्थ रखें?
1: अपने आप स्वस्थ ऐसे रख सकते हैं मैम जी कि ज्यादा से अधिक पानी पिए और बाहर निकलने, धूप ज्यादा तेज हो तो बाहर ना निकले, और निकले तो अपने सर पर गमछा और साथ में एक पानी की बोतल लेके निकले।
0: हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस समय की गर्मी असहनीय होती है और थोड़ा सा भी आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और बताइए आप क्या करते हैं?
1: मैम जी हम तो जरी का काम करते हैं, और वैसे अगर अभी तो खैर प्लाट में काम चल रहा है, तो अभी प्लाट है अभी बेस पे।
0: जरी का काम करते हैं?
1: हाँ मैम,
0: जरी का काम तो बहुत बारीक काम है।
1: हाँ जी बारीक तो काम है, लेकिन क्या कुछ ना करना तो पड़ेगा ही।
0: हाँ मतलब बहुत ही आप एक बहुत अलग हटके काम कर रहे हैं आप, है ना? क्योंकि
1: हाँ जी, ये आँखों पे कुछ ज्यादा जोर पड़ता है तो उस पर ध्यान भी देना पड़ता है आँखों के लिए। मैम
0: बहुत बहुत, वही मैंने कहा ना कि बहुत अंदर घुस के या बहुत महीन काम है आपका, लेकिन खूबसूरती भी आपका काम ही देता है ना? जरी की साड़ी और जरी के कपड़ों का अपना ही महत्व है। और बताइए आज आप हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मूवी का नाम रहेगा हम है राही प्यार के, इसमें एक सॉन्ग है घूंघट की आड़ से दिल भर का।
0: हाँ जी बहुत अच्छा गीत है,
1: इसमें कुछ दोस्तों के नाम शामिल करना चाहते हैं।
0: हाँ जी बिल्कुल बताइए, अपने दोस्तों के नाम ले सकते हैं।
1: हाँ जी, सारुन नूर अंसारी जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, लोकेन्द्र वर्मा जी हैं, गौतम राय जी हैं, सोनू जी हैं, गंगा सावंकर जी हैं, आरजे पूनम जी हैं कानपुर से, और मैम जी आप हैं, और जितने भी ये लाइव प्रोग्राम सुनेंगे सभी को सॉन्ग डेडिकेट रहेगा मैम।
0: चलिए बहुत अच्छा लगा कि आपने सभी को शामिल कर लिया अपनी कॉल में। हम सुनवाते हैं राजेंद्र जी आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: हेलो झांसी कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं हम बहुत दिनों के बाद।
0: अच्छा, आपका स्वागत है।
1: समरुआ जिला संभल से ब्रजेश सिंह बात कर रहे हैं।
0: बताइए ब्रजेश जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया, गर्मी काफी बढ़ रही है, बारिश का समय है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही अभी।
0: सभी जितने भी श्रोता हैं सभी को यही दिक्कत है, यही परेशानी है कि बारिश नहीं हो रही है।
1: हो रहा है बारिश का, लेकिन आज सुबह हुई थी हल्की सी बूंदाबांदी जो की।
0: हाँ जी,
1: खासकर कुछ ऐसे मान लो धूप निकली है और खत्म हो गई हाथों हाथ।
0: बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ब्रजेश जी, हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का नाम है दिल आशिकाना।
0: बहुत अच्छा, और इसका
1: तो
0: गीत
1: गाने के बोल है, उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में, देखती रह जाएंगी सखिया तुम्हारी। और नाम लेना चाहेंगे थोड़े?
0: जी बताइए
1: जी। बीबी का नाम कविता, बेटी का नाम वैष्णवी, बेटे का नाम दिव्यांग, भाई किशन व सोमपाल, और हम आपके नियमित श्रोता ब्रजेश सिंह जिला संभल से।
0: चलिए ठीक है ब्रजेश जी, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो झांसी
1: जी। दीदी नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन नाम बताइए
1: जी? दीदी मैं ग्राम बिडोरा तहसील सेवड़ा जिला दतिया मध्य प्रदेश से लोकेंद्र गुर्जर।
0: अच्छा जी, हाँ जी लोकेंद्र जी, कैसे हैं आप?
1: बिल्कुल दीदी बढ़िया है। और आज मेरा कॉल 2 महीने बाद लग रहा है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि नियम का पालन करना हम लोगों को श्रोताओं को बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि नियम का पालन करेंगे तो अपना कॉल बिल्कुल शामिल जरूर होगा। और हर किसी श्रोताओं से यही बात कहूंगा दीदी आज तो, कि देखो टाइम जैसे अपन ही लोग टाइम नहीं देंगे तो नए नए श्रोता कैसे जुड़ेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है, आप हमारे नियमित श्रोता के साथ साथ अपने हमारे अन्य साथियों को इतने अच्छे से उनको समझाया जो मैं नहीं समझा पाती, और आपने खुद उसका पालन किया। बताइए तो लोकेंद्र जी क्या कर रहे हैं आजकल आप?
1: दीदी क्योंकि कृषक हूँ तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ हूँ, तो इस वक्त मैम धान की खेती की तैयारी चल रही है, बहुत माने बढ़ चुकी है। अब उसकी जैसे रोपाई होगी जुलाई के महीने में 10 तारीख से रोपाई होगी, उसके बाद धान लग जाएगी, वह धान की तैयारी चल रही दीदी।
0: चलिए अच्छा है, आपकी धान की फसल खूब अच्छी हो और खूब उन्नतशील फसल को आप काटें और अपने परिवार का भरण पोषण करें, उन्नति करें। आज बताइए हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी दीदी फिल्म का नाम है अजूबा, उसका एक गीत है मैं माटी का गुड्डा तू सोने की गुड़िया, वो वाला गीत सुना। कोई दोस्त है उनको डेडिकेट कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं, आकाशवाणी हम सभी के लिए है।
1: पहले तो आपको डेडिकेट रहेगा दीदी, उसके बाद हमारे दोस्त हैं और गोंदन से जो कि हमारे कुशवाहा जी हैं उनके लिए, और मेहरबान नांगल जी हैं, तो ब्रजकिशोर कुशवाहा जी, मेहरबान नांगल जी और सबनम आबासी हैं, हमारे सभी लोगों को गीत डेडिकेट रहेगा दीदी।
0: ओके, तो आप सभी को सुनवाते हैं हम आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो, नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कालवी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी, कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैडम, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। और यहाँ तो मैडम मानसून गिर गया, पानी खूब गिरा है।
0: अरे वाह, क्या बात है
1: जी। मतलब की पानी गिरा मैडम, थमा है, बादल किया है, और उसके बाद एकदम पूरा बादल किया, खूब पानी गिरा है मैडम। और परसों नरसों भी पानी खूब गिरा, तो दो दिन तो एक दो दिन तो ऐसे धूप किया, इसके बाद बादल किया, तो अभी मौसम इधर मानसून आ गया मैडम पूरा।
0: चलिए अच्छी बात है, कहीं तो बारिश हुई, क्योंकि हर जगह बहुत गर्मी है, बहुत उमस है।
1: जी मैडम, हम लोग तरफ भी था अभी।
0: हाँ जी,
1: तो अब ये बन गया है, वो आप लोगों की तरफ आजकल के अंदर में आने वाला है, क्योंकि
0: हाँ
1: समाचार
0: वही आ रहा है समाचारों में कि एक दो दिन में बारिश होगी।
1: जी मैडम,
0: तब सबको गर्मी से राहत मिलेगी।
1: जी
0: हाँ जी,
1: तो आज मैं अपने पसंद की गीत बता देता हूँ। फिल्म का नाम है मेरा साया होगा ना, नैनो में बदरा छाए।
0: बिल्कुल सुनाएंगे, बिल्कुल सुनाएंगे। कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका धन्यवाद।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो झांसी। हाँ नमस्कार मैडम।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं किले धारूर जिला बीड महाराष्ट्र से आपका रेडियो दोस्त सैयद जलाल भाई आपसे बात कर रहा हूँ मैडम।
0: ओके जलाल भाई, आपका तो बात करने का अंदाज ही एकदम अलग है। मुझे तो लगा जैसे कि आप मंच पे अभिनय कर रहे हो। कैसे हैं जलाल भाई?
1: एकदम बढ़िया, स्वस्थ और मस्त हूँ मैडम। आप कैसे हैं?
0: हम भी एकदम फर्स्ट क्लास हैं और आपसे बात करके तो एकदम खुश हो गए, प्रसन्न हो गए।
1: चलो ठीक है, हम भी बहुत खुश हुए मैडम।
0: चलिए अच्छी बात है, हम इसी तरह से प्रसन्न रहें और अपनी खुशियों को शेयर करते रहें।
1: बिल्कुल मैडम,
0: है ना, जिससे हम सभी के ओंठों पे मुस्कान दे सकें।
1: सही सही बात फरमाई मैडम आप,
0: है ना। और बताइए क्या करते हैं आप?
1: मेरा किले धारूर के अंदर फुटवेयर की शॉप है मैडम।
0: आप ये समझ लीजिए कि जो फुटवेयर जो होता है यदि वो फुट में ना हो तो ये समझ लो कि हमारा रास्ता कितना कठिन हो जाए।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना। तो और यदि फुटवेयर भी यदि हमारे मतलब हमारे मुताबिक ना हो, मान लीजिए हाँ जो साइज के हिसाब से मान लीजिए बड़ा हो गया या छोटा हो गया, तो भी ये समझ लीजिए वॉकिंग करना बहुत दिक्कत है।
1: बहुत बिल्कुल।
0: हाँ तो आपका काम जो है ना वो बहुत ही एक बहुत अच्छा और अच्छे के साथ बहुत फिटनेस वाला काम है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: है ना, फिटनेस बहुत जरूरी है फुटवेयर में। हाँ
1: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी।
0: तो चलिए, आपका काम भी बहुत अच्छा, आपका अंदाज भी बहुत अच्छा।
1: जी सुनना चाहता हूँ मैडम।
0: हाँ जी।
1: फिल्म का नाम है धरती।
0: जी बिल्कुल,
1: 1970 की फिल्म है।
0: हाँ जी।
1: इसके गायक है लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी साहब, और गीत के बोल है मैडम, ये मौसम भीगा भीगा है, आबादी ज्यादा ज्यादा है, क्यों न मचलेगा दिल मेरा, तुमको पाने का इरादा।
0: बहुत बढ़िया।
1: गीत के लिए चंद मेरे दोस्त है मैडम।
0: हाँ जी बिल्कुल, बताइए।
1: लोकेन्द्र वर्मा है, गंगाधर सावंतकर है, और हमारे तुकाराम जी जादव हैं, और गौतम रागोले हैं, और हमारे सचिव जी वानखेड़े हैं, और अशोक पाटिल हैं। हम सब मिल के इस गीत का आनंद लेंगे मैडम। शुक्रिया मैडम आपका, दिल से धन्यवाद।

0: हेलो झांसी।
1: हाँ हेलो झांसी है ना मैडम।
0: हाँ जी हेलो झांसी में आपका स्वागत है। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं पीजी देशमुख बोल रहा हूँ, उंचेगा बुजुर्ग तालुका हटगा जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से।
0: ओके देशमुख जी, कैसे हैं आप?
1: बस बहुत मजे में, लेकिन बारिश नहीं हमारी इधर मैडम अभी तक तो।
0: हाँ सबको बारिश,
1: नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में तो बारिश नहीं अभी तक तो, अब फसल की बुआई हो गई नहीं हो गई अभी तक।
0: हाँ अब फसल की बुवाई तो जब हो जाए, बारिश हो जाए, जब धरती इस लायक हो जाए बुवाई के लिए, तैयार हो जाए, है ना, तब तो अपन बुवाई करें, है ना।
1: हमारे इधर तो अभी तक तो इतने दिन लेट हो गया, तो ये साल हो गया लेट है, 25 साल में।
0: बताइए क्या हो रहा है कि पूरा प्रकृति का वातावरण ना डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ वही तो, अब बताइए मानसून आने में कितनी देर हो गई है, आज 28 जून है।
1: हो इसकी वजह से तो अपनी बुआई लंबी हो गई, हो रही है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, अपनी बुआई देर से हो रही है ना। हम सब लोग क्या प्रकृति पे ही निर्भर हैं, तो बस ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बारिश खूब अच्छे से हो जाए और हम लोगों की फसल उग जाए।
1: मैडम सही बोल रहे हैं आप, सही है।
0: हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: आज फिल्म का नाम है दिल।
0: हाँ जी दिल का कौन सा गाना सुनवाएं?
1: अभी परिस्थिति ऐसी है मुझे नींद ना आए।
0: भगवान ने चाहा तो आपको खूब सुकून भरी नींद आएगी और आपकी फसल भी खूब अच्छी होगी।
1: और अपने जो श्रोता है तो इनको मैं एक संदेश देना चाहता हूँ मैडम।
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: ओ हर इंसान ने एक अपने वृक्ष लगाना, पेड़ लगाना तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पर्यावरण का समतोल रहेगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बारिश लेट से आने का कारण भी यह हो सकता है कि हमने
1: बारिश, पेड़ के बहुत कटाई हो गई, इसकी वजह से भी मानसून लंबा हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमने अपने स्वार्थ बस हमने क्या किया है, प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। और इसी तरीके से हाँ आप आपको सबको संदेश देते रहें, क्योंकि पेड़ लगाना बहुत अच्छा कार्य है। हाँ चलिए हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: हेलो झांसी,
1: आदरणीय मैडम जी को प्यार भरा अभिवादन, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। संतोष कुमार राव फ्रॉम उमरिया मध्य प्रदेश।
0: हाँ जी, आपने तो इतना सारा अभिवादन कर दिया, हम तो स्वीकार ही नहीं कर पाए। कैसे हैं आप
1: मैडम? बहुत अच्छे हैं, लगातार आपके कार्यक्रम से जुड़ाव रखते हैं और जो आपकी सभ्यता शैली का विनम्र अनुरोध करवाता है आकाशवाणी झांसी और आनंद की अनुभूति का प्रभाव करवा देता है।
0: वाह वाह, क्या बात है, आपका शब्दों का चयन इतना उच्च स्तर है का है कि मैं तो एकदम हतप्रभ रह गई।
1: नहीं मैम, ये सब कुछ आपसे सीखते हैं, जो आपके लहजा होता है ना और जो शब्दों का चयन होता है वो लाजवाब होता है। जो सुबह का कार्यक्रम आता है, जैसे भक्ति संगीत के कार्यक्रम में जब आप शब्दों का चयन करते हैं तो उसी प्रकार से गानों का भजन भी उसी प्रकार से सम्मिलित होता है। युवाणी कार्यक्रम में कई कंपेयर ऐसे होते हैं जो मंझे हुए होते हैं, उनकी उत्साह वर्धन और जो जानकारियाँ होती है खास करके युवा में, तो वो बहुत ही काबिल तारीफ होता है।
0: हाँ जी, कोशिश यही करते हैं कि हमारे जितने भी साथी हैं जिस भी उम्र के हैं वो अपने हिसाब से प्रोग्राम को सुने और उसका मनन करें और चिंतन करें और उससे कुछ प्राप्त करें।
1: जी बिल्कुल मैम, और हाँ। कार्यक्रम आकाशवाणी का यही मोटो होता है ना, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, यानी कि सबके लिए कार्यक्रम, सबके लिए खुशियाँ और सबके लिए सौगात।
0: बताइए आज कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: एक हाँ। बहुत ही प्यारा सा गाना है, मूवी का नाम है डर। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण।

0: हेलो झांसी।
1: हेलो झांसी, मंगल सिंह तहसील से।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: हम मंगल सिंह कुशवाहा जी बोल रहे हैं, झांसी तहसील से, पांच तहसील से सर।
0: ओके, झांसी तहसील से बोल रहे हैं।
1: हाँ,
0: हाँ जी, बताइए कैसे हैं मंगल सिंह जी?
1: बढ़िया बढ़िया, स्वस्थ है, बढ़िया स्वस्थ जीवन यापन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत कृपा है नारायण की जो आप स्वस्थ हैं। हाँ जी, क्योंकि स्वस्थ जीवन ही हमारे, हाँ जी, सबसे बड़ी पूंजी है हमारे जीवन की, है ना। आप स्वस्थ हैं तो आपके घर वाले खुश हैं आपसे, है ना। हाँ, और बताइए क्या करते हैं मंगल जी?
1: बस सब बस जोड़ा जोड़ते हैं एक दूसरे को, अभी संबंध करते हैं।
0: अच्छा, चलिए, ये
1: अभी
0: तो
1: हम सभी एक लगा को पसंद करा के आए भी आए।
0: अरे वाह, चलिए, आप तो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हाँ जी, समाज में एक अच्छा,
1: समाज में अपने जो अपने काम में आता है,
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल आता है, अच्छे अच्छे कार्यों के
1: अपने काम दुनिया में उतना अच्छा रहा, अच्छा काम करोगे अच्छा बढ़ाई होगी अपनी, ठीक है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मंगल सिंह जी, अच्छे कार्यों में संलग्न रहिए, है ना। कहते हैं कि पुण्य की जड़ें पाताल में होती हैं, है ना, हमारे बड़े लोग कहते हैं। इसलिए अच्छे कार्यों में संलग्न रहिए, है ना, मस्त रहिए, दुरुस्त रहिए और अच्छे कामों में व्यस्त रहिए। चलिए बताइए, आज हमारे कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: हमको दो रास्ते में गाना सुनना है, दो रास्ते पिक्चर का गाना है।
0: हाँ जी।
1: अपनी अपनी बीबी पे सभी को गरूर है, जैसी भी है बीबी हमारे लिए दूर है।

0: हेलो झांसी।
1: मैम नमस्कार।
0: हाँ जी नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: कमलेश कुमार वर्मा, कंचनपुरा निवाड़ी, मध्य प्रदेश से।
0: हाँ जी, कैसे हैं कमलेश जी?
1: हाँ मैम बढ़िया है।
0: और बताइए क्या करते हैं?
1: मैम हमारे यहाँ खेतीबाड़ी का काम होता है।
0: अच्छा, और खरीफ की फसल में क्या बो रहे हैं?
1: खरीफ की में मूंगफली है, तिल है और मूंग उड़द है।
0: चलिए अच्छी बात है। और आपकी बुवाई हो गई क्या?
1: नहीं अभी नहीं हो मैम, मानसून नहीं आया।
0: हाँ
1: चलिए,
0: बारिश होगी, आपकी फसल खूब अच्छे से बोवे और खूब बढ़िया फसल हो आपकी, है ना, और खूब उन्नति करें आप, ऐसी हमारी।
1: अभी तो मैम गर्मी के मारे हाल बेहाल।
0: हाँ अभी तो बहुत गर्मी पड़ रही है, और ध्यान रखिए अपने स्वास्थ्य का, अपने बच्चों का, है ना।
1: हाँ।
0: क्योंकि मौसम बहुत खराब है।
1: हाँ।
0: और धूप में हो सके तो ना निकलें, और यदि मजबूरी हाँ। है निकलने की तो अपने कान को, अपने सिर को ढक के रखें।
1: हम लोगों को तो धूप में निकलना ही पड़ता है।
0: हाँ नहीं, वो तो मजबूरी है, निकलना ही है, लेकिन थोड़ी सावधानी से निकलें कि, और अपने
1: हाँ।
0: स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पानी पीते रहें। और बताइए कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: तेरे नाम फिल्म का। तेरे नाम?
0: अच्छा हाँ हाँ, तेरे नाम फिल्म का। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं?
1: वही तेरे नाम होती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, जो टाइटल सॉन्ग सुनवाते हैं आपको। ठीक है कमलेश जी, कार्यक्रम में फोन करने के लिए धन्यवाद है आपका।

0: हेलो झांसी कार्यक्रम में आप सभी ने अपनी अपनी फरमाइश सुनने के लिए फोन किया। समयाभाव के कारण हम अपने कुछ साथियों की कॉल्स कार्यक्रम में शामिल नहीं कर पाए। श्रोताओं, जिनकी कॉल्स आज कार्यक्रम में शामिल हुई हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया 2 महीने बाद कॉल करें, जिससे हमारे अन्य श्रोताओं की कॉल कार्यक्रम में शामिल हो सके। साथ ही इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश के कोने कोने से अपने दोस्तों के मनपसंद गीत उन तक पहुंचाते हैं। गीत संगीत सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित, सुंदर और अर्थपूर्ण बनाने का गहरा माध्यम है। इसलिए हमसे हमेशा जुड़े रहिए। हेलो झांसी का सफर आज के लिए बस यहीं तक। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग प्रत्येक रविवार और बुधवार को अपराह्न 2 बजे से 3 बजे के मध्य होती है। इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाता है प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को रात्रि 9:30 से। हमारा फोन नंबर है 0510320068। मुस्कानों की रोशनी घर आंगन में बिखरती रहे, आप सभी साथियों का स्नेह जीवन में महकता रहे। फिर होगी मुलाकात नई बातों और नए एहसासों के साथ। अब आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे आकाशवाणी झांसी के फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। कृपया लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अंजलि कुमारी। श्रोताओं, अब हेलो झांसी कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति दीजिए। अपनी दोस्त उषा को नमस्कार।
1: हेलो झांसी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फोन इन फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम हेलो झांसी। स्वर एवं प्रस्तुति सहयोग था उषा अग्रवाल का और प्रस्तुतकर्ता थी अंजलि कुमारी। एफएम 101 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र।

FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आशा भोसले और अनूप जलूटा। अब आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले के स्वर में ये गजल।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुगम संगीत। इस कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं आशु भोसले और अनूप चलूटा। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के झांसी केंद्र से।

सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त हुआ। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार थे आशा भोसले और अनूप चलूटा। FM 103 पर ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है। अब आप सुनेंगे समाचार।

0: समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ

0: committee also for the predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. The International Cricket Council today confirmed that India alongside Australia, Great Britain and South Africa have booked their places in the Women's T20 competition. And that's the end of the news.
1: FM 103 पर हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय रात्रि के 11:10 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं समाप्त होती है। कल हम अपनी सभा के कार्यक्रमों के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक